0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योगपाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियां बहुत प्रचंड रूप अपना ले चुकी हैं। बारिश भी है लेकिन गर्मियों ने अपना पूरा प्रारूप दिखाई दिया है। तो आइए गर्मियों में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो कि हम हमेशा से आपके लिए लेते आए हैं और आपको बताते आए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कि गर्मियों में हम अपने आप को कैसे हाइड्रेट रखें, हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखें, हम अपने मूड को किस तरीके से अच्छा रखें। तो सबसे पहले तो जितना हम सर्दियों में खा लेते हैं, पी लेते हैं, वही उसका जो असर है ना, वो गर्मियों में निकलता है। मैं बताऊं कैसे। सर्दियों में हम जितना गर्म चीजों का सेवन करते हैं उसी का असर उतनी ही स्वेटिंग हमें गर्मियों में होती है। लेकिन गर्मियों में हमने जितना पानी पी लिया होता है, सर्दियों में अगर हम पानी नहीं भी पीते हैं तो काम चल जाता है। आपने एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे आपने ऊंट के बारे में सुना होगा, ऊंट को कहा जाता है कि वो 1 महीना लगातार पानी पीने के बाद में वो 3 महीने पानी नहीं पीता है, यानी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 3 महीने तक उस पानी को स्टोर करके अपने अंदर रह सकता है। इसीलिए उसे रेगिस्तान का राजा कहा जाता है। ठीक ऐसे ही हम मनुष्यों में भी ये चीज पाई गई है। सर्दियों में अधिकतर लोगों को प्यास कम लगती है सर्दी के कारण से या फिर ज्यादा ऑयली खाने से। लेकिन गर्मियों में जस्ट इसका अपोजिट होता है। पानी की प्यास बहुत लगती है, पसीना हमारे बॉडी से निकलता है। इसका मतलब होता है कि हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो जो हमने खाया होता है गर्मियों में गर्म चीजें, वो पसीने के रूप में निकलती हैं। लेकिन जो हमने पानी पिया होता है वही पानी स्टोर हो करके हमें सर्दियों में हाइड्रेट रहने के लिए काम में आता है। इसीलिए गर्मियां हैं तो पानी का महत्व आज हम आपके लिए बताने आए हैं। गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में पसीने के रूप में बहुत सारा पानी और खनिज तत्व जैसे मिनरल बाहर निकल आते हैं। ऐसे समय में पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं होता है बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन जाता है। योग और सही मात्रा में पानी का सेवन मिलकर शरीर को अंदर से संतुलित रखते हैं। जैसे शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए ये सबसे ज्यादा मदद करता है। जिन लोगों को हमेशा से थकान, कमजोरी एंड डिहाइड्रेशन होता रहता है, उसके लिए पानी पीना अति आवश्यक हो जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जरा सा कुछ हैवी खा लिया, जरा सा कुछ ऑयली खा लिया तो पेट खराब हो जाता है। ये अधिकतर उन लोगों को होता है जो गर्मियों में पानी कम और खाना ज्यादा खाते हैं। पाचन तंत्र को हमेशा से बेहतर बनाने के लिए भी पानी का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को लगता है हमारी स्किन हमेशा से जवान रहे, हम 45, 46, 47 की एज में भी 25 के लगे, तो उन महिलाओं को भी पानी की मात्रा को अपने जीवन में बढ़ा देना चाहिए जिससे हमारी स्किन में निखार और ताजगी हमेशा बनाए रखता है। मांसपेशियों और जोड़ों के सही कार्य में ये सहायक होता है। अब आते हैं योग के दौरान शरीर में ऊर्जा बनाने रखने के लिए भी पानी का महत्व। योग को करते करते यदि हमें प्यास लग जा रही है, योगा को करते करते अगर हमें बीच में पानी की प्यास लग जा रही है, तो थोड़ा सा विश्राम करके हम पानी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात ये है कि योग के साथ साथ पानी को भी हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। योग करने से लगभग 20 से 30 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हैं एंड योग के तुरंत बीच में पानी बिल्कुल न पिए, थोड़ा सा बचे। योग समाप्त करने के बाद धीरे धीरे पानी पिए। बहुत ठंडा पानी तुरंत पीने के बजाय सामान्य तापमान का पानी बेहतर रहता है। गर्मियों में हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक छोटे से योगासन है, जिसको करने से साथ ही साथ हमें पानी को पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर का व्यायाम एक सूर्य नमस्कार के माध्यम से हो जाता है, शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ाता है। दूसरा आता है ताड़ासन, शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद आता है भुजंगासन, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और उसके बाद आता है वज्रासन, भोजन करने के बाद किया जाने वाला सबसे आसान यह आसन होता है, जो पाचन में मदद करता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हमने आपको कई बार बता के रखा है कि मन को शांत करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। शीतली प्राणायाम, जो बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा आवश्यक होता है गर्मियों में, जिसको करने से गर्मी में शरीर को ठंडक और मानसिक शांति देने वाला यह प्राणायाम माना जाता है। सुबह उठकर सामान्यता से पानी पिएं, फिर हल्का योग और प्राणायाम करें, ये एक स्वस्थ दिनचर्या होती है। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेते रहें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें, प्यास, थकान, कमजोरी। यदि आपको याद न रहे तो थोड़ा सा अपने लिए सचेत हो जाएं, यानी कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी शरीर की जरूरत है और योग शरीर व मन का संतुलन दोनों का साथ गर्मियों में हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गर्मी का समय है, तापमान है, ये भीषण गर्मी आ चुकी है और इसमें जो भी लोग नित नियम योगा करते हैं उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिट से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है सुबह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए, जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें, योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में सुबह रात में हल्का ही भोजन करें, योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं, फल सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें, जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारे पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुनें योग करने के लिए, हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें, तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान, चक्कर ला सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल न पिएं। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सकें। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक अहम टॉपिक है, या हम ये कह सकते हैं कि आज हर घर में एक दूसरा व्यक्ति इस प्रॉब्लम को जूझ रहा है, इस प्रॉब्लम के साथ में अपने आप को जी रहा है। कई ऐसी बातें हैं जिसे हम अपने किसी खास के साथ ही उसे शेयर कर पाते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, यहाँ तक कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। धीरे धीरे अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं, हमारे जीवन के आगे भी ये लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। उसी को कहते हैं हमारी मानसिक स्थिति को संभालना, सोचना और झेलना। हर एक व्यक्ति को लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे जैसे होगा, हम जैसा सोचते हैं वैसा होगा, लेकिन कई ऐसी बातें होती हैं जब हमारे हाथ में नहीं होती हैं और मजबूरन हमें सोचना पड़ता है। ज्यादा सोच, टेंशन और इन्हीं सब का कारण बन जाता है मानसिक स्थिति खराब। अब हम यूं कह सकते हैं कि मानसिक स्थिति खराब का होना शायद लोगों का दूसरा सोचना हो जाता है कि ये एक बच्चा या बच्ची या एक लड़का या लड़की पागल होने की स्थिति पर है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मानसिक स्थिति खराब होने का सीधा असर पागलपन से नहीं होता है, वो ऐसा एक धीमा जहर है जो आपको धीरे धीरे खत्म कर रहा होता है। आज जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं दोस्तों, ये मानसिक स्थिति को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवाई के और बिना किसी भी एक लंबे इलाज से। अब आप सोचेंगे कि एक सोच को सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बिना दवाइयों के या फिर किसी प्रिकॉशन के कैसे ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब कोई परिस्थिति खुद पर बीतती है तभी हमें उस चीज को ठीक करने का अनुभव ज्यादा होता है, या हम यूं कह लें सीधे शब्दों में कि कहीं ना कहीं उस परिस्थितियों को हमने भी महसूस किया है, हमने भी झेला था। तो आज कहीं जाकर के इन सारे पॉइंट्स को मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात ये है कि मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए हम बहुत सारी चीजों को अवॉइड करते हैं जो हमें रोजमर्रा दिखती और मिलती हैं। छोटी सी कहावत है, या ये हमने कहीं सुना पढ़ा होगा, या आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमें कल की चिंता थी लेकिन आज ही मर गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जब कल की चिंता है, हमें पता ही नहीं है कि कल होने क्या वाला है, उसकी चिंता अगर हम आज से ही करेंगे तो कल देखा जाएगा, लेकिन आज हमारा जो नुकसान होगा उससे हमारा शरीर, हमारी मनोवृत्ति और हमारा सब कुछ खराब होने लगेगा। इसीलिए कल को कल पर ही छोड़ दें, हमें सबसे पहले अपने वर्तमान को ही सुरक्षित करना है, और वर्तमान को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाना है। कैसे बेहतर बनाना है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। जो महसूस हो रहा है उसे दबाने के बजाय समझने की कोशिश करें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना ये आपके लिए सबसे अच्छा साबित होता है। इससे आपका मन भी हल्का होता है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं। तो कोई भी अगर आपकी जिंदगी में ऐसा इंसान है जिसे आप अपने मन की, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं और लगता है कि वो आपकी बातों को कहीं भी इधर से उधर नहीं करेगा, आपकी फीलिंग्स को समझेगा या समझेगी, तो आप अपनी भावनाओं को उनके साथ साझा करें। दूसरा पॉइंट, जो कि सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए था, ध्यान और श्वास अभ्यास। रोज 5 से 10 मिनट बैठकर गहरी लंबी सांस लेना, प्रार्थना और ध्यान करना, मन को स्थिर करना सबसे अच्छा ये प्राणायाम माना जाता है।
जिससे हमारी मानसिक स्थिति के साथ साथ हमारी शारीरिक स्थिति भी सुधरती है। थोड़ा समय प्रकृति और शरीर को दें। हल्की वॉक करना, योग, खुली हवा में समय बिताना और अपने मूड को चिल करना। कहते हैं ना कि आजकल सभी लोग बाहर घूमने क्यों जाते हैं? अरे मूड को चिल करने जा रहे हैं। अपने काम से 2 से 3 दिन की छुट्टी लेकर के अपने आप को रिलैक्स मोड में जाना। यानी कि ऐसा नहीं है हम प्रेशर में हैं, हमारी मानसिक स्थिति जितनी भी उलझी हुई है लेकिन हम काम करे जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है धीरे धीरे हमारी मानसिक स्थिति को खराब करने में। फिर आता है अच्छी चीजें पढ़ें और सकारात्मक संगति करें। बिल्कुल दोस्तों, पॉजिटिव सोच वाले लोगों से आपकी दोस्ती होना ये आपकी मानसिक स्थिति को सबसे और जल्दी बेहतर करता है और आपकी बहुत सारी चीजों को जो कि खराब हो चुकी हैं उन्हें ये हील करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। अच्छे विचार, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणादायक बातें आपको और आपके मन को मजबूत बना देती हैं। फिफ्थ पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि है नींद और भोजन का ध्यान रखना। कम नींद और अनियमित खानपान का असर हमारे मन स्थिति पर तो पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ हमारी मानसिक स्थिति भी खराब करता है। एक दिन में 8 घंटे की नींद लेना और पर्याप्त गहरी नींद लेना सबसे अच्छा माना गया है। खानपान की बात करें तो आज की न्यू जनरेशन सिर्फ और सिर्फ बाहर के खाने की ओर ज्यादा भाग रही है, लेकिन अगर हम हल्का और जो जल्दी पचने वाला खाना अगर खाते हैं तो हमारे पेट को भी राहत मिलती है और हमारा मन भी और मूड भी अच्छा होता है। मन की बातों को लिखना, अपनी कोई भी चिंता, भावनाएं और दिन की सबसे अच्छी बातों को एक डायरी में लिखना मन को शांत करने जैसा होता है। साथ ही साथ ये आपको उस ओर लेके जाता है जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, कुछ ऐसे चिड़चिड़ेपन हो, आपकी जो भी फीलिंग्स हो आप एक डायरी में उसे उतार देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। फिर आता है पॉइंट कृतज्ञता का अभ्यास करें। रोज ऐसी 3 चीजों को याद करें जिसके लिए आप आभारी हैं। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य, उसके बाद ईश्वर। सबसे पहले हम ईश्वर को भी धन्यवाद कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने स्वास्थ्य के लिए हम अपने ईश्वर को भी आभार व्यक्त कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने माता पिता के लिए भी ये आभार व्यक्त कर सकते हैं कि जिन्होंने हमें ये सुंदर जीवन दिया और हमें ये सुंदर जीवन देखने का अनुभव प्राप्त कराया। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जो बताने जा रहे हैं वो है आपकी मानसिक स्थिति, तनाव और मन को स्थिर रखने के लिए छोटे मोटे ऐसे योग प्राणायाम जिसकी मदद से हम अपने आप को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। 5 से 10 मिनट करें, मन को शांत करके और श्वासों को संतुलित करने में मदद करता है। दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। 5 बार से शुरू करने के बाद में इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं, मन की बेचैनी, तनाव में राहत महसूस कर सकते हैं। उसके बाद कर सकते हैं बालासन। शरीर और मन को आराम देने वाला ये आसन होता है। फिर हम कर सकते हैं एक छोटा सा रूटीन जिसमें आता है 5 मिनट की गहरी श्वास, 10 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट भ्रामरी।

सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, हर बार की तरह योगशाला में भी आज मैं जो आप सभी के लिए लेकर के आई हूं, वो है समय सारणी, मतलब योग की समय सारणी। अब आप सोच रहे होंगे कि योग की समय सारणी क्या होती है। समय सारणी का मतलब होता है कि किस समय कितना और कौन से प्राणायाम को करना है, और उसका लाभ भी एक साथ हम आज आपको बताएंगे। प्राणायाम के साथ साथ आसन और सूक्ष्म व्यायाम हम एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले बैठने की विधि, सभी प्राणायाम सिंहासन, सुखासन और पद्मासन में ही करना चाहिए। यदि इन आसन में बैठने में परेशानी हो तो अपनी सुविधा अनुसार आसन में बैठ सकते हैं। तो सबसे पहला आसन जो होता है वो है भस्त्रिका प्राणायाम, 5 मिनट और बच्चों के लिए 2 मिनट। सुविधा अनुसार आसन में बैठकर मुंह बंद रखकर नासिका से लंबी गहरी श्वास फेफड़ों में भरें तथा उसी गति से नासिका से श्वास को छोड़ें। फेफड़ों में जब हम श्वास भरेंगे तो उसी गति से हम श्वास को छोड़ेंगे। आइए दोस्तों, अब हम आपको बता दें भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ। दमा, अस्थमा व फेफड़ों से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं। साथ ही साथ में आज हम आपको सूक्ष्म व्यायाम भी एक बार ये कराते रहेंगे। उसका कारण पता है आपको, एक प्राणायाम के बाद में एक सूक्ष्म व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए, हमारी मानसिक स्थिति के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। सूक्ष्म व्यायाम, श्वास भरते हुए गर्दन को 5 बार ऊपर नीचे, 5 बार दाएं बाएं, 5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। यानी कुल मिलाकर के ये जो सूक्ष्म व्यायाम है, ये हमें सर्वाइकल में बहुत ज्यादा आराम देता है। जिन लोगों को गर्दन में अकड़न रहती है, गर्दन के आसपास एरिया में दर्द रहता है, आप एक जगह काम करते हैं काफी घंटे बैठकर, तो ये देखा गया है कि गर्दन में और पीठ में यानी रीढ़ की हड्डी में अकड़न हो जाती है। जिन लोगों को ये चीजें होती हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सूक्ष्म व्यायाम ये वाला कर सकते हैं, जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को घुमाना है। दूसरा समय सारणी में आता है कपालभाति, यानी कपालभाति प्राणायाम। समय लगातार 5 मिनट, 1 सेकंड में 1 बार। प्रथम चक्र जो है वो हम आगे करते हैं। सुविधा अनुसार आसन में बैठकर पेट को ढीला रखकर पेट को पीठ की तरफ झटका देना व छोड़ना है। नासिका से श्वास स्वतः बाहर निकलेगी और अंदर जाएगी। मुंह बंद रहेगा। मध्यम शक्ति व मध्यम गति से इस प्राणायाम को करना है। साथ ही साथ में जो इसका एक सूक्ष्म व्यायाम है वो है अपने हाथों पैरों को एक जगह पर रखने से हाथों पैरों में कंपन सी होने लगती है। तो आइए सूक्ष्म व्यायाम में पैरों और हाथों को चलाने का व्यायाम। पैरों को सामने खोलकर व हाथों को पीछे टिकाकर पैरों की उंगलियां चलाना, पंजे चलाना और आगे पीछे दबाना। पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना व दोनों तलवे मिलाकर बटरफ्लाई की स्थिति में आना और बटरफ्लाई करना। यानी कि जब आप इस आसन को, जब इस प्राणायाम को आप करेंगे तो तितली नुमा एक आकार बन जाता है। कपालभाति प्राणायाम प्रथम चक्र की भांति 5 मिनट ही करना चाहिए। आइए अब चलते हैं कपालभाति के दूसरे चक्र पर, यानी सूक्ष्म व्यायाम का दूसरा चक्र। हाथों को सामने कंधे की सीध में खोलकर मुट्ठी खोलना एवं बंद करना। कभी अंगूठा अंदर करना है तो कभी बाहर। उंगलियां आधी मोड़ना और छोड़ना। पंजों को कलाई से ऊपर नीचे करना। मुट्ठी बंद करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। कोहनी को निरंतर मोड़ते रहना।

ना विजय चौहान।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: Go camera please
3: and set
2: and action. Silence.
4: So Jubin, You are such a versatile singer.
5: आप हमेशा अपने फैंस के लिए कुछ नया लेके आते रहते हैं और आपके फैंस भी सब्री से इंतजार करते हैं। तो इस बार आप क्या नया लेके आ रहे हैं? इंडी, पॉप, रॉक, सूफी?
6: दोहे?

0: much is it? I want to buy this.
1: This is not for sale.

0: कार्तिक, अब हमने चोर को पकड़ लिया।
1: चलो
2: चलो
1: चलो भागो जल्दी। गाना बनना है ना स्कूल में।

राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन।

पुलिस की तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी, हमारे मुल्क में क्यों घुसाया, चाहता क्या है? बजरंगी, आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़ कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो उस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामत के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान।

हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा।

0: दीपक भाई का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं इसका प्रूफ नहीं है, बट आई स्वेयर राहुल, ये जो भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। नाम गुणा
1: आरोही का फोन आया?
0: अब तक नहीं।
1: तेरा फोन ऑन है ना?
0: 24/7। लड़की को बोल दे कि फोन नंबर बदल गया है।
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो राहुल जी आ गए?
3: I'm sorry, wrong number।
2: क्या? हेलो हेलो

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं, जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है, और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
5: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
5: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: हाँ जी सुभाई, आपका वेलकम करते हैं आज के सुपर रोमांटिक मौसम में। फिलहाल रोमांटिक मौसम यहाँ नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के 65 जिलों में ऐसा रोमांटिक मौसम रहने का अलर्ट गया है। अलर्ट क्यों? क्योंकि भाई मूसलाधार बारिश का बोला गया है। फिलहाल उसमें अब गुंडा है कि नहीं है ये तो आप बाद में जान ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि मौसम अगर आपने देख लिया है तो सच में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो रखा है। और मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान तो आपसे बातचीत करने के लिए आ ही गए हैं। सो चलिए अब शुरू करते हैं और बताते हैं कि क्या है आज का मॉर्निंग का थॉट ऑफ द डे आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Arjun Khan.

हाँ जी, तो क्या कह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे? पता है ना? नहीं पता है? वही तो बताने के लिए हम आए हुए हैं। सो आज का थॉट ऑफ द डे कह रहा है कि दिखाओ मुझे मेरे अंदर छिपी हुई रोशनी। क्या कह रहा है? दिखाओ मुझे मेरे अंदर छिपी हुई रोशनी, सूरज जितनी नहीं, चांद जितनी नहीं, सिर्फ एक बल्ब जितनी रोशनी। दिखाओ मुझे मेरे अंदर छिपी हुई रोशनी, सूरज जितनी नहीं, चांद जितनी नहीं, सिर्फ एक बल्ब जितनी रोशनी। एक्चुअल में हम कहते हैं ना कि जो दिखता है वही होता है, पर ऐसा नहीं है। आपने शायद अगर सामने से ना सही समुद्र को किसी मूवी में देखा होगा या किसी चैनल पर कैसे भी किया होगा, वीडियो में देखा होगा, ऊपर से लगता है सिर्फ पानी ही पानी है, पर उसी वीडियो में, उसी मूवी में, उसी चैनल पे आपको दिखाया जाता है कि अंदर इतनी बड़ी शार्क रहती है, ऑक्टोपस रहता है, वेल रहती है, न जाने क्या क्या। कुछ भी जो होता है सिर्फ दिख रहा होता है, वैसा नहीं होता। जैसे हमको जब लगता है कि हमारी लाइफ में सिर्फ डार्कनेस है, सिर्फ अंधेरा है, तो उस वक्त जिस बात को लेकर सोच रहे होते हैं बस उतना ही अंधेरा होता है। अब उस बात पे अगर हम ये सोच लें कि अंधेरा ही अंधेरा है, सो दैट इज़ नॉट ट्रू, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सोचना ठीक नहीं है, ये है ही नहीं फैक्ट, इसलिए ठीक नहीं है। उसी तरह एक रोशनी हमेशा आपको मिलेगी आपके भीतर। ऐसा नहीं कि इतनी रोशनी होगी कि आप सारा जहां रोशन कर देंगे, या ऐसी भी रोशनी नहीं होगी कि जब अंधेरा हो तो भी आप चारों तरफ रोशनी कर दें, लेकिन इतनी रोशनी जरूर होगी कि आप जिस जगह हो उतनी जगह पे रोशनी जरूर होगी, और वो आपके भीतर है। यही बता रहा है आज का थॉट ऑफ द डे। सो अगर आप किसी को चाहते हैं, मानते हैं, और आप सोचते हैं उसके लिए क्या किया जाए, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है कि उसके भीतर की रोशनी को आप दिखा दें, जो उसके एक बल्ब जितनी है। बल्ब कितना रोशन करता है? सारा जहां कर देता है? नहीं, चांद कर देता है रात में, सूरज कर देता है दिन में, फिर बल्ब, बल्ब आप जिस जगह होते हैं उस जगह को रोशन कर देता है, और उससे आपका कोई भी काम रुकता नहीं है, आपके आसपास की सारी चीज़ें आपको नज़र आती है। तो जब आपको लगे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, आपको लगे कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, आपको लगे कि आप सभी के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाना चाहते हैं नहीं हो पा रहा है, सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपके अंदर एक बल्ब है, एक ऐसा बल्ब जो आपके अंदर को रोशन कर देता है उतनी जगह को जिस जगह आप रह रहे हैं, जो जगह आपकी है, जिस जगह को आप समझ रहे हैं। ये कह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे। सो आज का थॉट ऑफ द डे बहुत प्यारा है। किसी के अंदर की आप रोशनी को अगर ढूंढने में, उसको बताने में मदद कर देते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो यकीन मानिए उसके अंदर का जो अंधेरा, जो लगता है उसको कि अंधेरा है, वो रोशन हो जाता है। और इतनी रोशनी हम सभी में होती है, इतना टैलेंट हम सभी में होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को बदल दें, और जब हम अपनी ज़िंदगी बदलते हैं तो आसपास की चीज़ें खुद ब खुद हमको बदली हुई नज़र आती है, और इसीलिए इतनी रोशनी तो हमारे अंदर लाजिम है कि है, बस ढूंढना है। क्योंकि सूरज निकले ना निकले, चांद दिखे ना दिखे, लेकिन ये रोशनी हमेशा रहती है, जैसा इस वक्त भी आपके साथ हो रहा है, रोशनी आपके भीतर है, है ना? तो चलिए भाई, अब चलते हैं अपने अगले सॉन्ग की तरफ। जब तक आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये थॉट, एंड साथ ही साथ आप सभी का वेलकम जो जुड़ चुके हैं मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।

0: फिर ऑल टाइम यार हूँ मैं यार। गुड मॉर्निंग वंस अगेन ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन विद योर मॉर्निंग जोकर चेतनान। सो भाई अब मुझे लगता है कि जब तक मैं ऐसे ही सोच रहा था तब तक मुझे खुशबू थोड़ा सा आ रही थी स्टूडियो के अंदर ही, ऐसे महसूस करते करते कि भाई आज तो सोंधी सोंधी खुशबू देने वाली आइटम्स बनेंगे क्योंकि आज मौसम ऐसा है। आज तो मार्केट में दाल की बड़ी डिमांड रहेगी। क्या दल भरी, दोपहर में तो दलभरी बनने वाली है। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। और अब चलिए बताते हैं आपको भाई मैसेजेस आपने भेज दिए हैं और वो मैसेजेस आ गए हैं चैट बॉक्स तक। सो क्या लिखा है ये बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आप सुन रहे हैं फ्रिक्वेंसी से, आप सुन रहे हैं रेडियो गार्डन से, साथ ही आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। आपका वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। और अब सीधे चलते हैं चैट की तरफ और देखते हैं क्या कुछ लिख भेजा है आपने।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Arjun Khan.

हाँ जी, तो भाई क्या है, चलिए बताते हैं। सबसे पहले जो मैसेज आया है वो आया है कमल नयन जी का। गुड मॉर्निंग टू यू। आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में कायनात के। गुड मॉर्निंग टू यू। इरफान शाह मौजूद हैं, सुप्रभात। तीरथ प्रसाद सोनी जी का है, गुड मॉर्निंग टू यू। आपका भी वेलकम करते हैं। प्रीति शुक्ल जी बहराइच से लिखती हैं, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, आपका वेलकम है। लवली सिंह हैं गोंडा से, आप लिखते हैं अदनान से, गुड मॉर्निंग, वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, आपको भी अ वेरी बेस्ट गुड मॉर्निंग टू यू। एंड लिखते हैं आपकी, कभी कभी धीमी शुरुआत भी खूबसूरत मंजिल तक पहुंचती है। अजी जनाब, मैं कहता हूं कि कभी कभी नहीं, आपकी धीरी शुरुआत ही आपके पूरे लाइफ का मज़ा देती है, लिटरली, यकीन मानिए। एंड हमारी प्रीति जी ने बहराइच से रिएक्शन दिया है आज के थॉट पर, लिखती हैं कि लाजवाब थॉट, थैंक यू। ईश के सिवा और कोई नहीं दे सकता रोशनी, खुद को खुद से पहचानना, स्वयं अपनी रोशनी से खुद को चमकाना और अपनी रोशनी से असहाय दीन दुखियों की सहारा बनकर जग में अमर हो जाना, बेशक। एंड ये सब तभी पॉसिबल होता है जब आप अपने बारे में अवेयर होते हैं। अक्सर कोई कहता है कि बड़ा मतलबी है, अलग मायने, मुझे लगता है मतलबी के बड़े गलत मायने निकाले जाते हैं। मतलबी का मतलब ये सोचते हैं कि लोग भाई अपना ही कर रहा है और तो किसी से कोई मतलब नहीं, वो मतलबी में नहीं आता है। मतलबी का मतलब होता है जो खुद से मतलब रखे, और जो खुद से मतलब रखते हैं आप उनको अगर बहुत गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो किसी का अच्छा बुरा नहीं करते, लेकिन वो चीज़ों को समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद को प्रायोरिटी देते हैं, और जो खुद को प्रायोरिटी देते हैं वो दूसरों की भी रेस्पेक्ट इसीलिए जानते हैं क्योंकि वो खुद कर रहे हैं। हर चीज़ का कितनी टफनेस है, कितनी प्रॉब्लम है, कितना हार्ड है, कितना कोई सॉफ्ट है, कितना आसान है, कितना मुश्किल है, ये जो इंसान समझता है अपने बारे में, वो दूसरों के लिए भी वही हमदर्दी खुद ब खुद रख लेता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम जो है अपने आप एक्टिव हो जाता है जो भी ऐसा होता है। तो इसलिए बहुत अच्छे लोग होते हैं वो, जो किसी की बुराई अच्छाई की बात उस तरह नहीं करते हैं, अपना बेहतर करते हैं, और उनके साथ कोई अगर सामने पड़ जाता है तो उसका भी फिर बेहतर ही होता है। ये बात तो एकदम फैक्ट है, लिख के ले लीजिए, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एंड साथ ही साथ आप तक पहुँच गई है बात, और हमने चूंकि अब बोल दिया है तो ऐसा ना हो कि आप ज़िद करने लग जाए कि भाई आज के लंच में तो दलभरी ही खाएंगे। दलभरी इसलिए याद आया क्योंकि दलभरी इस मौसम में बारिश के साथ जनाब बहुत टेस्टी लगती है, और सौंधी सौंधी सी खुशबू होती है। अब बारिश में ऐसा कुछ खाने को मिल जाए तो ऐसा लगता है कि भाई बारिश होना स्वागत हो गया। तो चलिए, अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो मुबारक, खुश हो जाइए। छोटी छोटी चीज़ें बड़ी खुश करती हैं, हमारे लाइफ में बड़े इवेंट्स कम आते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों तो हमको सेलिब्रेट करना ही होगा, तभी तो हम कहेंगे अपनी लाइफ तो झिंगा लाला है। तो चलिए फिलहाल सुनाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, एंजॉय करिए।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
0: और एक ऐसा तोहफा जो आप सोचेंगे कि क्या बात है, सुबह सुबह अगर ऐसे तोहफे मिल जाए तो क्या बात है। तोहफा कोई और नहीं बल्कि ये गीत है, और मुझे लगता है ये गीत काफी ज्यादा आज के मौसम को जस्टिफाइड करने वाला है। अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है, एकदम सूट कर रहा है, एकदम आपको फील कराने वाला है। कुछ गाने होते ही ऐसे, उनमें से एक ये बहुत ही बेस्ट है। फिलहाल चलिए ले चलते हैं आपको इस सॉन्ग की तरफ, एक तोहफे की तरह, वो मेरी तरफ से नहीं बल्कि आज के मौसम की ही तरफ से आप सभी को डेडिकेटेड है ये खूबसूरत सा गीत।

0: You are listening to Coke Studio Pakistan on Savan.
1: हाँ जी ओ भाई, अब आपको हम बताने वाले हैं एक ऐसी बात जिसको आप सुनकर हैरान होने वाले। क्या बात है भाई। दरअसल बात ये कि आपने गोल्ड मेडल तो बहुत सुने हैं कि भाई गोल्ड मेडल मिला किसमें, ब्रॉन्ज मिला, सिल्वर मिला, ओलंपिक में मिला, बहुत सारे गेम्स में मिला, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि सब्जियां बेचकर देश के लिए जीत जाए कोई गोल्ड मेडल? थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है, राइट? बट मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर एक ऐसा भी किस्सा है जिसमें सब्जियां बेचकर जीत लिया है गोल्ड मेडल। आखिर कौन है ये और क्या है पूरी बात, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले इस म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ आपको ले चलते हैं। जैसे ही आप वापस आने वाले हैं, आपको सुनाने वाले हैं ये बात, ये किस्सा कि आखिर कैसे सब्जियों को बेच करके जीत लिया गोल्ड मेडल। इसको बहुत अच्छा है भाई साहब।
2: मुझे सपना और मेघा दिखते, मैं जानबूझ कर नहीं लेता ताकि मैं उन्हें दोबारा देख सकूं, उन्हें फिर से खोना दूं।

0: सो यस चन्ना वे, चन्ना वे एंड चन्ना वे। फिलहाल आपको हम ले चलते हैं ये बताने वे कि आखिर कैसे सब्जियां बेचकर देश के लिए जीता गोल्ड मेडल वे। सो आप सुन रहे हैं अपना मॉर्निंग वाला शो गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर मॉर्निंग चौक आरजे अदनान ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम।
1: Now you're listening Good Morning Gonda with your favorite RJ Khan.

सो कभी सब्जियां भी बेची, कभी कर्ज लिया, पर मेहनत करते रहे और आखिर में भारत के लिए ले आए गोल्ड मेडल। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं तरुण की। तरुण जब 6 महीने के थे तो इन्हें पैरालिसिस का अटैक आया था। डॉक्टर्स की सलाह पर सेहत में इन्होंने सुधार के लिए 3 साल की उम्र से ही कराटे सीखने लगे और इस तरह शुरू हुआ इनका पैरा कराटे चैम्पियन बनने का सफ़र। इस सफ़र में भाई जाहिर सी बात है कि गरीबी बड़ी चुनौती बनकर आई। अब चूंकि फादर सब्जी बेचकर बड़ी मुश्किल से घर चलाते थे, स्कूल के दिनों से ही तरुण जो थे वो छोटे मोटे काम करने लगे थे ताकि डाइट और तैयारी का खर्च निकाल सकें। सो 13 साल की उम्र में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल का पहला टूर्नामेंट जीता और खेल का खर्च जुटाने के लिए तरुण को कर्जा भी लेना पड़ा, इवन घर तक गिरवी रखना पड़ा। फिर एक वक्त आया जब इन्होंने अपने फादर को खो दिया, उसके बाद जिम्मेदारियां और भी ज़्यादा बढ़ गई। तब तरुण ने सब्जियां बेचते हुए भी देश के लिए खेलना जारी रखा। आज मेडल में अगर हम बात करें सो गोल्ड मेडल पैरा एशियन चैम्पियनशिप और पैरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप समेत तरुण ने भारत के लिए 18 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 8 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। अब तरुण डिसेबल्ड बच्चों को मुफ्त में कराटे की ट्रेनिंग देते हैं और इनका सपना है कि इनकी कराटा एकेडमी में पक्की छत हो और इस तरह से जो बच्चे ऑफकोर्स बढ़ना चाहते हैं तरुण की तरह, उनके लिए ये एक बल्ब की रोशनी का काम करे। जैसा कि आज के थॉट ने बताया था कि पूरे जहां को तो ना सही, लेकिन अपने आसपास की चीज़ों को आप रोशन कर सकते हैं, इतनी रोशनी हमेशा आपके अंदर होती है। सो तरुण हमारे रियल सुपर हीरो हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई ऐसे लोग लिटरली हमारे रियल सुपर हीरोज़ होते हैं। क्या ख्याल है आपका तरुण के बारे में?

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान स्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरनाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
5: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा।

0: है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: एक सवाल पूछ लूं डायरेक्टली
2: जी।
1: फैमिली प्रेशर में आके शादी तो नहीं कर रही हूं ना, एज इन कोई अफेयर हो, और क्योंकि तुम्हारी फैमिली चाहती है इसलिए तुम उससे शादी कर रही हो।
3: एहसास की जो जुबान बन गए।
2: किसने कहा हमें आपसे शादी करनी है?

हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। आपने ट्यून किया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। और अब आपको हम ले चलते हैं किधर भाई, एक ऐसी ज़रूरी बात की तरफ जिसका ध्यान अक्सर आप जिक्र तो करते हैं पर एक्चुअल में कहीं ना कहीं ये बात बहुत छिपी होती है। एक लाइफ का ऐसा दौर, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बाहर रहते हैं, किस तरह से बाहर रहने वालों का बदल रहा है हॉस्टल कल्चर, इसको लेकर हम बताते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा नगरियों की नई नई तस्वीर देखकर लगता है कि काफ़ी कुछ सच में बदल रहा है। क्या बदल रहा है, यही तो हम बताने वाले हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में। लेकिन उससे पहले यस सुनेंगे एक ज़बरदस्त हिट सॉन्ग। उसके बाद जब वापस आएंगे तो हम बताने वाले हैं कि आखिर जो ऐसी नगरी है जहां पर स्टूडेंट्स रहते हैं, हॉस्टलर्स रहते हैं, आखिर किस तरह से बदलते वक्त के साथ चीज़ें बदल रही है, रहन सहन बदल रहा है, और किस तरह से आने वाले दौर में और भी चीज़ें हम बदलती हुई पाने वाले हैं। ये सब कुछ अपनी रफ्तार से ही बदल रहा है। लेकिन उससे पहले आइए इस म्यूज़िकल ट्रैक को एंजॉय करते हैं। वापस से आते हैं आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में आपके आरजे अदनान के संग।

मैं छाया पटवार रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: जी बिल्कुल बिल्कुल, इस गाने को भी सुनेंगे, लेकिन जिस बदलते हॉस्टल कल्चर को बताना है, पहले वो तो जान लें कि आखिर क्या कुछ बदला है शिक्षा नगरी कोटा में, और किस तरह से अब हॉस्टलर्स अपनी लाइफ को बदल रहे हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota.

हाँ जी, तो आपको बता दें कि भाई कोटा में फ़िलहाल बदल रहा है हॉस्टल कल्चर। अब सिर्फ सुकून की बारी हम सिर्फ कहते नहीं हैं बल्कि अब उसको मान भी रहे हैं। पहले होता था कि सिर्फ छत मिल जाए, अभी क्या है कि देश भर से आने वाले जो लाखों स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हॉस्टल अब सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि उनकी लाइफ लाइन बन चुके हैं। कैसे भाई, पहले क्या था कि सिर्फ बेड और खाना, इस सिस्टम को जो है वो अलविदा कह के अब मानसिक सुकून और घर जैसे माहौल को प्रायोरिटी दे रहे हैं ये हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राएं। किस तरह से, सो आइए बताते हैं कि क्या क्या बदला है। कोटा के जो लैंडमार्क सिटी है जैसे स्टूडेंट्स के एरिया, अब ये फैसिलिटीज़ आम हो रही है जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट और जिम भी है ताकि सेहत भी बनी रहे, कॉमन एक्टिविटी एरिया है ताकि तनाव को दूर भगाने के लिए इस तरह के गेम्स और एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हुआ जाए। इसके अलावा इंटरैक्टिव सेशंस हैं यानी पढ़ाई के बीच रिफ्रेश होने के लिए। सो मेंटल हेल्थ पर सबसे बड़ा फोकस है। लगातार बढ़ती जो प्रतिस्पर्धा है इसके बीच में हॉस्टल चलाने वाले अब सिर्फ मैनेजर नहीं बल्कि मेंटर की भूमिका निभा रहे हैं। स्टूडेंट्स से रेगुलर बातचीत की जा रही है ताकि वो अकेलापन महसूस ना करे। पेरेंट्स भी इस बदलाव से खुश हैं क्योंकि इससे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बढ़ा है। अब जैसे मान लिए देर रात तक जाग कर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की जो ऑफ कोर्स लाइफ लाइफस्टाइल है वो अलग होती है। अब हॉस्टल में देर रात तक हल्का खाना और स्नैक्स की भी व्यवस्था की जा रही है। फ़ायदा क्या है इससे कि स्टूडेंट्स को रात में बाहर नहीं जाना पड़ता है, वक्त बचता है और वो सेफ भी रहते हैं। इसके अलावा कोचिंग सिटी से केयरिंग सिटी तक का सफ़र, जी हाँ, ये बदलाव साबित करता है कि अब कोटा सिर्फ एक कोचिंग हब नहीं बल्कि स्टूडेंट्स की ज़रूरतों के हिसाब से ख़ुद को बदलने वाला एक सेंसिटिव शहर भी बन गया है। फिलहाल ये जिस तरह से हॉस्टलर्स की लाइफ बदली है, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं हम भी इस बात को समझते हैं एंड प्रायोरिटी भी देते हैं कि हाँ मेंटल हेल्थ हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है बल्कि मुकम्मल तौर पर ये साबित भी होता है। और कहीं ना कहीं ये बदलती लाइफस्टाइल जिसमें एक दूसरे को कह पाते हैं, सुन पाते हैं, कुछ कॉमन एरियाज़ बनाए गए हैं, जिम बनाई गई है ताकि अब पढ़ाई में सिर्फ ऐसा ना हो कि एक तरफ़ा सिर्फ पढ़ाई करते करते डिप्रेशन हो या परेशान हो या आप बहुत डल से पढ़ जाए बल्कि आप सब कुछ करते हुए बेहतर चीज़ों को उसके बाद अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो वो एक हेल्दी प्रिपरेशन की तरफ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कोई एक्टिविटी हो, चाहे वो बातचीत हो, चाहे वो कोई गेम हो। तो इस तरह से अब जो हॉस्टल्स हैं वो इन बातों का ख्याल रखते हैं। अब सिर्फ ऐसा नहीं कि कमरा दे दिया, अब कॉमन एरियाज भी बनाते हैं, अब उसमें जिम भी क्रिएट कर रहे हैं, रात में खाने के लिए भी स्नैक्स की जो है वो फैसिलिटी दे रहे हैं और लाइट खाना खिलाने की भी जो है वो बात करते हैं, वैसा मेन्यू भी डिज़ाइन किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बदलते वक्त के साथ और ज़रूरतों को समझते हुए लिया गया स्टेप है एंड आई होप कि भाई ये बहुत बड़ा स्टेप बनेगा और बहुत ज़्यादा वर्क करने वाला है। फिलहाल इस बारे में आप क्या मानते हैं ये आप बता सकते हैं। और क्या अगर आप भी हॉस्टलर रह चुके हैं यानी किसी हॉस्टल में तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वैसे बता दीजिए। और साथ ही साथ इस गाने को सुनिए क्योंकि ये तो आज के दिन को निखारने आया है।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हाँ जी, सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉ का जी अदनान, आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो आइए आपको अब ले चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, और ये अपडेट जो है वह काफ़ी ज़्यादा आपके काम की होने वाली है। सो ये अपडेट क्या है? दरअसल आपको हम बता दें कि अग्निवीरों के लिए 75% हो सकते हैं परमानेंट। सो अब जो है कहीं ना कहीं इसमें अपडेट दी जा रही है। सो क्या है पूरी खबर और क्या है पूरी बात, आइए आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, आपके मॉर्निंग वाले चौक आर जे अदनान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम पर।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

फिलहाल अग्निपथ योजना के तहत सेना में परमानेंट अग्निवीरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मौजूदा वक्त में सिर्फ 25% अग्निवीरों को सैन्य सेवाओं में आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन अब अग्निवीरों को जल्द ही ऐसा माना जा रहा है कि ये संख्या 75% हो सकती है 25% से बढ़ करके। दरअसल काफ़ी वक्त बाद अग्निवीरों को ज़्यादा समय तक रखने और परमानेंट की संख्या बढ़ाने का लेकर विचार शुरू हुआ था। सो कई मौके पर अग्निवीरों ने अलग अलग इलाकों में हालात को ज़्यादा तेज़ी और प्रभावी ढंग से संभाला। इसी को देखते हुए स्थायी संख्या बढ़ाने की ज़रूरत महसूस हुई ताकि सेनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा युवा सैनिक बने रहे। सो 25 से बढ़कर के 75, जी हाँ, इसको बढ़ने से लेकर के प्रस्ताव भेजा गया है। नौसेना की तरफ से 75% संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं थल सेना और वायुसेना में 25 संख्या प्रतिशत से बढ़ा करके 50% करने की मांग जो है वो रखी गई है। सो सूत्रों के हिसाब से अलग अलग विभागों में ये संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे पैदल सेना और बाकी कॉम्बैक्ट आर्म्स के लिए अग्निवीरों को 70-75% रखने पर विचार चल रहा है, जबकि एयर डिफेंस, सिग्नल्स और इंजीनियर्स जैसे जो विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मी हैं, इनका आंकड़ा 80% तक हो सकता है। स्पेशल फोर्सेस के लिए 100% अग्निवीरों को रखने की बात चल रही है। स्पेशल फोर्सेस के लिए जो उनका सेलेक्शन है, उनकी परिवीक्षा अवधि जो है इस दौरान ही हो जाता है। सो अस्थाई अग्निवीरों की संख्या पर फैसला कब हो सकता है, हालांकि अभी इसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अग्निपथ योजना 2022 में शुरू हुई थी और पहला बैच 2026 में पूरा कर रहा है अपना कार्यकाल। माना जा रहा है इस दौरान संख्या बढ़ाने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। उनकी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस और 4 साल में हासिल नई एक्सपर्टीज के आधार पर परमानेंट किया जा सकता है। सो बढ़ने की भी उम्मीद की जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स से पता चलता है कि बीते साल तकरीबन 70,000 अग्निवीर ट्रेनिंग में शामिल हुए, जिनकी वैकेंसी आने वाले सालों में बढ़कर 90,000 के पार तक पहुंच सकती है, ऐसा माना जा रहा है। अभी कोई ऐसी पुख्ता बात नहीं बताई गई है। सो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा होगा तो सेना में ज़्यादा से ज़्यादा यंग हमारे जवान मौजूद रहें ये सोचते हुए ऐसा किया जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स उनके लिए बहुत अच्छा है जो देश के लिए सेवा दे रहे हैं, और वो चाह रहे थे कि भाई उनको प्रॉपर मौका मिले ताकि वो बने रहे और लगातार वो इस पर काम करते रहें। फिलहाल हमारे पास काफ़ी सारे मैसेजेस भी आ गए हैं चैट बॉक्स पर, और हम बिल्कुल आपकी तरफ आने वाले, लेकिन उससे पहले इस म्यूज़िकल ब्रेक को एंजॉय करने वाले हैं। और जैसे ही आते हैं बताते हैं कि क्या कुछ आपने लिखा है आपके मॉर्निंग वाले जॉक आरजे अदनान के पास, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस में ऑफ कोर्स बहुत कुछ लिखा है और वो सब कुछ पढ़ेंगे आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। लेकिन उससे पहले आइए इस म्यूज़िकल ब्रेक को एंजॉय करते हैं आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में आपके अपने मॉर्निंग जॉक के साथ।

0: अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: डियर स्टूडेंट्स, आज आपके स्कूल का पहला दिन है। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
2: टीचर, मैं पूछूं क्या?
1: बिल्कुल।
2: तो टीचर ये बताइए कि यहाँ पे छुट्टियाँ कब शुरू हो रही हैं?

0: कंफर्ट तो बहुत ज्यादा सुनते हैं। नहीं, कपड़ों के कंफर्ट वाले कंफर्ट की बात नहीं कर रहे हम, तो उस कंफर्ट की बात कर रहे हैं जो हम किसी के साथ में कंफर्टेबल होते हैं। कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनको पहनने से हम बहुत ही कंफर्ट सा महसूस करते हैं, यानी हर वो शय, वो हर वो चीज जहां आप अपनी किसी चीज को बदले बिना आराम से रह ले, उसी को शायद हम कंफर्ट कह सकते हैं। सो फिलहाल इसी तरह कुछ फूड होते हैं जिन्हें हम कंफर्ट फूड कहते हैं। अब देखिए ना, कंफर्ट फूड का नाम लेते ही आपके जहन में वो पानी जैसे बनने वाली खिचड़ी आ रही होगी, राइट? ऑब्वियस सी बात है। और कौन कौन सी हम बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan.

सो हम कंफर्ट की बात कर रहे हैं और इसी कंफर्ट की बात में कंफर्ट फूड भी आता है, यानी ऐसा खाना जो आपके लिए फ्रेंडली हो। अब ये नहीं कह रहा हूँ टेस्टी, क्योंकि टेस्ट जो है वो ज़बान से एसोसिएटेड है, जबकि कंफर्ट फूड जो है वो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन और आपकी पूरी बॉडी से एसोसिएटेड है। ऐसा फूड जिसे खाने के बाद आप लाइट सा महसूस करें, बेहतर महसूस करें, एक्टिव महसूस करें और वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो, ऐसे फूड कंफर्ट फूड कहलाते हैं। सो वैसे तो आप खिचड़ी बोलेंगे ही बोलेंगे, कंफर्ट फूड हम कहेंगे तो आप कहेंगे दाल चावल भी है या शायद हो सकता है तहरी भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कंफर्ट फूड की, तो एक और फूड है जो बहुत बढ़िया होता है और बहुत कंफर्टेबल होता है हमारी बॉडी के लिए। हैव यू एनी अंदाज़ा, क्या आपको कोई अंदाज़ा है कि आपके कंफर्ट फूड में आता है वो? चलिए हम बता दें कि चावल और डैश को

0: सो मैंने पूछा था भाई कि कंफर्ट फूड में चावल के साथ, चूंकि मैंने बता दिया था खिचड़ी भी तहरी भी और तो और जो आप कंफर्ट फूड खाते हैं वो सब, लेकिन मैंने पूछा था कि और क्या हो सकता है, जिस पर आपके रिस्पॉन्सेज आए हैं एंड रिस्पॉन्सेज कितने सही हैं, आइए हम आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई आपने रिस्पॉन्सेज दिए हैं, दही चावल खाने से बहुत फायदे होते हैं, धर्मेंद्र जी ने बताया, क्या बात है, बिल्कुल परफेक्ट। और यही चीज़ बाकी सब लोग ने भी बताया, चावल और दही, दही चावल, चावल दही, दही चावल, चावल दही, अरे बिल्कुल सटीक बताया आपने। सो यस ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं दही एंड चावल की, क्योंकि आप इसके साथ कढ़ी खाते हैं, आप दाल चावल खाते हैं, आप खिचड़ी खाते हैं, आप तहरी खाते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। नो डाउट सबका अपना मज़ा है, बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट होता है। लेकिन फिलहाल दही चावल खाने के जो एक संभावित फ़ायदे होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए पहली बात तो ये कि आसानी से पच जाता है। अब भाई आसानी से पच जाता है, ज़्यादा मच नहीं करता, तो मतलब पाचन तंत्र पर कम दबाव डलता है, बहुत आराम से काम हो जाता है बिना कोई लेन देन के। एंड इसके बाद जो है, दही में मौजूद जो प्रोबायोटिक्स हैं वो आंतों के अच्छे से बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं। सो भाई प्रोबायोटिक्स जो है वो होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो आंतों के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको सपोर्ट करता है दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स, इसलिए ये अच्छा होता है। इसके बाद एसिडिटी और हार्ट बर्न में कुछ लोगों को राहत मिल सकती है। सो एसिडिटी की अगर प्रॉब्लम है, एसिडिटी बहुत कॉमन सी बात है आज कि अगर हम सिनेरियों में देखें, तो ऐसे लोग जिनको एसिडिटी या फिर हार्ट बर्न में कुछ प्रॉब्लम हुआ करती है, तो उसमें भी राहत देता है कौन, दही चावल।

एंड बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, इन सब का बैलेंस्ड संयोजन मिलता है किससे? दही चावल से। इसके अलावा गर्मी के मौसम में इसकी ठंडी तासीर ताजगी महसूस करा सकती है। कैसे? दही चावल से। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। सो ये दही चावल जो है काफ़ी ज़्यादा काम का है, और ये दही चावल आपको बहुत कंफर्ट फूड महसूस कराता है। एंड लिटरली जब भी आपने कभी खाया है कि नहीं खाया, मुझे नहीं पता, वैसे मुझे ये लगता है कि नहीं खाया ही होगा। अब आप भी सोच रहे हो क्या है ऐसे ही बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट सच में अगर आपने खाया है इसे तो डेफिनेटली आपने मतलब ये महसूस किया होगा कि कितना लाइट सा महसूस हो रहा है, कितना अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि इसीलिए इसको कम्फर्ट फूड कहा जाता है। एंड आई होप कि आप इस फूड को आगे कैरी फॉरवर्ड करें, आगे लेकर चले, और इसी तरह से अगर आप दही चावल खाते रहेंगे तो डेफिनेटली एक दिन हमको बहुत दिल से ढेरों दुआएं देने वाले हैं, क्या बात है कि भाई आपने उस दिन ये बात छेड़ दिया जिसके बाद से मेरा ध्यान ज़्यादा चला गया, और अब हम ज़्यादातर जब कुछ समझ में नहीं आता है तो दही और चावल को मिक्स करा करके दही चावल खाते हैं, और बड़ा ही मज़ेदार होता है। और साथ ही साथ ये फूड कम्फर्ट फूड होता है, यानी हमारे वो बॉडी के ऑर्गेन्स जो डील करते हैं फूड को, उनके लिए बड़ा ही कंफर्टेबल सा रहता है, बड़ा ही आसानी से पच जाता है, और बहुत सारे इसके फ़ायदे मिलते हैं जैसा कि अभी हमने वन बाय वन करके आपको बताया। और ये सभी फ़ायदे हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं जनाब। तो आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि हाँ, दही और चावल इज़ बेस्ट कंफर्ट फूड। वैसे आपके लिए बेस्ट कंफर्ट फूड क्या है आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि कोई एक ही नहीं हो सकता है। कंफर्ट फूड तो हर वो फूड है जिसमें आपको जलन ना हो, आराम से खा दे, लाइट सा लगे और आप काफ़ी अच्छा महसूस करें उसको खाने के बाद। सो अगर कोई कंफर्ट फूड है

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जी बे इंतहा, और एक बार वापस से बे इंतहाई से आपको याद करते हुए आप तक वापस चले आए हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है कोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 एफएम, और आप सुन रहे हैं अपना गोंडा एफएम का मॉर्निंग लाइव शो। गुड मॉर्निंग गोंडा।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan. Ajay Khan.

अक्सर देखा गया है भाई मूवीज में दिखाते हैं प्रेम में नायक नायिका से या नायिका नायक से कहते हैं तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। चलिए प्रेम में तो लोग कहते हैं चांद तारे तोड़ लाएंगे, लेकिन अगर कोई ये कहे कि प्रेम में कोई ट्रेन रोक दे तो ये संभव है? संभव हुआ है, और किसके प्रेम में? किसी शख्स के नहीं बल्कि समोसे के प्रेम में। जी हाँ, फिलहाल एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें देखा गया कि भाई समोसे के लिए ट्रेन रोक दी गई, लिटरली समोसे के लिए ट्रेन। जी हाँ, समोसे के लिए ट्रेन रोक दी गई। भाई देखा यह गया कि इंदौर में लोको पायलट ने अचानक ट्रेन रोकी, और ट्रेन रोकने के बाद जो देखा उसके बाद देखते ही लोगों के होश उड़ गया। होश इसलिए उड़ गया क्योंकि वो लोको पायलट समोसे की दुकान पर गया, समोसे पैक कराया और ले करके वापस से इंजन पर चढ़ गया, जिसके बाद जो है वो वापस से उसने ट्रेन को आगे बढ़ाया। फिर क्या था, जब वीडियो बन गई और वायरल हो गई तो रेलवे ने जो है वो जांच बैठा दी कि जनाब ये क्या था भाई, अरे बहुत सारे प्रेम देखे हैं सुने हैं, लेकिन ये समोसा प्रेम वो भी इस हद तक कि भाई चलती चलती ट्रेन रोक करके और सामान लेकर के वापस से आगे बढ़ दिया गया। सो यस ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं फिलहाल ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, और ये इंदौर की घटना है जहाँ पे लोको पायलट यानी ट्रेन चलाने वाले ने अपने इंजन को रोका, ट्रेन पूरी पूरी खड़ी कर दी, समोसा पैक कराया और वापस से बैठ करके चल दिया। और ये सब नज़ारा जो है वहाँ मौजूद कुछ लोग देख रहे थे जिन्होंने इसकी वीडियो बनाई। वीडियो जब लोगों तक पहुँची, वायरल हुई तो दूर तक गई, और दूर तक जाने में जा पहुँची कहाँ, रेलवे के हाथों में। सो रेलवे ने जब इसको देखा डिपार्टमेंट ने, तो उसके बाद इन लोको पायलट यानी इन प्रेमी समोसा प्रेमी के ऊपर जो है वो जांच बैठा दी गई है कि ऐसा क्यों उन्होंने किया। जाहिर सी बात है ये रिस्की होता है और ये कहीं ना कहीं रेलवे के नियमों का साफ उल्लंघन है, जिसको लेकर के फिलहाल इन पर जांच बैठा दी गई है। खैर समोसा लवर तो आपने सुना होगा, जबरा लवर भी सुना होगा, लेकिन ट्रेन रोक दे भाई ऐसा कौन देखा होगा आपने। सो अगर ऐसा कुछ आपने देखा है या सुना है तो आप भी बता सकते हैं। फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि आपने ऐसा कुछ देखा या सुना होगा, राइट? तो चलिए ये तो बात बड़ी ही अनोखी रही। फिलहाल वापस से आएंगे तो आपकी तरफ से कंटेंट मिल गया है इंस्टाग्राम पर हमको, ऑफ कोर्स वो भी हम आपको बताने वाले हैं। सो आप भी हमको अगर कुछ लिखते हैं, गज़ल, कोई शेर, कोई कविता, कोई जोक, कोई शॉर्ट स्टोरी, तो अपना नाम और जगह के नाम के साथ, या फिर अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट में लिखता हो तो उनका कंटेंट और उनका नाम और स्थान का नाम लिख करके हमारे फेसबुक मैसेंजर या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पर हम मिलते हैं ADNAN space AHMAD अदनान अहमद के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारा यूज़र नेम है RJ स्मॉल लेटर में फिर नीचे वाला _ ADNAAN RJ अदनान, इस पर भी हम आपको मिल जाते हैं, जिस पर आप अपने कंटेंट्स जो है वो भेज सकते हैं। समोसा खाइए, एंजॉय करिए, लेकिन समोसा खाली खाना नहीं है, उसके साथ अपनी फेवरेट चटनी लेनी है, मीठी या खट्टी जो भी आपको पसंद हो, या हो सकता है दोनों ही। एंजॉय करिए साथ में गाना।

0: हाय तेरी मेरी कहानी ओनली ऑन अदनान की जुबानी। सो यस, फिलहाल आपने भेजा है बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस और साथ ही आ गया है आपका कंटेंट। तो चलिए पहले हम बताते हैं क्या आए हैं मैसेजेस चैट बॉक्स पर, यानी वो लोग जो सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM को उसकी एप्लीकेशन से और उसी पर चैट पर मेंशन किया है, और साथ ही साथ फिर हम बताएंगे हमारे पास जो आपने भेजा है कंटेंट।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan.

सो हमने जो लास्ट मैसेज पढ़ा था उसके बाद आशु मिश्र जी का है लखनऊ से। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। तमन्ना मौजूद है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। धर्मेंद्र मोहन जी आवास विकास से लिखते हैं, अदनान सर गुड मॉर्निंग, खूबसूरत मौसम मुबारक हो। जो मनुष्य अपने मन में बस कर लेता है, मन उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, लेकिन ऐसा जो नहीं कर पाता उसका मन सबसे बड़ा जो है वो शत्रु बन जाता है। क्या बात है। शैलेंद्र जी मौजूद हैं खजुराहो मध्य प्रदेश से। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है शैलेंद्र जी, गुड मॉर्निंग गोंडा में। फरहीन खान मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। इसके बाद शैलेंद्र जी ने सभी को विश किया है, एंड प्रीति जी ने कहा इंस्पायरिंग है तरुण की स्टोरी, तरुण को वो सल्यूट करती हैं और तरुण को फॉलो करने योग्य बनना चाहिए। क्या बात है। कमल नयन जी हमारे आ गए हैं आरजे अदनान से। गुड मॉर्निंग टू यू कमल नयन जी, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग शो में। रेखा कुशवाहा जी मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन आरजे सर फ्रॉम कोटा। क्या बात है, आज हमने शिक्षा नगरी कोटा के बदलते हॉस्टल लाइफ के बारे में बताया और आप कोटा में ही मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग टू यू। हरीशचंद्र सविता जी मौजूद हैं, आपका भी स्वागत करते हैं, सुप्रभात आपको भी। साथ ही नेक्स्ट जो मैसेज आया है वो हमने चूंकि सवाल पूछा था कंफर्ट फूड के बारे में, जिसके बारे में आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ गुड मॉर्निंग, सुजीत सुप्रभात आपको भी। और साथ ही साथ नेटवर्क का इशू बिल्कुल अगर है कोई फ्रिक्वेंसी में तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। इम्तियाज़ आशु जी लिखती हैं, सर जी मेरे पापा भी ट्रेन रोक देते थे, जब कोई बच्चा पढ़ने जाता था पैदल उसे अपने साथ इंजन में बिठा लेते थे, उससे क्वेश्चन आंसर करते थे, अगर नहीं बता पाता था तो रोक के उतार देते थे और जो बता देता था उसे खुश होकर कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाते थे। सो भाई ये मेरे ज़माने में फादर आपके क्यों नहीं मिले, मैं अगर पता होता कि किस रूट पे चलते हैं तो आज तक ये जो इच्छा है कि भाई लोको पायलट में बैठ करके उनके साथ और ट्रेन का सफ़र देखा जाए एकदम आगे से इंजन में बैठ के, और अगर ये रिवॉर्ड था तो क्या बात है, फिर ये हो नहीं पाया। चलिए इस चीज़ का अफसोस रहेगा, लेकिन खुशी इस बात की कि बहुत ही नेक काम करते थे फादर आपके। फिलहाल प्रीति जी ने बहराइच से भेजा है ये कंटेंट, क्या लिखती हैं आप, कर्म अपना परिचय। ऊंचाई पाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ऊंचाई पाकर विनम्र बने रहना सबसे बड़ी बात है। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुक जाता है, लेकिन सूखा पेड़ हमेशा अकड़ कर खड़ा रहता है। विनम्रता इंसान को श्रेष्ठ बनाती है, वहीं घमंड निम्न स्तर तक पहुंचा देती है। जो आज स्वयं पर घमंड करता है, कल समय उसे उसकी जगह दिखा देता है, क्योंकि समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं और कर्म से बड़ा कोई परिचय नहीं। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने कि कर्म से बड़ा कोई परिचय फिलहाल नहीं है और अभी तक बना भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच हम तक पहुंचाने के लिए। और आप में से जो भी लिखते हैं, जिनको लिखने का शौक़ है या उनके कोई पहचान में, कोई कांटेक्ट में फ्रेंड फैमिली वाले रिश्तेदार, वो भी भेज सकते हैं अपने कंटेंट को। फेसबुक पर भी हम आपको अदनान अहमद के नाम से मिलते हैं और इंस्टाग्राम पर स्मॉल लेटर में RJ_ADNAA अदनान के नाम से मिलते हैं। सो वहाँ भी आप पहुँचा सकते हैं। एंड यस ऑफकोर्स फरीन, आपका एक बार वापस से गुड मॉर्निंग। और अब जाते जाते ये गाना बतौर तोहफा मैं आपको दिए जा रहा हूँ, ताकि सुबह को थोड़ा सा और जोर मिल जाए। थैंक्स टू एवरीवन, बने रहिए अपने रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
6: मतलब
5: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
7: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
8: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
9: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
10: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
11: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
12: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
11: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
13: अरे सुना?
14: क्या?
4: यही की गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ!
4: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
13: श्वेता समता, कहाँ हो सब लोग? अरे स्टूडियो में इतनी शांति क्यों है और सब कितना मुंह लटकाए हुए हो?
14: किरण भी एक ड्रेस खरीदने का मन कर रहा है, पर इतनी महंगाई है कि खरीद ही नहीं पा रहे, इसीलिए मन बहुत दुखी हो गया है। महंगाई कितनी बढ़ गई है।
13: ये तो है समता, हर सामान महंगा होता जा रहा है। डेली की सब्जी इतनी महंगी हो गई है कि समझ में ही नहीं आता कि क्या करें।
15: अरे सब लोग महंगाई पर बाद में रोना, पहले मेरी फ्रेंड सिमी से तो मिल लो। ये हम लोगों के गांव की गूंज की टीम से जुड़ना चाहती है। और हाँ किरण दी, आपके लोक गीतों की ना ये बहुत बड़ी फैन है।
16: हेलो, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि मैं किरण दीदी, समता दीदी और हरिओम से मिल रही हूँ। जिनकी आवाज सुनते थे वो लोग हमारे सामने खड़े हैं। क्या आप लोग मुझे भी गांव की गूंज की टीम का हिस्सा बनाएंगे? हमारे यहाँ दादी बाबा बहुत खुश होंगे आप लोगों से मिलकर।
17: एक शर्त पर तुम हम लोग को अपने गांव ले चलोगी?
14: कहीं चलने की बात हो रही है, फिर तो बड़ा मजा आने वाला है। एसी में बैठ बैठ कर हाथ पैर अकड़ गए हैं, गर्मी बहुत है फिर भी घूमने का मन कर रहा है।
16: हम ननकू भैया से कहते हैं गाड़ी निकाले, तब तक सिमी रिक्वेस्ट कर रही है कि किरण दीदी एक लोकगीत सुना दें।

0: अब ये बताओ कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं?
1: हम लोग झंझी ब्लॉक में चंदवतपुर गांव जा रहे हैं। वहीं हमारे दादी बाबा भी रहते हैं, उनसे मिलेंगे और इस समय गेहूं की कटाई हो रही है तो हम वहां भी चलेंगे।
2: मई आ गया और हम सब बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। याद है बचपन में हम सब बच्चों को लेकर मम्मी पापा नाना नानी या दादा दादी के घर ले जाते थे?
3: चाचा के, बुआ के, मामा के, मौसी के, सभी के बच्चे होते थे घर में। 30-35 लोग तो होते ही थे घर में कम से कम।
0: समता, हम सोच रहे हैं कि कभी दादी बाबा या नाने नाना ने शिकायत नहीं की कि कितनी महंगाई है और एक महीने सबको कैसे रखेंगे। हमारी ननद भी आ रही हैं अपने पूरे परिवार के साथ और हम सोच रहे हैं कि कितनी महंगाई में एक महीने कैसे रखेंगे, पर हम भूल गए कि यह तो उनका घर है, उनका पूरा अधिकार है।
1: आपको पता है क्या, पहले हमारी मम्मी भी बहुत परेशान होती थी, फिर दादी ने छत पर सब्जी बोना सिखाया। अब लगभग हर सब्जी घर के गार्डन से ही मिल जाती है।
4: आप बादाम में सोडा मिलाकर पिलाइए या बेल के शरबत का आइसक्रीम बना दीजिए, देखिएगा बच्चे बाजार का खाना भूल जाएंगे और आपको मेहमान का आना खटकेगा भी नहीं।
2: आपकी ननन तो कितना अच्छा खाना बनाती है, आप नई नई रेसिपी बताइएगा और वह बनाएंगी। आपकी ननन तो कितनी स्वीट है, वह ननन पर जो गाना गाती हैं वैसे तो बिल्कुल नहीं है।
5: अरे कैसे करूं सैया गुजारा, ननद बटवारा कराई गई रे। अरे कैसे

0: आप लोगों को पता है, जब हम लोग गर्मी की छुट्टी में गांव जाते थे तो ढेर सारे बच्चे हो जाते थे। उनको बिजी रखने के लिए बाबा हम लोग से बागवानी करवाते थे, वेजिटेबल गार्डन में तरह तरह की सब्जी लगवाते थे। आप भी ऐसा ही करिएगा किरण दीदी, बच्चे मोबाइल से हटकर कुछ सीखेंगे।
1: लो, चंदवतपुर आ गया। अगर बहुत गर्मी नहीं लग रही हो तो चलो वहाँ गेहूँ की बुआई हो रही है, उसे देखते हैं।
2: सब लोग मुंह पर चुन्नी बांध लो, क्योंकि भूसा चला जाएगा नाक में। वैसे गाड़ी में तो मास्क भी रखे हैं।
3: देखो जितने आदमी हैं, सब ने मुंह में गमछा बांधा है और औरतों ने पल्लू, पर बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं। हरिओम, सबको मास्क दे दो, भूसे की धूल से सांस की बड़ी समस्या होती है।
4: देखो बच्चों ने कैसे पुरानी साड़ी से कैंप बनाया है, और ढोलक की आवाज ये कहाँ से आ रही है, तुम लोगों को भी सुनाई दे रही है क्या?
0: धनु आजी बहुत अच्छी ढोलक बजाती हैं। जब घर के लोग खेत में काम करने जाते हैं तब आजी ढोलक बजाती हैं, और छोटे बच्चों को अपने साथ रखती हैं और गाती हैं। बच्चे उन्हीं के साथ खेलते रहते हैं और बड़े लोग अपना सारा काम निपटा लेते हैं।
1: गाँव में देखो कितना अपनापन है, आजी सभी के बच्चों को कितना प्यार से रख रही हैं। पानी, दूध, भूजा, सत्तू सब रखा हुआ है। वहीं शहर में हम लोग को क्रैश में बच्चों को छोड़ना पड़ता है।
2: किरण दीदी, आजी आपके बारे में पूछ रही थी और एक लोक गीत सुनाने को बोल रही थी, और देखिए सभी अपनी गेहूं की कटाई और दवाई छोड़कर आपके पास आके बैठे हैं।

0: यह लीजिए, मट्ठा पीजिए और खरबूजा खाइए, बहुत मीठे हैं। सब बिल्कुल शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है। बबलू पेड़ से अमिया तोड़कर लाया है और बाली हरी हरी मिर्च नमक की चटनी कौन कौन खाएगा?
1: हरिओम, आज गांव की गूंज की टीम ने खेत खलिहान में आए अपने एक्सपर्ट से गेहूं के भंडारण और कटाई के बाद खेत को उपजाऊ कैसे बनाएं, जो बात सीखी है ना, अपने किसान भाइयों को बताएं।
2: आप लोग बताएं कि आपने गेहूं खुद काटा है या मशीन से कटाई की है। देखकर तो लगता है मशीन से कटाया गया है। और हाँ, अब खेत का क्या करेंगे?
3: हमारे गांव में तो खेतों को जला देते हैं और इससे खूब आग भी लगती है। खेतों को जलाकर चले जाते हैं और ध्यान भी नहीं देते हैं। अगर बगल में किसी के खेत में फसल लगी हो तो आग भी लग जाती है।
4: यही तो गलती करते हैं आप सब। जब गेहूं और भूसा घर चला जाए, खेत खाली हो जाए, तब आप खेत में पानी भर दे और उसकी एक बार जुताई कर दे, फिर उसमें ढांचा बो दे, जिससे 40 से 45 दिन में वो तैयार हो जाएगा। और फिर एक बार पानी भर के खेत की जुताई कर दे, जिससे अगली फसल के लिए खेत उपजाऊ हो जाएगा।
0: आप लोगों ने ध्यान से सब बातें सुनी? अगर कोई बात न समझ में आए तो फोन करके सिमी बिटिया से पूछ लीजिएगा। 89.6 FM पर जो कृषि एक्सपर्ट आते हैं उनसे बात करवा देंगे और उनको भेज भी देंगे।
3: अलगू भैया, दयाराम काका, आप सबने सुना ना कि कैसे अगली फसल के लिए खेत को उपजाऊ बनाएं? किरण दीदी, हमने दादी को फोन कर दिया था, देखिए वो पूरे गांव की औरतों की टोली को लेकर आ रही हैं। रज्जो काकी के घर बहू आई है, वो अपने बहू को लेकर आई हैं। किरण दीदी, सब आपका गाना सुनने आई हैं।

0: लो यह गाना तो नई बहू के लिए है और काकी के हाथ में छोटा सा ललना दिख रहा है, तो एक गाना तो प्यारे से ललना के लिए होना ही चाहिए।
1: ओ हमरे भाई है ललनवा कैसे सपरी।

0: राघव भैया पूछ रहे हैं कि गेहूं का भंडारण कैसे करें, जब वह रखते हैं तो उस पे कीट लग जाते हैं।
1: भैया, आप लोग जो मेहनत से गेहूं पैदा करते हो वही हम लोग खाते हैं, तो उसको तो बहुत संभाल कर रखना चाहिए। सबसे पहली बात, गेहूं की जब दवाई करते हैं तो वह गर्म होता है, इसको तुरंत बोरे में बांध कर नहीं रखना चाहिए, ठंडा करिए ताकि उसमें बहुत नमी से भी न रह जाए।
2: एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक दो दिन खेत में ही पड़ा रहने दें और सूखने दें, पर अगर आपको लगता है कि खेत में नुकसान होगा तो घर पर लाकर कहीं फैला दें और ठंडा होने दें जब तक कि गेहूं में 10% की नमी ना रह जाए।
3: अब आप लोग पूछेंगे यह कैसे पता चलेगा, तो गेहूं को दांत से दबाइए, अगर कट कट की आवाज आती है मतलब आपका गेहूं तैयार है डेहरी में रखने के लिए।
0: जिस डेहरी में रखना है उसे धूप में सुखा लें, जिससे जो डेहरी के मुंह पर या ढक्कन में कीड़े के अंडे रह जाते हैं वो सब मर जाएं। अब गेहूं को भंडारण के लिए रखें, पर अभी उसमें दवाई डालने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर दवाई डालना है ना तो सल्फाज बरसात शुरू होने के पहले डाला जाता है, और डालना कैसे है, इसके नीचे ढक्कन से इसमें डालना होता है।
1: जब सल्फास डालेंगे तब एक हफ्ता गेहूं का प्रयोग ना करें, उसके ढक्कन को भी ना खोलें, क्योंकि सल्फास गैस बनती है, और ना ही उस कमरे में सोएं। 7 दिन के बाद जब आप चाहें बिना धोए गेहूं की पिसाई करवा सकते हैं, क्योंकि अब दवा का असर नहीं रहता है।
2: एक बात का और ध्यान रखें, यह नहीं कि दवा डालकर चैन की नींद से एकदम सो जाएं, समय समय पर ढक्कन खोलकर या जांच करते रहें कि कीड़े तो कहीं नहीं लग रहे हैं।
0: अपने गेहूं का भंडारण अच्छे से करें ताकि साल भर आपका गेहूं सुरक्षित रहे। कुछ भी पूछना होगा तो हमें फोन कर लीजिएगा, गुरुवार को 5 बजे खेत खलियान आता है ज्ञानस्थली रेडियो पर, उसे जरूर सुना कीजिए।
3: चलो सिम्मी, दादी घर चलने को कह रही हैं, बोल रही हैं कमल ककड़ी की सब्जी बनाई है, दाल की कचौड़ी और आम की चटनी, आहा, और साथ में गलका, अरे मुंह में पानी आ रहा है।
0: सभी को नमस्ते, राम राम, जल्दी फिर आएंगे। और हाँ, आप लोग भी हमारे रेडियो स्टेशन आइएगा।
1: कमल ककड़ी की सब्जी में तो बहुत ज्यादा स्वाद होता है, इसको हमने पहली बार खाया है। इसे बुआ क्या बोल रही थी?
2: समता मैम, मैं महेश भैया के साथ गांव घूमने जा रहा हूँ, क्योंकि किरण दीदी का गाना सुने बिना तो कोई जाने ही नहीं देगा।

0: कमल ककड़ी की सब्जी में तो बहुत स्वाद था, उसको हमने पहली बार खाया है। इसे बुआ क्या बोल रही थी?
1: लगता है कहीं पास में पानी बरसा है। सिमी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हम सोच रहे हैं अगर सभी लोग गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे तो खेती तो बंद ही हो जाएगी, फिर हमें गेहूँ, बिना पॉलिश की दाल, ये सब कहाँ से मिलेगा?
2: किरण दीदी, गांव की गूंज की टीम और मेहनत करेगी, लोगों को गांव से जोड़ने की हम लोग कोशिश करेंगे। बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल जाए, औरतों को लघु उद्योग में मदद करेंगे हम सब मिलकर।
3: आप लोग जब बातें कर रहे थे, हम कमल ककड़ी कमल गट्टे के फायदे के बारे में पढ़ रहे थे। अगर हम आज गांव नहीं आते तो पता ही नहीं चलता।
1: चलते चलते एक यह लोकगीत चंदवतपुर गांव के लोगों के लिए।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

गुड आफ्टरनून एवरीवन भाई, वक्त हो चुका है 12 यानी आपके अपने शो ज्ञानश्री लाइव का। भाई एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर सॉन्ग के साथ हम आपका वेलकम करते हैं। भाई पता नहीं कौन सी लड़की हंसी है जो इतना प्यारी सी बारिश हो रही है। मैं फिर से कहना चाहूंगी उसी लड़की से कि यार इतनी गर्मी में प्लीज हंस दिया करो, क्योंकि ये जो बारिश हो रही है ना कहीं हम सबके दिलों में इतनी ज्यादा खुशी ले आई है, इतनी ज्यादा खुशी। और मुझे तो अभी जब मैं आ रही थी मैंने देखा कि भाई क्या बादल उठ रहे हैं, क्या काले काले बादल, और बारिश हो जाएगी एक आध घंटे में। लेकिन मुझे नहीं पता था कि भाई जैसे ही मैं रिक्शे से बाहर निकलूंगी इतनी तेज बारिश शुरू हो जाएगी कि अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब गर्मी के सताए हुए, जब पूरे देश में बारिश हो रही थी तब हमारे गोंडा में बारिश नहीं हो रही थी, और अब जब पूरे देश में बारिश थोड़ी सी थमी है भाई तब हमारे गोंडा ने जोर पकड़ा है और क्या बारिश हो रही है, क्या बारिश हो रही है भाई, एकदम दिल खुश हो गया। इसी दिल खुश करने को और ज्यादा खुश करने में आ चुकी हूँ, और साथ ही साथ आज की स्पेशल प्लेलिस्ट लेके जो कि बारिश का। वैसे तो मैंने सोचा था कि आज थोड़ी सी पार्टी शार्टी वाले गाने सुनेंगे, लेकिन बारिश ने मेरा पूरा मूड बदल दिया। आई होप आप आज की प्लेलिस्ट एंजॉय करेंगे, साथ ही साथ आज का शो भी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम आते हैं थर्सडे को यानी कि आज के दिन, तो हम लोग बात करते हैं बॉलीवुड की। जी हाँ, बॉलीवुड की कुछ खबरें और साथ ही साथ कुछ हॉट ट्रेंडिंग गॉसिप। अब भाई गॉसिप और खबर तो कई सारी है जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपका हाल चाल पूछूंगी। मुझे लग रहा है कि अभी तो सभी के हाल चाल अच्छे होंगे, लेकिन कुछ लोग जो घर के बाहर फंस गए होंगे उनके हाल चाल थोड़े से ढीले हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं भाई। बारिश एक ऐसी चीज़ है जो हमें इतना ज़्यादा खुश कर देती है, और खुश हम इतने हो जाते हैं कि हमें हमारा बचपन याद आने लग जाता है। पर क्या करें, जो लोग ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, वो बस बारिश को दूर से देख सकते हैं, निहार सकते हैं। ऐसा लगता है कि बारिश हमें देख के चिढ़ा रही है कि अरे हिम्मत है तो बाहर आके तो दिखाओ, लेकिन हमारी जो अंदर का मेंढक है ना, जो बरसाती मेंढक है, वो बेचारा उछल उछल के रह जाता है कि क्या करें, ऑफिस में है, काम पे है, कैसे बाहर जाए और कैसे भीगा जाए। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो भाई, अगर मैं घर पे होती और आज मेरी छुट्टी होती तो अभी तक मैं बारिश में पूरा भीग चुकी होती। क्या धमाकेदार बारिश हो रही है, और मुझे लग रहा है कि अभी भी जो लोग सुन रहे होंगे ये शो और जो घर पे होंगे वो ये जान रहे होंगे कि उनके बच्चे अभी फिलहाल छत पे ही होंगे और बारिश में नहा रहे होंगे, क्योंकि भाई बारिश हो ही इतनी प्यारी रही है। चलिए बारिश पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने मुद्दे पे आएंगे। जी हाँ भाई, देखिए सीन तो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है। आपके रेडियो पे यानी ज्ञानश्री रेडियो पे फुल एनर्जी के साथ हम आज का शो धमाकेदार शुरू करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं उस फिल्म की जिसने पूरे बॉलीवुड में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, इसका नाम है अल्फा। हमारी शर्वरी और आलिया भट्ट की एक बहुत ही प्यारी सी फिल्म, बहुत ही ज़्यादा अच्छी यशराज फिल्म, स्पाई वर्स फिल्म है, जो कि थिएटर में और सोशल मीडिया पे एकदम आग लगा रखी है। एक तरफ लोग कहते हैं कि भाई क्या मस्त मूवी है, दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि बस ठीक ठाक है। अब इसका क्या ऑनेस्टी है मैं आपको बताती हूँ भाई। सबसे ज़्यादा तारीफ मिल रही है हमारे आपके दोनों के चार्मिंग हीरो बॉबी देओल की। जी हाँ, बॉबी देओल जो कि बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी के, लेकिन लास्ट टाइम जब वो एनिमल में आए थे तो भाई लोगों ने सोचा था कि अब शायद ये ऐसी ही मूवी करेंगे, यानी जैसी वो एनिमल में रोल किए थे, लेकिन इस बार बॉबी देओल थोड़ा सा अलग रूप में आए हैं। जी हाँ भाई, उन्होंने विलन का रोल ऐसा निभाया है कि लोग कहते हैं कि बॉबी सर आप तो सिनेमा के असली बाप निकले। जब तक आप बहुत ही चार्मिंग रोमांटिक हीरो थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे आप विलन के रोल में आए भाई क्या आग लगा के रख दी। लेकिन आलिया की कास्टिंग को लेकर के ट्विटर पे एक्स पे खूब ज़्यादा बहस हो रही है। कुछ फैंस कहते हैं कि उनका रोल थोड़ा सा वीक था, एक्शन थ्रिलर के हिसाब से थोड़ा सा वो लूज हो गई। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अल्फा देखने जा रहे हैं अगर आप, तो आपने पॉपकॉर्न साथ ही लेके जाओ, क्योंकि जैसे ही आपको लगेगा कि एक्ट्रेस थोड़े से ढील दे रहे हैं वैसे ही एक्ट्रेस की एक्टिंग इतनी धमाकेदार आएगी। और पहली मूवी ऐसी है जो मुझे मेरे जानने में है कि पहली स्पाई वर्स है, यानी कि कोई जासूसी कर रहा है, वो भी कोई महिला, और महिला जासूसी में कितनी तेज है वो तो आप अपनी पड़ोस वाली आंटी को देख के जान ही गए होंगे। अब भाई देखिए, कहानी यहीं सिर्फ खत्म नहीं होती। मैं आपको बताऊंगी कि भैया
इनके जो स्पिन ऑफ है अल्फा एक्स ने भी लोगों के दिमाग को घुमा के रखा है। इस बार शर्वरी ने फुल पैसा वसूल एक्टिंग किया। भाई शर्वरी जब से 2026 में मैं वापस आऊँगा के साथ एंट्री ली है, वैसे ही तुरंत अल्फा रिलीज हुई है और इनका जो धमाकेदार काम है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। स्टंट्स, फाइट, सब कुछ बिल्कुल ऑन पॉइंट है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप जाना चाहते हैं अल्फा देखने के लिए तो बिल्कुल जाएं, क्योंकि आपको औरतों का थोड़ा सा अलग रूप नजर आएगा। फिलहाल अभी के लिए इतनी ही खबर, लेकिन अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना, उसके बाद आएंगे और खबरों को जारी रखेंगे, क्योंकि आज खबर भाई बड़े ही पैसे वैसे की है। जी हाँ, बहुत ही पैसा वसूल भी और पैसे की बात भी है। आपको क्या लग रहा है कि अब की साल बॉलीवुड ने अभी तक 2026 में कितनी कमाई की होगी? गेस करिए, चैट बॉक्स में बताइए। हकीकत क्या है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।

बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी दोस्त आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानसी लाइव, जिसमें हम आज एंजॉय कर रहे हैं बारिश की स्पेशल प्लेलिस्ट। जी हाँ, और साथ ही साथ कुछ धमाकेदार खबरों को भी सुन रहे हैं। भाई आज तो मेरे पास ऐसी खबर आई है कि मुझे लग रहा है भाई, मेरे को पर्सनली, मैं ये खबर सुन के मैं तो पूरी हिल गई। अरे भाई इतना सारा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि भाई आखिर हुआ क्या है खबर में, आखिर है क्या जो इतना ज़्यादा मैं हैरान हो गई हूँ। भाई मैं बताती हूँ, देखिए हम सब किस पे पागल है आजकल, पूरा ज़माना एक ही चीज़ पे पागल है, वो है भाई पैसा पैसा। लेकिन आखिर बॉलीवुड, जिसमें इतनी सारी मूवीज़ बनती हैं, रिलीज़ होती हैं, लोग देखने जाते हैं, थिएटर फुल हो जाता है, तो आखिर इन्होंने कितनी कमाई की है और कौन सी मूवी ने अभी तक सबसे ज़्यादा कमाई की है, मैं आपको बताती हूँ। भाई ये जो नंबर्स है ना, वो सुन के आप भी पूरे हिल जाने वाले, तो जहां भी कुर्सी है थोड़ा सा बैठ जाइए। मैं बताती हूँ भाई, अगर हम पूरे साल का हिसाब लगाएं तो 2026 में अभी तक, यानी कि जो 6 महीने हुए हैं उसमें अभी तक 2500 करोड़ रुपए बॉलीवुड ने कमा लिए हैं। जी हाँ, 2500 करोड़, सुन के ही दिमाग घूम गया ना। और इसी लिस्ट में पता सबसे ज्यादा राजा कौन है, यानी कौन सी मूवी ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं, वो है धुरंधर द रिवेंज, यानी कि पहले वाली नहीं, लास्ट वाली धुरंधर द रिवेंज, जिसने अकेले ही 1150 करोड़ रुपए से ज़्यादा इकट्ठा किए हैं, है ना। ये भाई दिमाग को बिल्कुल हिलाने वाली है कि सिर्फ आदित्य धर की मूवी ने इतनी ज़्यादा इनकम की है इस बार। और उसके बाद अगर हम बात करें तो भैया इसके पीछे बॉर्डर 2 और भूत बंगला अभी अपनी जगह बनाए हैं और अभी सॉलिड नंबरों के साथ ही खड़े हैं। तो दोस्तों एक बात तो पक्की है कि 2026 के लिए बॉलीवुड के लिए एक बहुत ही धमाकेदार साल साबित हुआ है अभी तक। एक से एक मूवी रिलीज़ हो रही है, जिसमें अगर हम बात करें तो धुरंधर, फिर धुरंधर द रिवेंज, और उसके बाद मैं वापस आऊँगा, और अभी अल्फा रिलीज़ हो रही है, और ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ हैं जो रिलीज़ हो रही हैं और सब एकदम हिट जा रही है। तो इतनी कमाई तो भाई बनती है, और कहीं ना कहीं जैसे ये नंबर सामने आए सारे लोगों के एकदम होश उड़ गए। सोचिए 6 महीने में ये हाल है, तो जब पूरा साल हो जाएगा तो क्या होगा। और अभी आने वाले दिवाली और फेस्टिव सीजन में ऐसा कहा गया है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट है कि कई ज़्यादा मूवी ऐसी आने वाली है जो आपको थोड़ा सा हिला देंगी। जी हाँ, रिपोर्ट के हिसाब से ये भी है कि हमारे सल्लू भाई यानी कि सलमान खान की भी एक बहुत ही धमाकेदार मूवी आ रही है। इसकी खबर तो अभी मेरे पास इतनी ही है, लेकिन और भी ज़्यादा खबर होगी तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी कि कौन सी मूवी है, क्या रोल है, क्या नाम है, सब कुछ। और भाई इस हफ्ते तो रिलीज़ की बारिश हो रही है। जी हाँ, देखिए रिलीजेस ऐसे हो रहे हैं मूवीज़ के कि ऐसा लग रहा है कि भाई बॉलीवुड ने पिछले 10 दशकों में बॉलीवुड की सारी मूवी इकट्ठा करके सारी इसी साल ही रिलीज़ करनी है। धमाल 4 और इक्का दोनों ही OTT पर धमाल मचा रही हैं। OTT के साथ साथ थिएटर पे भी इनका बहुत ज़्यादा क्रेज़ मचा हुआ है। ऑडियंस के पास अब तो चूज़ करने के लिए भी टाइम ही नहीं बचा कि आखिर हमें देखनी कहाँ है। और भाई साउथ से भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। देखिए हम नॉर्थ इंडियंस हो, साउथ इंडियंस हो, वेस्ट के हो, ईस्ट के हो, लेकिन हमारी इंडिया में एकता बहुत है। हम नॉर्थ के होके भी साउथ की मूवी देखते हैं, साउथ वाले भी नॉर्थ की मूवी देखते हैं, और हम कभी भी मूवीज़ के नाम पर बटे बिल्कुल भी नहीं है। भाई साउथ की एक मूवी है जिसका नाम है रामचरण की पैड़ी, जो 2026 की सबसे बड़ी साउथ सुपरहिट मूवी रही है। और इसका क्रेज आपको सुन के ये मैं बताऊं कि इसका क्रेज साउथ से ज्यादा हमारे नॉर्थ में। जैसे ही ये मूवी हिंदी में ट्रांसलेट होके आई, वैसे ही लोगों के नाम ऐसे सामने आने लगे कि भाई ये मूवी तो बहुत अच्छी है, मूवी बहुत अच्छी है, आप भी जाएं और आप ही ये मूवी देखें और इसका लुफ्त उठाएं। भाई डिजिटल दुनिया में अब एंट्री मारने वाली है एक बहुत ही प्यारी सी मूवी, कौन सी है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक में मैं जा रही हूँ, आपको कहीं भी नहीं जाना है, आपको इंजॉय करना है ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग छम छम। ब्रेक के बाद आती हूँ और आपसे बात करती हूँ और भी ज्यादा, और थोड़ी सी गॉसिप भी है। छम छम

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

वेलकम बैक लिसनर, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुष लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानस्त्री लाइव, जिसमें हम आज इंजॉय कर रहे हैं बहुत सारी गॉसिप न्यूज, साथ ही साथ एक बहुत ही प्यारी सी प्लेलिस्ट। जी हाँ, नेक्स्ट सॉन्ग सुनने से पहले हम चलते हैं पहले अपने चैट बॉक्स की तरफ, जिसमें शिवा पटेल जी आ चुके हैं। वो कह रहे हैं, बदल गई दुनिया, बदल गया जमाना, क्यों, क्या हुआ शिवा जी, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि आपने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद इट्स कुमार जी आए हैं, वो कह रहे हैं सल्लू चाचा की मूवी। इट्स कुमार जी, मैं आपको बता दे रही हूँ, हमारे सल्लू जी अभी इतने बूढ़े हुए नहीं हैं, ज़्यादातर 60 साल के हुए हैं, लेकिन अभी भी वो सबके भाई जान हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि सलमान खान इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने 3 जनरेशन की एक्टर्स के साथ रहे हैं। जी हाँ, रहे हैं, और क्योंकि ये भी है कि भाई हमारे भाई का क्रेज़ इतना अच्छा है कि सारी एक्ट्रेस उनकी तरफ खिंची चली आती हैं। हालांकि भाई बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि भाई आजकल की दुनिया का ना कोई भरोसा नहीं रहा है। जी हाँ, देखिए दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है, और सबसे बड़ी चीज़ टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि हम सब कन्फ्यूज़ हो गए कि क्या रियल है और क्या फेक। जी हाँ, इसी में हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री भी कन्फ्यूज़ हो चुकी है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संभल के रहना। हालांकि हम सब जानते हैं कि अभी फिलहाल में जब से AI ज़्यादा उसका क्रेज़ आया है, तब से कई सारी न्यूज़ फेक भी निकल रही हैं, कई सारी रियल को भी फेक बता दिया।

लोग बिल्कुल इस पोस्ट के टूट पड़े थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन अब जब फैक्ट चेक हुआ तब ये पता चला इतने बवंडर मचने के बाद कि ये पोस्ट बिल्कुल फेक थी, न्यूज़ बिल्कुल फेक थी। दिव्या खोसला को लोग काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे, जो आलिया भट्ट के फैंस थे वो उनके खुद के मतलब दिव्या खोसला के सोशल मीडिया अकाउंट पे जाकर उनको भला बुरा कह रहे थे, और जो आलिया भट्ट के सपोर्टर थे वो भी अपना जो मत है वो रख रहे थे। लेकिन बाद में भाई पता चला कि ये पूरी न्यूज़ तो फेक थी। जी हाँ, पुरानी बात को ऐसे एडिट करके सामने रखा गया, ऐसे प्रेजेंट किया गया कि ऐसा लगा कि भाई सही में दिव्या खोसला आलिया भट्ट को ताना मार रही हैं। तो दोस्तों ये एक रिमाइंडर भी हमारे लिए कि एक छोटी सी फेक न्यूज़ से पूरे बॉलीवुड में कितना बड़ा हंगामा मच गया। तो भाई इन सबसे अलर्ट रहिए, सोशल मीडिया पे हर चीज आंख बंद करके बिलीव करने वाली नहीं होती है, पहले चेक करो फिर उस पे रिएक्ट करो। अब एक और टॉक और अब बात करते हैं हम एक और टॉक ऑफ द टाउन टॉपिक की। जी हाँ, राजकुमार हिरानी के नए सीरीज प्रीतम और पीद्रो, जिसमें अरशद वारिसी का लीड रोल है, ये एक क्राइम थ्रिलर है और इसने बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से इसकी रिलीज़ होने वाली है। जी हाँ, लेकिन नेटिजन्स के हिसाब से ये रिएक्शन बिल्कुल मिक्स निकले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना ये कर सकते थे। हालाँकि तारीफ ज़्यादा है, लेकिन क्रिटिक्स ये भी बोल रहे हैं कि थोड़ी सी कमी रह रही है। लेकिन अब क्या है, क्या सच्चाई है, ये तो आप सभी को देखने के बाद ही पता चलेगी। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि भैया हमारे बॉलीवुड में एक तरफ फेक न्यूज़ का बहुत क्रेज़ है, एक तरफ पैसे पैसे की न्यूज़ हो रही है, एक तरफ नई रिलीजेज़ हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक बहुत ही धमाकेदार खबर ये भी है जो आप शायद जानते हैं। जी हाँ, देखिए आजकल डोलियाँ बहुत उठ रही हैं, बारात बहुत निकल रही है और काफ़ी ज़्यादा शादी का सीज़न ऐसा लग रहा है कि इसी सीज़न पर चल रहा है बॉलीवुड में। जी हाँ, बात करेंगे इस पे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ, ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको बने रहना है हमारे साथ आज के अपने शो स्वास्थ्य संगिनी, नहीं आज के अपने शो ज्ञानश्री लाइव में, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं शादी की, गॉसिप की और बॉलीवुड न्यूज की। स्टे ट्यून्ड।

0: हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानश्री लाइव, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं बॉलीवुड से जुड़ी हुई कुछ खबरों की। जी हाँ, अभी तक हमने बात की पैसों की, नई मूवी रिलीज की, अल्फा की, फेक न्यूज की, लड़ाई झगड़े सब की। लेकिन अब हम बात जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी करने वाले हैं, क्योंकि भाई देखिए, जैसे जैसे हमारे बॉलीवुड में इस वीक बहुत ज़्यादा घमासान रहा, वहीं कुछ अच्छी न्यूज़ भी हैं जो अब इस हफ्ते रही। जी हाँ, उस पर हम बात करते हैं। वो न्यूज़ भाई बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है। मैं बताती हूँ भाई, सबसे बड़ी खबर ये है कि बॉलीवुड के असली सुपरस्टार ने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा स्टेप ले लिया है। जी हाँ, आमिर खान ने शादी कर ली है। जी हाँ, 61 साल की एज में भी आमिर खान ने अपने प्यार को फुल जज्बात के साथ रिसीव किया है। अपनी पार्टनर गौरी के साथ फेरे लिए हैं। जी हाँ, उनके बेटे आज़ाद और पूरा फैमिली खुशी खुशी शामिल रहे हैं इस पूरे फंक्शन में। पूरी दुनिया में उनको बहुत सारी विशेस मिल रही हैं, एकदम बारिश हो रही है वहाँ पे भी गुड न्यूज़ की। और साथ ही साथ ये भी कि भाई आमिर खान, और ये भी बातें हो रही हैं कि भाई जब आप प्यार ढूंढने निकलते हैं ना, तो कोई उम्र नहीं होती आपको कौन सी उम्र में आपको प्यार मिलेगा। भाई ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी फैंस के लिए कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे आमिर खान ने 61 साल की उम्र में शादी कर ली। उसके साथ ही साथ अब शादी की बात हो रही है, तो हम कैसे भूल जाएं हमारी बॉलीवुड की बहुत ही चहेती व्यक्ति की, जिनका नाम है अंशुला कपूर। जी हाँ, अंशुला कपूर ने अपने दिल के सबसे खास इंसान रोहन ठक्कर के साथ शादी रचा ली है। सेरेमनी एकदम ड्रीमी थी, जहाँ जाह्नवी और खुशी कपूर ने ब्राइडमेड्स बन के 4 चांद लगा दिए। पूरा कपूर परिवार जो है इस सेलिब्रेशन में शामिल था, फुल मस्ती और धमाल हुआ है। और इनसाइड पिक्चर ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है। भाई हम अपने तहे दिल से अंशुला कपूर और रोहन, साथ ही साथ हमारे आमिर खान और गौरी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देने चाहते हैं उनको उनके भविष्य के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस वीक जो है, अभी परसों जाह्नवी कपूर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक फोटो डाली, जिसमें वो एक पूरी ब्राइडमेड के अवतार में है और उनके हाथ पे लिखा है उनके बॉयफ्रेंड शिखर का एक बहुत ही प्यारा नाम शिखू, जिसने फैंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। और तभी से जाह्नवी की बहुत सारी टांग खिंचाई भी कर रहे हैं उनके फैंस, और साथ ही साथ तारीफ भी कर रहे हैं कि वाह प्यार हो तो ऐसा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि और भी सारी जो खबर है वो है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो लोग क्रिकेट के दीवाने हैं उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ी खबर है। कौन सी खबर है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्रिकेट के साथ ग्लैमर और जोश की भी बहुत सारी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको बने रहना हमारे साथ अपने पूरे शो ज्ञानश्री लाइव में।
1: आओ एक भीगी हुई सी कहानी सुनाता, जब आसमान से बूंदे नहीं मोहब्बत बरसी थी, बरसात ने ऐसी धुन छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों तरसी थी।
2: अरे सुन सुन।
3: यस मां।
2: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
3: माँ मैं बाद में देख लूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ।
2: अरे सुन सुन, एक बार देख तो ले।

0: हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञान असील लाइव। भाई वक्त तो बहुत जल्दी भाग रहा है, लेकिन खबरें अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं। एक बहुत ही धमाकेदार खबर मैं आपको बताती हूँ, जिससे आप सभी स्पेशली जो क्रिकेट फैंस होंगे वो बहुत ही ईजिली रिलेट कर पा रहे होंगे और साथ ही साथ इन्जॉय भी करेंगे। जी हाँ, अब थोड़ा सा बात क्रिकेट और बॉलीवुड के मिक्स करते हैं, यानी बहुत मसालेदार करते हैं। देखिए भाई, हमारी अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ऑलरेडी एक बहुत ही पावर कपल की तरह थे, और कपल यही चाहते थे कि भाई इन जैसे इनका रिश्ता है ना, वैसे ही हमारा भी रिश्ता हो जाए। लेकिन भाई ये जोड़ी तो इसको और भी ज़्यादा ऊपर लेती जा रही है। मैं आपको बताती हूँ कि असल में बात हुई क्या है। देखिए भाई, आरसीबी की आईपीएल 2026 की जीत के बाद विक्ट्री बैश में डांस फ्लोर पर ऐसी मस्ती मचाई है इस कपल ने कि भाई वीडियो एकदम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, बिल्कुल आग की तरह फैला हुआ है। भाई उनकी केमिस्ट्री, उनकी एनर्जी ऐसी है कि भाई फैंस यही बोल रहे हैं कि भाई ये कपल गोल से भी ऊपर है, यानी इनको कोई बीट कर ही नहीं सकता। भाई कहाँ से आई है ये जोड़ी जो लोगों में और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट ला रही है, और साथ ही साथ ये जो कपल गोल है, आइडियल कपल वाली जो चीज़ है ना, इसको और भी ज़्यादा बढ़ाती जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो नॉर्मल कपल्स हैं जो इनके अलावा हैं उनमें लड़ाई झगड़ा कराएगी कि भाई देखो ये दोनों तो ऐसे हैं, हम दोनों कभी ऐसे क्यों नहीं हो पाते। और इनकी केमिस्ट्री देख के कहीं ना कहीं ये कपल्स के लिए आइडियल भी बनते जा रहे हैं। अब बात करते हैं भाई फैशन लवर्स की। जी हाँ, देखिए फैशन लवर्स तैयार हो जाओ भाई। देखिए जानवी कपूर ने 90s की नॉस्टैल्जिया वापस ले आई है। जी हाँ, रामचरण की पैडी के प्रमोशन के दौरान उन्होंने पहनी है चॉकलेट ब्राउन साड़ी, जिसकी कीमत पूरे 3 लाख है। लेकिन भाई इधर फिलहाल बात 3 लाख की है, चॉकलेट ब्राउन की नहीं है। उन्होंने इतना एलिगेंट रुख रखा है जो कि 90 दशक की जो एक्ट्रेस होती थी, जो लोग होते थे उनमें जो क्रेज़ था जिस साड़ी का, वही चीज़ को जानवी कपूर वापस लेकर आई। यानी जानवी ने तो रेट्रो ग्लैमर के मास्टर क्लास दे दी है कि आपको कैसे करना है, क्या आपको लुक होना चाहिए, और ये भी एक मिसाल दी है कि लुक्स कभी भी पुराने नहीं होते, फैशन ट्रेंड्स पुराने नहीं होते, बस हमें उसको उसी तरह से कैरी करना होता है। इसी के साथ भाई खबरें होती हैं समाप्त, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा जा रहा है। इसके बाद तो हमारे पास कई सारी खबरें थी, लेकिन वक्त की थोड़ी कमी पड़ रही है। कोई नहीं, नेक्स्ट थर्सडे मिलेंगे आपसे, बहुत सारी बातें करेंगे आपके बॉलीवुड खबर की। लेकिन मैं आपसे कल भी आऊँगी मिलने कुछ ऐसी बातें लेकर, कुछ ऐसी रोचक बातें लेकर के जो शायद आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। वो बात सुनने के लिए आपको कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा अपने ज्ञानश्री लाइव का। समय है 12 बजे। 12 बजे सब अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, जैसे आपने आज लगाई है। लेते हैं आपसे विदा। आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, खुशहाल होंगे और इस बहुत ही प्यारी सी बारिश का आनंद भी उठा रहे होंगे।
1: मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्मार्ट द्वारा समर्थित सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अगले भाग में, और आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा, और हमारे साथ हैं आज हम सभी की प्यारी टीकन जी। जी हाँ टीकन भाभी, आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद। बिल्कुल, और जैसा कि कहते हैं स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, अगर तन मन स्वस्थ है तो धन की भी बचत होती ही रहेगी। आरजे जी, मैंने तो सहतिया जी से कह दिया कि जी तुम तो सिर्फ मुश्किल मुश्किल बातें करते हो, और आज मैं जाऊंगी स्टेशन।
1: अरे भाभी, ये आप ही का तो स्टेशन है, आप जब चाहे आए। वैसे सहतिया जी ने तो काफी काम की बात बताई थी पिछले एपिसोड में। खैर चलिए, आप ही बताइए आखिर क्या बताना चाहती हैं।
2: अरे उनकी बात तो सही थी, पर देख रहे हो आप बारिश किस कदर हो रही है, और जगह जगह बाढ़ और पानी जमा है। तो इस पानी के जमाव से मच्छर की संख्या भी बढ़ रही है, और अनेक मच्छरों के साथ अनेक बीमारियां। अब आप ही देख लो, कहीं डेंगू, कहीं मलेरिया, कहीं काला अजार, तो कहीं फाइलेरिया। ये सब नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज हैं।
1: क्या क्या क्या क्या है ये सब?
2: नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज यानी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, या उपेक्षित मानी जाती है क्योंकि अन्य बीमारियों की तुलना में कम शोधनी थी और सार्वजनिक स्वास्थ्य का ध्यान मिलता है, जबकि ये गंभीर रोग एवं मृत्यु का कारण बनती हैं।
1: तो भाभी चलिए, ये तो सही मौका है, और आज हम अपने पिछले विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे फाइलेरिया की, यानी हाथी पांव की बीमारी की।
2: अरे बिल्कुल, एंटीडीज यानी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, ऐसी बीमारियां जो अक्सर गरीब और ग्रामीण इलाकों में फैलती हैं, जैसे काला आजार, कुष्ठ रोग, डेंगू, चिकनगुनिया और फाइलेरिया। इनका इलाज और रोकथाम है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण लोग तकलीफ उठाते हैं, और कहावत है सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
1: तो चलिए सबसे पहले सुन लेते हैं मनोज बाजपेयी जी की फाइलेरिया पर खास वाला संदेश।
3: नमस्कार, मैं मनोज बाजपेयी। मेरा बचपन ऐसे ही एक छोटे गांव में बीता है, और मैंने लोगों को काला आजार की बीमारी से होने वाली तकलीफों से लड़ते हुए देखा है, इसलिए मैं जानता हूं कि काला आजार जैसी जानलेवा बीमारी कितनी तकलीफ दे सकती है। जैसे मलेरिया मच्छर से फैलता है, उसी तरह काला आजार बालू मक्खी से फैलने वाली एक घातक बीमारी है। तो आज मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, शरीर में कालापन दिखे या पेट में सूजन रहे, तो तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में इसकी जांच कराएं। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में केवल मुफ्त जांच और इलाज ही नहीं, मजदूरी का मुआवजा भी मिलता है। बस एक आखिरी बात, जब भी सरकारी छिड़काव कर्मी बालू मक्खी के खात्मे के लिए आपके घरों में आए, तो कृपया उनकी सहायता पूरी तरह से करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा सहयोग खत्म करेगा काला आजार रोग।
2: वैसे सेहतिया जी और मैं, हम दोनों तो रोज गली मोहल्ले की बातें करते रहते हैं
1: जी,
2: लेकिन क्यों ना आज हम अपने श्रोताओं को उन लोगों से मिलवाएं जो जमीन पर रहकर फाइलेरिया से लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिनकी बातों पर गांव भरोसा करता है।
1: बिल्कुल टीकन भाभी, आज हमारे साथ हैं हमारे ही गांव की आशा दीदी, जो घर घर जाकर लोगों को MDA की दवा खिलाती हैं, और साथ में हम सुनेंगे एक आम ग्रामीण साथी का अनुभव, जिन्होंने खुद दवा ली और दूसरों को भी समझाया। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जो धीरे धीरे शरीर को जकड़ लेती है, जिसका नाम है फाइलेरिया। आज हमारे साथ है हमारी गांव की जानी मानी आशा दीदी, जिनका नाम है सीमा सिंह जी। तो सीमा सिंह जी, सबसे पहले मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
4: धन्यवाद मैम आपको।
1: जी दीदी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आप लोगों के घर जाती हैं तो फाइलेरिया को लेकर सबसे ज्यादा कौन से डर या बातें सुनने में मिलती हैं?
4: सबसे ज्यादा लोग यही कहते हैं, दीदी हमें तो कोई बीमारी नहीं है, फिर दवा क्यों खाएं? कुछ लोग डरते हैं कि दवा से चक्कर आएगा, उल्टी होगी या तबीयत खराब हो जाएगी। कई लोग इसे मामूली समझ लेते हैं, जबकि फाइलेरिया सालों बाद गंभीर रूप ले लेता है।
1: ये बात तो सही है। तो अक्सर लोग दवा खाने से मना कर देते हैं, आपको किन किन बहानों या आशंकाओं का सामना करना पड़ता है?
4: बहाने तो बहुत होते हैं
1: जी।
4: कोई कहता है आज खाली पेट हूँ, कोई कहता है कल खा लेंगे, कुछ कहते हैं पिछली बार दवा खाकर कमजोरी लग गई थी,
1: अरे,
4: और कुछ तो बस अफवाहों के डर से नहीं खाते हैं।
1: क्या बात है। हाँ जी दी, तो ये सब तो देखने को मिलता ही है और बड़ा ही कहीं ना कहीं आपको कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब कोई व्यक्ति दवा लेने से इनकार करता है तो आप उसे कैसे समझाती हैं? क्या कोई अनुभव साझा कर सकती हैं?
4: जी, मैं उन्हें प्यार से बैठकर समझाती हूँ कि यह दवा इलाज नहीं बल्कि बचाव है। मैं खुद दवा खाकर दिखाती हूँ। एक बार एक काका जी बहुत मना कर रहे थे, तो मैंने उनके पोते को समझाया, जब बच्चे ने दवा खा ली तो काका जी भी दवा खाने के लिए मान गए।
1: जी,
4: कभी कभी बात दिल से करनी पड़ती है, जोर से नहीं।
1: बात तो सही है कि जब हम दिल से बात करते हैं तो शायद दिल का कनेक्शन गहरा हो जाता है और लोग समझ जाते हैं।
4: जी
1: जी दी, अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आपने पहले और सब लोगों की सोच में कोई बदलाव देखा था?
4: हाँ बिल्कुल, पहले लोग बहुत डरते थे, पर अब जब देख रहे हैं कि दवा लेने से लोग सुरक्षित हैं,
1: जी,
4: तो भरोसा बढ़ रहा है। रेडियो, पंचायत और स्कूल की बातों से जागरूकता आई है।
1: जी, तो अब ये बताइए कि अगर MDA की दवा खाने के बाद किसी को हल्की परेशानी होती है तो आप क्या समझाती हैं उन्हें?
4: मैं कहती हूँ हल्का चक्कर, नींद या कमजोरी आना दवा का असर है, बीमारी नहीं, या एक दो दिन में ठीक हो जाता है। ज्यादा पानी पीने और आराम करने से सब सही हो जाता है।
1: क्या बात है, बड़े ही अच्छे तरीके से आप समझा लेती हैं। आपको क्या लगता है, अगर आशा, आंगनवाड़ी और रेडियो मिलकर काम करे तो दवा खाने वालों की संख्या कैसे बढ़ेगी?
4: बहुत तेजी से बढ़ेगी। रेडियो से संदेश जाएगा
1: जी,
4: आंगनबाड़ी से समझ आएगी
1: जी,
4: और हम घर घर जाकर भरोसा दिलाएंगे, तीनों मिलकर गांव को फाइलेरिया मुक्त बना सकते हैं।
1: क्या बात है भाई, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। सोचवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब एक से एक और सवाल आपसे पूछ लेती मैं कि आपके अनुभव में किन लोगों ने दवा लेकर दूसरों के लिए मिसाल पेश की है?
4: हमारे गाँव में कई बुजुर्ग महिलाएं और शिक्षक हैं जिन्होंने पहले खुद दवा ली और फिर दूसरों को समझाया। जब समाज के लोग आगे आ जाते हैं तो असर ज्यादा होता है।
1: दोस्तों, ये थी हमारी आशा दीदी, उम्मीद है कि इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और अब हम चलेंगे हमारे गांव के एक प्यारे से सज्जन की ओर और इनसे बातचीत करते हैं। अब हमारे साथ में है हमारे गांव के राम प्रसाद जी, जिन्होंने खुद MDA की दवा ली है। और राम प्रसाद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आपने दवा लेने का फैसला कैसे किया?
5: नमस्ते आरजे दीदी।
1: जी नमस्कार।
5: सच बताया तो पहले तो मुझे बहुत ही ज्यादा डर था, लेकिन आशा दीदी ने समझाया कि बीमारी दिखती नहीं है पर अंदर ही अंदर होती है। फिर मैंने सोचा जब दीदी खुद खा रही हैं तो डर किस बात का।
1: ये बात भी बहुत सही है। अब आपसे एक और सवाल मैं करूंगी, दवा लेने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा?
5: नहीं, कुछ नहीं हुआ, ना चक्कर ना परेशानी, और जैसा लोग डरा रहे थे वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ।
1: अरे वाह, क्या बात है भाई। और अब एक सवाल और आपसे कर लेंगे राम प्रसाद जी, कि आसपास के लोग क्या कहते थे इस चीज को लेके?
5: कुछ तो मना कर रहे थे, तो मैंने कहा मैंने खाई है और मैं ठीक हूँ और तुम भी खाओ। अब वही लोग दूसरों को भी समझा रहे हैं।
1: क्या बात है भाई। ये तो आपने बहुत ही बड़ी वाली मिसाल दे दी, बड़ा अच्छा लगा ये जान के। चलिए अब एक सवाल और आपसे कर लेते हैं लगे हाथ, कि जो लोग अभी भी डर रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे?
5: मैं तो यही कहूंगा कि डर से नहीं, समझ से फैसला ले, दवा खाइए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को बचाइए।
4: श्रोताओं, हमारा आपसे अनुरोध है, दवा लेने से ही फाइलेरिया रुकेगा, डरे नहीं, आगे बढ़ें।
1: और याद रखिए, आशा दीदियां गांव की असली ताकत हैं। जब वो आपके घर आए तो दवा जरूर लीजिए। फाइलेरिया से बचाव दवा से ही संभव है, डरे नहीं, दवा लें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। तो उम्मीद है कि अभी आपने आशा दीदी से बहुत कुछ सीखा होगा। आगे भी ये हमारे साथ बनी रहेंगी

0: निभाए।
1: अच्छा टीकन भाभी, फाइलेरिया पर बातें तो बहुत हुई हैं, कुछ ऐसा है जो आप हमें बताना चाहती हो फाइलेरिया के बारे में?
2: हाँ, फाइलेरिया को रोकने के लिए एक बहुत जरूरी कदम है नाइट ब्लड सर्वे।
1: अरे हाँ हाँ हाँ, ये तो मैंने भी कहीं सुना है, मैंने ये एक वर्कशॉप में भी सुना था।
2: अरे हाँ भाई, सुनो तो, आप लोग अक्सर पूछते हैं कि ये नाइट ब्लड सर्वे होता क्या है और रात में ही क्यों होता है। तो सुनिए, फाइलेरिया के कृमि को हम माइक्रो फाइलेरिया कहते हैं। ये बहुत छोटे छोटे परजीवी होते हैं जो संक्रमित मच्छर के काटने से हमारे खून में पहुंच जाते हैं। ये हमारे लसिका पर्व यानी लिम्फ नोड में दिन में ये छुपे रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है ये बड़ी संख्या में खून में सतह पर आ जाते हैं।
1: ओ अच्छा, जब ही स्वास्थ्यकर्मी रात के समय ही सर्वे करते हुए दिखाई देते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। अच्छा, अब समझ आया।
2: हाँ, स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों की उंगली में हल्की सी सुई चुभोकर कुछ बूंद खून निकालते हैं। उस खून को स्लाइड पर रखा जाता है और माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इससे तुरंत पता चल जाता है कि उस व्यक्ति के खून में माइक्रोफाइलेरिया मौजूद है या नहीं।
1: लेकिन टीकन भाभी, ये सर्वे करना जरूरी क्यों है?
2: इससे हमें यह समझ आता है कि गांव या मोहल्ले में बीमारी कितनी फैली हुई है, किन इलाकों में संक्रमण ज्यादा है और किन जगहों पर बीमारी लगभग खत्म हो रही है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग इसी जानकारी के आधार पर तय करता है कि कहां दवा वितरण अभियान MDA को मजबूत करना है, कहां जागरूकता बढ़ानी है और कहां बीमारी खत्म करने की घोषणा की जा सकती है।
1: तो भाभी, इसका फायदा क्या है?
2: अगर समय पर बीमारी पकड़ में आ जाए तो दवा देकर उसे आगे फैलने से रोका जा सकता है। इससे गांव के बाकी लोगों की भी सुरक्षा होती है, क्योंकि बीमारी का स्रोत कम हो जाता है। लंबे समय में यह सर्वे हमें फाइलेरिया की जड़ खत्म करने में मदद करता है। कहावत है ना कि समय को समझ लिया जाए
1: समस्या
2: समस्या को समझ लिया जाए तो उसका हल आसान हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही, जब हमें पता होता है कि बीमारी कहाँ है, तभी हम उसे सही तरीके से खत्म कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही, और ये भी तो सही है कि ये बीमारी छुआछूत की नहीं है, लेकिन समाज में लोग मरीज से दूरी बनाने लगते हैं।
2: बिल्कुल, बीमारी से पीड़ित को सहारे की जरूरत होती है, लेकिन लोग दूरी बना लेते हैं। मेरा कहना है, मरीज को अपनाइए, उससे दूरी मत बनाइए।
3: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
4: प्राथमिकता देंगे,
3: क्योंकि सेहत ही असली धन है।
4: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
3: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
4: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
3: विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
1: तो दोस्तों, आज का हमारा ये सेगमेंट यहीं समाप्त होता है। याद रखें, सही जानकारी, समय पर इलाज और सामूहिक प्रयास से हम हर बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत दवाई जरूर खाएं। टीकन भाभी के अनुभव से हमें बहुत प्रेरणा मिली है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। और याद रखिए, सेहत सही तो लाभ कई। तब तक के लिए अलविदा और स्वस्थ रहिए, सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई, अपने आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो यानस्ली 89.6 FM पर।
3: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
0: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
3: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
0: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
3: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
3: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
2: और जेंट्स के लिए?
3: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
2: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
3: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और आरजे अंशिका। इनको इतनी जल्दी थी कि बीजीएम में आरजे समता एंड आरजे टक से इन्होंने कट कर दिया, अंशिका का नाम ही नहीं आया आज बीजीएम पे। चलो कोई नहीं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो जिसका नाम है
2: सुन सहेली।
3: मैं हूँ आपकी आरजे समता
4: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
3: तो भाई दोनों लोग आ गए हैं। अंशिका की आवाज में इतनी धीमी गति क्यों थी, जबकि ये तो मुझे कहती है कि आप बड़े बुजुर्ग हो, ये है वो है, लेकिन बड़े बुजुर्गों की आवाज चहकती है तो बच्चों की आवाज भी चहकनी चाहिए। तो फिर से बोलेंगे, मैं हूँ आपकी आरजे समता
4: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
3: तो दोनों मिलकर के आ गए हैं और आपका पसंदीदा शो शुरू हो गया है और एक साथ एक ही फ्रेम में इस प्यारे से मॉनसून का स्वागत करते हैं, क्योंकि इतनी गजब वाली बारिश हुई है यार। आज सुबह को जब हम लोग उठे, सुबह भी हो रही थी, कल रात को भी हुई है, और जब अभी हम लोग कॉलेज आ गए थे तो 10:30 के आसपास इतनी झमाझम बारिश हुई है कि आज गोंडा की सड़कों का तो बुरा हाल हो गया होगा। मतलब अभी वापसी में पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पानी का सैलाब आ गया है, कहाँ कहाँ पानी भर चुका है। तो वो तो जाते टाइम पता चलेगा कि वो तो आंखों देखा हाल बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मॉनसून का स्वागत कर देते हैं। हैप्पी मॉनसून मेरी तरफ से।
4: हैप्पी मॉनसून तो चलिए अब
3: किसकी तरफ से?
4: मेरी तरफ से।
3: तो बोलो ना, मेरी तरफ से हैप्पी मॉनसून।
4: मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी मॉनसून।
3: तो एक साथ एक ही फ्रेम में विश करते हैं भाई, दोपहर है क्योंकि टाइमिंग हमारा दोपहर वाला होता है, तो एक साथ एक ही फ्रेम में विश करते हैं
2: शुभ दोपहरिया।
4: शुभ दोपहरिया दोस्तों, और आ गए हैं बहुत ही मस्ती मजेदार और बहुत ही अच्छे से मूड में है, और मूड अच्छा होने का एक कारण है, और कारण ये है कि मेरे बगल में जो बैठी हुई है वो अच्छे से स्माइल कर रही है अभी अभी, और थोड़ी देर पहले वो स्माइल गायब थी लेकिन अब आ गई है।
3: अब आ गई ना, क्योंकि लिसनर्स आ गए ना, शो आ गया ना मेरा, तो जितनी भी टेंशन वेंशन होती है ना वो सारी एक तरफ रख देते हैं हम लोग, और लगता है कि हाँ, मतलब वो ना अपने आप को अपने आप के गाल छू करके भी लग जाता है कि अरे हाँ, मतलब वो चबी चिक्स हो जाते हैं तुरंत खुशी के मारे। तो कहते हैं ना, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं होती है। आप कितना भी आप काजू बादाम ये वो दुनिया भर की चीजें खा लो, लेकिन अगर आपने खुशी खा ली है ना, तो वो इंसान एक अलग सा ही निखर के सामने आता है।
4: वाह,
3: बिल्कुल। तो चलिए, अब हम लोगों ने खुशी हम लोगों ने देख ली है, मतलब खुशी हम लोगों ने एब्जॉर्ब कर ली है। सभी लिसनर्स का स्वागत है, रेडियो गार्डन से जो हमें सुन रहे हैं उनका स्वागत है, फ्रिक्वेंसी से जो सुन रहे हैं उनका भी स्वागत है, और जो हमारे चैट बॉक्स में अभी तक नहीं आए हैं वो जल्दी से एंट्री अपनी कर दें, क्योंकि आज है भाई थर्सडे, और थर्सडे के दिन हम दो इम्पॉर्टेंट बात करने आते हैं। एक तो हम बात करने आते हैं अपने सीनियर सिटीजन्स पर, एंड दूसरी बात हम बात करते हैं हम अपने पेड़ पौधों पर। तो घर की देखरेख की पेड़ पौधों के साथ साथ मॉनसून में पेड़ पौधों की देखभाल कैसे की जाए।

0: कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो अगर आपने अभी लगा दिए तो 1-1.5 महीने 2 महीने में वो अच्छे से फल जाते हैं। तो भाई बहुत सारी जानकारियां हैं, मतलब वन बाय वन, लेकिन उसके पहले आइए सबसे पहले सेगमेंट की ओर चलते हैं जो कि हमारा होता है पोयम, यानी कि डे वाइज पोयम। तो आज है हमारा सीनियर सिटीजन्स पे एक बहुत ही प्यारी सी पोयम जो मैं लेके आई हूँ।
1: तो चलिए, बारिश में सभी करते हैं छम छमा छम छम, बारिश में सभी करते हैं छम छमा छम छम। अब पोयम सुनाएंगी आपकी आरजे समता,
0: छम छमा छम छम।
1: अरे वाह वाह, लय और ताल सब मिल गई,
0: लय और ताल सब मिल गई ना। तो शुरू करें?
1: बिल्कुल।
0: ओके, चेहरे की हर झुर्री से पता, चेहरे की हर झुर्री में छुपा एक सवाल, चेहरे की हर झुर्री में छुपा एक सवाल, ये सिर्फ उम्र का ढलना नहीं है, ये तो जीवन का सबसे सुंदर निखार है। जिस आंगन में ये बुजुर्ग बैठते हैं, जिस आंगन में ये बुजुर्ग बैठते हैं, वहीं खुशियों के फूल खिलते हैं। इनकी डांट में भी एक दुआ होती है, इनके साए में हर मुश्किल आसान होती है। इन्होंने धूप छांव सब देखी है, जिंदगी हर किताब पढ़ी है। किताबों में जो ज्ञान नहीं मिलता, वो इनकी बातों और तजुर्बों में मिलता है। थक गए हैं पैर चलते चलते, थक गए हैं पैर चलते चलते, अपनों की राह बदलते बदलते। अब वक्त है हम हाथ थामे इनका, अब वक्त है हम हाथ थामे इनका, पूरा करें एक छोटा बड़ा सपना, दें इन्हें सम्मान, थोड़ा सा वक्त और प्यार, यही तो है इनके जीवन का असली आधार। घर के ये बड़े बुजुर्ग नहीं, घर के ये बड़े बुजुर्ग नहीं, भगवान का रूप है। कड़कती ठंड में जैसे गुनगुनाती सी धूप है, कड़कती ठंड में जैसे गुनगुनाती सी धूप है।
1: वाह वाह वाह वाह, मतलब वो बहुत ही अच्छी। और मैम ने अभी जितनी फीलिंगफुल तरीके से सुनाई तो कुछ याद भी आ गया और थोड़ा सा फील हो गया। मुझे नानी याद आ गई मेरी।
0: ओके,
1: क्योंकि ऐसे होता है कि जब कोई बात करता है तो बस नानी नाना और दादा दादी की ही वो फेस बिल्कुल आगे आ जाता है, याद आ जाता है। तो बहुत अच्छी थी मैम, बहुत फीलिंगफुल, बहुत अच्छी लगी।
0: थैंक यू सो मच। तो अभी हम जानना चाहेंगे रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ।
1: रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ बताते हैं आज का। तो आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ आप सभी से कहता है, ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा सोचने से इरादे कमज़ोर हो जाते हैं, और जब हम किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हमें राय भी पहाड़ समान लगने लगती है। कहने का सेंस ये है कि हो सकता है प्रॉब्लम बहुत छोटी सी हो, लेकिन जो कि आप उसके बारे में कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हैं इसलिए वो आपको पहाड़ लग रही है।
0: वो पहाड़ लग रही है। और धीरे धीरे, पता है अंशिका, मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जिस चीज़ के लिए आप दिन भर सोचते हैं ना, और वही चीज़ फिर वो एक्सटेंड होती जाती है। मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, आपने अपने आप को शीशे में देखा। अच्छा, इसके साथ पहले मैं एक और बात बता दूं कि महिलाओं की आदत होती है, स्पेशली हम सभी महिलाएं हैं और हम सभी लोगों की भी एक सोच होती है कि हम अगर कहीं जाते हैं तैयार हो करके, रेडी हो करके, तो शीशे में देखते हैं और सबसे पहले क्या कहते हैं कि अरे आज तो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ।
1: हाँ।
0: है ना। और एग्जैक्टली जब फील हो जाता है कि जब मैं सुंदर लग रही हूँ, तो वो फील हमारी पूरी चेहरे पे, पूरी बॉडी पे आ जाता है, आ जाता है ना। और अगर इसका उल्टा, अगर हम किसी दिन सुबह उठ करके हम ये देख लेते हैं अपने आप को, अरे यार हम कितने वीक लग रहे हैं ना, हमारा चेहरा कितना डल लग रहा है ना, अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो वो पूरा दिन हमें फिर ऐसे ही अपने आप को फील करते हैं और लोगों का थॉट भी हमें वैसे ही मिलने लगता है,
1: वैसे ही मिलने लगता है
0: कि अरे यार तुम कितना वीक हो रही हो, तुम क्या कर रही हो, मतलब इतना ज्यादा दुबली हो गई हो, ये है वो है, क्योंकि माइंड में मॉर्निंग में हमने ये थॉट डाल दिया कि आज तुम अच्छी नहीं लग रही हो, तुमने आज अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, तुम आज अच्छी नहीं लग रही हो। तो वो पूरा मतलब एंड ऑफ द डे क्या होता है कि पूरा दिन हमारे माइंड में वही चलता रहता है और वही हमें दिखता भी रहता है। तो इसीलिए पॉजिटिव रहना जरूरी होता है।
1: पॉजिटिव पॉजिटिव, बहुत सारा पॉजिटिव, क्योंकि कहते हैं ना, नेगेटिविटी तब तक आपके पास नहीं आएगी जब तक आप उसे आने नहीं देंगे। तो पॉजिटिव रहें हमेशा, पॉजिटिव सोचें, और अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो उसे कभी बहुत ज़्यादा बड़ा मत बनने दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो होती है ना वो बहुत छोटी होती हैं, बड़ा उन्हें हम ही बना लेते हैं।
2: हाँ, बना
1: तो सोचें, खुश रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। और अगर आपके पास खुश रहने का कोई तरीका नहीं है तो एक तरीका मैं बताती हूँ।
2: हाँ,
1: और वो ये है कि फटाफट से उठाइए मोबाइल और फटाफट से ट्यून करिए रेडियो ज्ञानस्लेट 9.6 एफएम। हमें सुने, क्योंकि हम जो भी बताते हैं वो आपकी केयर से जुड़ा होता है, आपकी हेल्थ से जुड़ा होता है और साथ साथ आपकी खुशियों से भी जुड़ा होता है।
2: बिल्कुल, तो देर किस बात की है, आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है, हम दोनों आजेस, हम दोनों सहेलियां भी आ गए हैं। तो टाइमिंग हम लोगों ने अभी थोड़े दिन हुए, हम लोगों ने टाइमिंग अपनी चेंज की है, मतलब टाइम हम 1:30 पर बिल्कुल आ जाते हैं, एंट्री ले लेते हैं और उसके बाद हम अपना प्रोग्राम यानी सेकेंड सेगमेंट हम शुरू करेंगे अभी। लेकिन उसके पहले आइए सुना देते हैं, क्योंकि रेडियो में एक सबसे बड़ी खासियत बात होती है कि भाई गाने बड़े अच्छे चलते हैं, वो भी हमारे सुन सहेली शो में। ऐसा सुनने को आया है कानों कान कि सुन सहेली हो और गाने अच्छे ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। तो चलिए, हमारी अगर कुछ लिसनर्स को ये लगता है तो उनकी हमें बात भी रखनी है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक दोस्त ही दोस्त का मान रखता है। तो आइए सुना देते हैं इस प्यारे से गाने को, उसके बाद फिर से आएंगे एक नए टॉपिक की ओर। तब तक के लिए सुनते रहिए 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन में। मैं हूँ आरजे समता
1: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
2: स्टे ट्यून्ड।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9970931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: डिलिशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता और साथ में है आज अंशिका। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि हमारा होने वाला है बहुत ही, कहते हैं ना कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम गंभीर हो जाते हैं, क्यों अंशिका?
6: यस मैम,
5: मैं गंभीर बहुत हूँ, लोग ऐसा कहते हैं,
6: ऐसा कहते हैं,
5: पर मैं बोलती बहुत हूँ ऐसा लोग ये भी कहते हैं।
6: कोई बात नहीं, मतलब कुछ चीजें जो
5: ठीक हो जाएगी,
6: ठीक हो जाती है, आप सबको ठीक करती हैं, लेकिन
5: पर यहाँ तो मुझे ठीक करने के लिए कहा जा रहा है।
6: तो ऐसा भी कोई है ही, पहले तो ये अच्छी बात है और दूसरी बात है अच्छा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। और बोलना भी चाहिए भाई, देखिए बोलना और शॉपिंग करना, ये दो जो हम फीमेल होती हैं उनका वो जन्मसिद्ध अधिकार है, वो उनसे बिल्कुल नहीं छीना।
5: और ये दोनों मुझे बहुत पसंद है, मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, एक्चुअल में बहुत पसंद है, और अपने अपने अपने लिए तो मैं करती हूँ, और मुझे सभी के लिए शॉपिंग करना हाँ। बहुत अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँ, मेरा मन ये होता है।
6: यस मैम, ऐसा होता है कि मतलब हम जाते हैं तो हमको लगता है यार ये भी लाओ, फिर याद आता है कि हमें किसके किसके लिए क्या क्या करना है
5: हाँ।
6: तो ये एक अच्छी वाली फीलिंग होती है और खुशी भी होती है फिर। तो इसलिए आप ज्यादा बोलती हैं, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो ज्यादा कम मिड में सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी।
5: एग्जैक्टली, तो चले अपने टॉपिक की ओर।
6: यस यस ऑफकोर्स, नहीं तो वो होता है ना, क्या कहते हैं,
5: हमारी बातें जो है ना वो फिर एक्सटेंड होती जाएंगी और हम टॉपिक से भटक जाएंगे।
6: राह नहीं भटकते हैं, राह पे रहते हैं, क्योंकि राह भटकना अच्छी बात है।
5: अच्छा जी, तो मुझे एक पहले आपसे एक प्रश्न पूछना है, वो प्रश्न ये है कि बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर के आज हम कुछ आपसे बात करने जा रहे हैं। पूछो क्या
6: क्या।
5: देखो
6: हाँ,
5: मुझे ये लगता है कि 40 की उम्र में, 35 की उम्र में जब बहुत ज़्यादा सोचना है, मतलब 40 से 45 साल की उम्र की जो औरतें होती हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, नहीं मतलब बुजुर्ग नहीं होते उस समय, मतलब
6: मिड एज होती है,
5: उसमें जब इतना सोचना होता है तो सोचो जो 60 के ऊपर होते हैं, क्या उनमें सोच की मात्रा ज्यादा नहीं हो जाती है?
6: बहुत ज्यादा होती
5: है ना। तो उसको जैसे जो लोग ज्यादा सोचते हैं ना, तो देखो सोचने में ये भी होता है अंशिका कि हम मतलब पॉजिटिव भी सोचते हैं और नेगेटिव भी सोचते हैं।
6: बिल्कुल मैम,
5: है ना। तो लोग कहते हैं यार बहुत ज्यादा सोचती है ये, और सोचने से क्या होता है कि ये बिगड़ सकता है, वो बिगड़ सकता है, पर सोचना तो अपने वश में नहीं है ना।
6: ये तो आपने सही कहा कि सोचना तो बिल्कुल भी अपने वश में नहीं होता है। इसको इस तरह लेते हैं लिसनर्स कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे और कोई आपने कोई इंसिडेंट देख लिया, मान लीजिए मैं घर जा रही हूँ, मैंने कोई एक्सीडेंट ही देख लिया, तो हमारे मन में वो चीज घूमती है, बाहर नहीं निकलती। और जब कोई चीज आपके दिमाग से बाहर नहीं निकलती तो वो आपको परेशान कर देती है, और वही होता है सोचना, यानी ओवर थिंकिंग। कई बार हमारी जैसे कोई कह देता है, मान लो मैं अच्छे से रेडी होके निकली हूँ और मुझे किसी ने कह दिया, अरे यार ये ड्रेस नहीं अच्छी लग रही, तुम्हारे ऊपर ये कलर नहीं अच्छा लग रहा, अरे अंशिका तुम इतनी वीक हो गई हो, तो वो मन में मेरे घूमता है कि अरे लगता है मैं वीक हो गई हूँ इसलिए लोग मुझे कह रहे हैं। लेकिन एक तरीका है कि जिससे ये आपके ऊपर बिल्कुल हावी नहीं होगा।
5: क्या?
6: और वो तरीका ये है कि जब बातें दिमाग में घूमती रहें, या फिर कोई चीज आपको पिंच कर जाए, कई बार हमारे अपने हमें कुछ बोल देते हैं तो वो हमें पिंच कर जाता है, बुरा लगता है। 2 दिन पहले मैं ऐसी ही एक मेंटल सिचुएशन में थी, किसी ने मुझे कुछ कह दिया था और मुझे बात फील हो गई थी और फिर मुझे बुरा लगा बाद में, लेकिन मैंने एक तरीका निकाला उसका। एक काम करना है आपको, अच्छी सी डायरी उठाइए, अच्छा सा पेन उठाइए, आपके मन में जो भी चल रहा है, जितनी भी बातें चल रही हैं, आपको ये नहीं देखना है कि आपके मन में क्या चल रहा है, बस उस पे लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। ये भी नहीं देखना है कि राइटिंग कैसी बन रही है, वो लाइन से लिख रहा है, लाइन के बाहर जा रहा है, कुछ नहीं। आपको सिर्फ पेजेस भरने हैं और वो पेज आपको तब तक भरते जाना है जब तक आपके मन की लास्ट बात आप उस पेज पे नहीं लिख देते।
5: ओके,
6: वो 10 भरे, 15, 20, 25, कितने भी, और जब आपको लगे कि अब आपका दिमाग पूरी तरीके से खाली हो गया है, इट मींस आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा था आपने सब कुछ लिख दिया, अब आपके दिमाग में कुछ नहीं बचा, वहां आपको स्टॉप कर देना है, वो सारे पेजेस फाड़ देने हैं, और फाड़ के फेंकने के बाद आप 10 मिनट बैठिए आंख बंद करके, और उसके बाद आंख खोलिए तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। देखिए, इसमें एक साइकोलॉजी की थ्योरी होती है मैम, और वो ये होती है कि हमारे मन में जब कोई बात घूमती रहती है तो ही परेशान करती है, लेकिन जब हम उसे पेपर पे लिख देते हैं तो हमारा दिमाग उसे सिक्योर मान लेता है, और जब हमारा दिमाग किसी चीज़ को सिक्योर मान लेता है तो वो हमें दोबारा कभी याद नहीं आती। तो जिन्हें भी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है वो एक बार इस टेक्निक को यूज़ करें।
5: बिल्कुल। तो साथ ही साथ में मैं बताऊं अंशिका कि मेरे साथ, मतलब मैं तो ये काम करती हूँ, लेकिन अगर जिनको भी लगता है कि ओवरथिंकिंग आ रही है या ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, लाइक जैसे हो गया कि आप अपनी हेल्थ को लेकर के सोच रहे हैं, किसी रिलेशन को लेकर सोच रहे हैं, घर की बातों को लेकर सोच रहे हैं, जॉब की बातों को लेकर सोच रहे हैं, तो प्लीज़ आप एक काम करें कि जैसा कि बताया अंशिका ने अभी, तो मैं तो वैसा ही करती हूँ, आप लोगों को भी ये काम करना है कि उन सारी स्ट्रेस को बाहर निकालना है।
6: बिल्कुल।
5: और स्ट्रेस जब बाहर निकलेगा ना, तो आप अपने आप को पहले जैसा ही एक खुशनुमा सा महसूस कर पाएंगे,
6: जैसे मैम महसूस कर रही है।
5: हाँ, जैसा मैं महसूस करती हूँ, मैं
6: अच्छा।
5: बेड़ियों से निकलने के बाद जो खुशी होती है ना, मैं वो अपने आप को महसूस करती हूँ,
6: खुशनुमा, प्यारा,
5: न्यू,
6: अच्छा सा,
5: एक नया एहसास,
6: नए
5: जज्बात।
6: जी।
5: चलिए, तो ज्यादा नहीं हम भीगेंगे इसमें। पहला प्रश्न ये है कि आज
6: भीगने में समय है अभी।
5: हाँ, पहला जो कि आज डिसऑर्डर हम कह सकते हैं उसको, जो कि है SAD, सैड, जिसको कह सकते हैं हम लोग
6: जी,
5: बट सैड नहीं बोलेंगे, ये अलग अलग वर्ड्स हैं, SAD डिसऑर्डर, जो कि बड़े बुजुर्गों में ये हमेशा से पाया जाता है, जो कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, ये वो डिसऑर्डर है जिसमें हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें अकेलेपन में रहने का एक खौफ हो जाता है, एक डर हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, कैसे हो जाता है, क्यों होता है, इसकी डिटेलिंग आपको अंशिका देंगी एंड उसका निवारण मैं आपको बताऊंगी।
6: ओके, तो मैं बताती हूँ आपको कि ये क्या होता है और क्यों हो जाता है। बढ़ती उम्र में क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन्स की सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है कि उन्हें घर में ही रहना पड़ता है। अगर जैसे मान लीजिए 50 है, 55 है या 40 भी है, तो ज़्यादातर आप कहीं ना कहीं अपना टाइम घर पे बिता रहे हैं या जॉब पे भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मेंटल ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जिसमें आप पैनिक रहने लगते हो।
5: हाँ।
6: पैनिक रहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने कोई इंसिडेंट देखा, हमने न्यूज़ में ही देखा कि किसी बच्चे ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया है या उनके साथ बुरा व्यवहार किया है या कुछ भी ऐसा, तो हमें लगने लगता है कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम दूर होने लगते हैं, हमें एक डर सा लगने लगता है कि अरे अगर कोई आपके पास बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा आपकी ख्याल करता है, आपके साथ रहता है, तो कहीं ना कहीं उनसे दूर होने का एक डर सताने लगता है, मन को बार बार ये लगने लगता है कि कहीं मेरे अपने मुझसे दूर तो नहीं हो जाएंगे, कहीं वो मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे, कहीं अगर फलाने के बच्चे ने ऐसा किया तो मेरा बच्चा भी तो नहीं करेगा।
5: हाँ।
6: तो कहीं ना कहीं बाहरी माहौल का असर है और मेंटल सिचुएशन का भी, क्योंकि देखिए बढ़ती उम्र में वो घर में है, उन्हें बच्चों के अटेंशन की ज़रूरत है, लेकिन बच्चे अटेंशन नहीं दे पाते प्रॉपर, क्योंकि भाई बच्चों को जॉब पे जाना है, जो जॉब पे नहीं जाते उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, तो कहीं ना कहीं उनसे दूर रहकर बच्चों को अलग जाना पड़ता है, लेकिन जो कि उनकी मेंटल सिचुएशन है तो उन्हें लगता है कि सब उनसे दूर हो रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं। इसका एक कारण ये भी होता है कि हर वक्त चिंता करना, हर वक्त सोचते रहना। तो जब देखिए, जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं, बहुत सीधी सी चीज़ है, मान लीजिए कि आपके सामने एक गिलास पानी रखा हुआ है, अब आप उस एक ग्लास पानी को सिर्फ पानी की तरह समझ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। मान लीजिए खुला रखा हुआ है, आपने उस पर ढक्कन नहीं लगाया, तो आप ओवर थिंकिंग क्या करते हैं, कुछ गिरा तो नहीं होगा पानी में, इसमें कुछ होगा तो नहीं, कुछ गिर तो नहीं गया होगा, तो ये कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग है। चीजों को कभी घुमा कर नहीं सोचना चाहिए। जब चीजों को आप घुमा कर सोचोगे तो वैसी ही सोच बन जाएगी और फिर वो चीजें धीरे धीरे हमारे माइंड में जब बैठ जाती हैं तो वही मेंटल डिसऑर्डर बन जाते हैं।
5: एग्जैक्टली, बिल्कुल।
6: तो इसके कुछ लक्षण भी होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ और फिर ठीक कैसे करना है वो कौन बताएगा?
5: मैं क्योंकि मेरी आदत है ना ठीक करना लोगों को।
6: मैम की आदत है ठीक करना, और अभी फिलहाल मुझे लग रहा है मैम के ऊपर भी प्रयोग होने वाला है ठीक करने वाला। ऐसा प्रतीत
5: ऐसा अंदर से फील हुआ है,
6: ऐसी गट फीलिंग मुझे आ रही है,
5: ऐसी गट फीलिंग आ रही है
6: कि
5: मेरे पर भी अब वो काम होने वाला है,
6: होने वाला है।
5: हाँ।
6: कि चलिए आपने बहुत कर लिया, अब आपके ऊपर करके देखते हैं कि क्या उसका रिजल्ट आएगा,
5: उसका रिजल्ट क्या होता है।
6: वैसे रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, आई नो वेरी वेल।
5: ठीक,
6: तो चलिए लक्षण बता देते हैं फिलहाल, वरना अगर हम ये बात करेंगे ना तो अभी मैम हंस रही है, अभी थोड़ी देर बाद मैम ब्लश करेंगी,
5: गुस्सा हो जाएंगी, फिर
6: नहीं गुस्सा नहीं होंगी। वो आपने अपने गुस्से को आजकल कहीं छुट्टी पे दे दिया है,
5: छुट्टी गई, छुट्टी।
6: कुछ महीनों से मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि वो छुट्टी पे, और आई होप छुट्टी पर ही रहे,
5: छुट्टी पर ही रहे।
6: कूल वाली
5: ऐसे लोग छुट्टी पे रहे तो ज्यादा सही रहता है,
6: कूल वाली ज्यादा अच्छी है हमारी मैम। ऐसे गुस्से वाली भी बुरी नहीं है, बट कूल वाली ज्यादा अच्छी।
5: चले काम पे चले।
6: हाँ काम पे
5: जी। तो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जो उसके सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स बताएंगी अंशिका?
6: सिम्टम्स बताती हूँ कि अपनों से दूर रहने का सिर्फ एक सोच लेना कि हम अपनों से दूर हैं, वो हमें पैनिक कर देता है, मतलब पैनिक हो जाते हैं आप, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। मान लीजिए इतनी छोटी सी बात है कि दो मिनट आधे घंटे के लिए आपके घर के सभी मेंबर्स, मान लीजिए वाइफ है बच्चे हैं, और वाइफ ने कहा कि हम जा रहे हैं मार्केट कुछ सामान लाना है, और बच्चों ने कहा कि मैं कोचिंग क्लास जा रहा हूँ, और आपको आधे घंटे के लिए घर में अकेला रहना पड़ा और आपकी सिचुएशन बिल्कुल पैनिक हो गई, आप बहुत ज्यादा घबरा गए, तो वो एक लक्षण होता है कि हाँ आपको सेपरेशन एंजाइटी हो रही है। दूसरा होता है कि हर समय चिंता करना और हर समय ये डर लगा रहना कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, कहीं जो मेरे घर के मेंबर बाहर गए हैं उनके साथ ऐसा तो नहीं होगा कि कोई एक्सीडेंट हो जाएगा उनका या कोई दुर्घटना हो जाएगी, ये बात हर वक्त सताते रहे।
5: हाँ।
6: ये भी एक लक्षण होता है। तीसरा होता है कि आप अपने अपनों के बिना कहीं बाहर नहीं जाते। बाहर जाना तो छोड़िए, आपको अकेले रहने में यानी अपने कमरे में रहने में, मान लीजिए आपकी वाइफ है वो किचन में काम कर रही है और अपने कमरे में आप अकेले हैं, वहाँ भी आपको नहीं अच्छा लग रहा है, और साथ ही साथ में अकेले सोने में भी डर लगना, तो इट मीन्स कि सेपरेशन एंजाइटी हो रही है। और लास्ट लक्षण होता है जो कि हमें फिजिकली दिखने लगता है, वो होता है चिंता के कारण आपका सिर दर्द होना, पेट दर्द होना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, ये सारे लक्षण दिखने लगते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा होते हैं तो इट मीन्स कि आपको ये डिसऑर्डर है, आपको ठीक करने की यानी कि कुछ प्रिकॉशंस को लेने की जरूरत है। तो क्या जरूरत है, चलिए जानते हैं।
5: तो क्या करना चाहिए उसके लिए मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास जाकर के आप अपना एक रूटीन चेकअप करवाएं, स्पेशली मानसिक स्थिति को लेकर के, क्योंकि अगर आपको ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी को में आपको ये जो डर लग रहा है तो वो प्रभावित कर सकता है आपको। तो इसके लिए किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मिलकर, ये आपको बिल्कुल भी नहीं इसमें मतलब घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है कि ऐसा वो क्या प्रश्न पूछ लेंगे।
6: जी, जी।
5: वहाँ पर एक काउंसलिंग होती है जो कि आपकी मानसिक स्थिति को पूर्ण रूप से जानने की तैयारी होती है, मतलब आप क्या हैं, क्या सोच रहे हैं और किस हद तक आप सोच सकते हैं, तो मानसिक स्थिति के बारे में पूर्ण वो आलंकन करते हैं, और जहाँ पर उसका जो एक निवारण निकल के आता है कि हाँ आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी हल्की फुल्की मेडिसिन चलती हैं, अदरवाइज वो एक काउंसलिंग से भी केवल ठीक हो सकता है।
6: बिल्कुल।
5: सेकेंड पॉइंट इस कि अगर आपको कोई भी आपका वहम है, कोई भी अगर आपकी जिद है, तो उसको भी समझने की कोशिश आपके घर वाले करें। उसको कहने का मतलब है कि वो आपको सहानुभूति देते रहें। मान लीजिए कोई वहम है, सीनियर सिटीजन्स को वहम हो जाता है कि मैंने ये दवा खाई थी कि नहीं खाई थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैंने दवा खाई है कि नहीं खाई है, ऐसा कई बार हो जाता है, मेरी मम्मी को भी ऐसा हो जाता है, याद नहीं रहता है कि मैं शाम को मैंने दवा खाई थी या शुगर की या नहीं खाई थी। फिर फिर उनको लगता है यार मैंने खाई तो थी, फिर हम लोग कहते हैं नहीं डबल वार नहीं हो जाए, तो ये एक वहम हो जाता है।
6: हाँ।
5: तो क्या होता है कि मेडिसिन को गिन करके फिर वो मतलब ऐसे रखती हैं कि मैंने चार मैं लेके आई थी, मैंने दो खाई है तो दो अभी मेरी बाकी है, तो इट मीन्स मैंने नहीं खाई है। तो सहानुभूति वाला एक मतलब अच्छा वाला एक प्लेटफॉर्म उनको देना चाहिए, उनको हमेशा समझाते रहना चाहिए कि कुछ नहीं है ऐसा भाई, क्योंकि कहा जाता है कि बड़ी से बड़ी बीमारी आपकी एक आत्मशक्ति आत्मविश्वास के साथ में अगर आप बने रहे ना कि नहीं मुझे कुछ नहीं है मैं ठीक हूँ, और ये मैंने खुद पे करके देखा है, मतलब जैसे कभी भी कुछ होता है ना तो मुझे लगता है कि नहीं मैंने अपने आप को ये मतलब मेंटली ये चीज मैंने अपनी मम्मी के ऊपर भी इसका परीक्षण किया है, उनको भी कई बार मैंने ये चीजें मैंने बताई हैं, तो उनको भी लगता है कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो काफी समय से, लेकिन सबसे बड़ी होती है सोच, अगर आपने सोच अच्छी कर ली तो आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपकी फिजिकल हेल्थ भी आपकी अच्छी रहती है। तो सहानुभूति से अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बात करें, उनको उस अकेलेपन से दूर करें।
6: बिल्कुल, तो आई होप कि आपने सुना समझा और आप अपने घर के बुजुर्गों पर इसको यूज जरूर करेंगे। फिलहाल चलिए चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, सुनते हैं एंजॉय करते हैं, और बस यूं गई और यूं आए, तब तक के लिए आप सुनिए और एंजॉय करिए स्टीरियो।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
5: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
6: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
7: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
8: गोंडा शहर की धड़कन।
9: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
10: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।
11: तो बिल्कुल,
10: लेकिन उसके पहले मैं चाहती हूँ चैट बॉक्स में आ जाते हैं।
11: जी मैम।
10: ठीक है, तो चैट बॉक्स में आने से पहले हम सभी के सबको गुड आफ्टरनून एंड सभी को शुभ दोपहरिया। एंड अंशिका सबके नेम पढ़ेंगे कि कौन कौन हमारे चैट बॉक्स की खिड़की पे आ गए हैं।
11: चलिए बैकलाइन से शुरू करते हैं और सबसे पहले आ गई हैं अनुष्का जी। अनुष्का जी लिख रही हैं गुड आफ्टरनून दोनों आरजेस मैम को, गुड आफ्टरनून। और राजेश सिंह जी भी आ चुके हैं जो लिख रहे हैं नमस्ते, नमस्ते आपको भी। और नागेश्वर जी आ गए हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, नमस्कार, नमस्कार आपको भी,
10: नमस्कार नागेश्वर जी।
11: धर्मेंद्र मोहन जी ने बहुत सारे बादल भेज दिए हैं और लिख रहे हैं वेरी वेरी बेस्ट,
10: वेरी वेरी बेस्ट सॉन्ग,
11: थैंक यू। और साथ में लिख रहे हैं समता जी, अंशिका जी शुभ दोपहरिया, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आपको भी और शुभ दोपहरिया
10: जी।
11: आफरीन खान जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून आपको भी, कैसे हैं आप?
10: तो अभी हमारे जितने भी लिसनर्स आ गए हैं उनका स्वागत है एंड जल्दी से और भी सारे लिसनर्स आ जाएं ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक को फटाफट आप तक पहुँचाने का काम कर सके।
11: बिल्कुल, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो ये है कि अभी कल हमने क्लास ली थी फीमेल्स की, कि वो जो होती हैं बहुत केयरलेस होती हैं और बिल्कुल अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती।
10: बिल्कुल,
11: कुछ ऐसे ही हमारे घर के बुजुर्ग भी होते हैं।
10: ओके,
11: जिन्हें लगता है कि अरे बेटा जा रहा है तो मतलब अच्छे से घी में, रोटी में घी लगा के दिए, उसको अच्छे से सब्जी दी है ना, और ये सब देना मतलब प्रॉपर टिफिन, और फिर जब अपनी बारी आती है तो अरे अभी मन नहीं है, बाद में खाएंगे। और देखिए बढ़ती उम्र में अभी मन नहीं है ये बहुत नॉर्मल होता है, क्योंकि बढ़ती उम्र में वाकई मन नहीं करता खाना खाने का, लेकिन फिर भी खाना जरूर खाना चाहिए।
10: अभी इस पर अभी रोक लगी हुई है, वरना तो क्या ही बता दे, जो 6 किलो है ना 2 दिन में कवर कर लेंगे है ना।
11: बिल्कुल,
10: कोई नहीं, लेकिन हम बात कर रहे थे अपने बड़े बुजुर्गों पे कि खाना उन्हें जरूर खाना चाहिए।
11: बिल्कुल
10: भाई, देखो बढ़ती उम्र के साथ साथ अंशिका, ये हंसी मजाक का टॉपिक नहीं है, सीरियस टॉपिक है कि देखो बढ़ती उम्र के साथ साथ क्या होता है कि भूख भी थोड़ी कम लगने लगती है। उनका जो मतलब पाचन क्रिया है वो भी थोड़ी मतलब वीक होने लगती है, भूख कम लगने लगती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बीमार है, ये एक नेचुरल सी मतलब
11: कंडीशन
10: है, ये एक नेचुरल कंडीशन है कि भूख कम लगना। और कुछ लेकिन ये भी है अंशिका कि कुछ लोग तो भरपेट खाते हैं, चाहे उनकी 60 प्लस हो जाती है वो आराम से भरपेट खाते हैं।
11: बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं इसलिए भी होता है मैम, क्योंकि देखिए जैसे कहते नहीं है कि किसी किसी को हैबिट हो जाती है। और किसी किसी को ये लगता है कि अरे नहीं यार लाओ हम खाते हैं, तो बढ़ती उम्र में कहीं ना कहीं हैबिट का भी होता है। जैसे किसी को ना जैसे हम किसी चीज को नहीं करना है ऐसा कहते हैं तो वो हमारी हैबिट में आ जाता है,
10: हैबिट में आ जाता है।
11: जैसे सुबह कोई एक्सरसाइज नहीं करता है मान लीजिए, तो वो उसकी हैबिट है वो नहीं करेगा।
10: बिल्कुल,
11: लेकिन जो भी करते हैं उनकी हैबिट है वो करते हैं, तो वही ना खाना भी एक तरीके से जब आप बार बार मना करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो आदतें जो है वो अच्छी बनानी चाहिए,
10: आदतें अच्छी बनानी चाहिए और जो आदतें बिगड़ी हुई हैं उनको सुधारो। तो लिसनर्स जितने भी सुन रहे हैं उन्हें अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी इस आदत को भी बदलने का पूरा पूरा श्रेय आपको जाता है, जो आपके घर के बच्चे हैं, बहुएं हैं, बेटे हैं। तो आइए इस आदत को बदलेंगे। और इससे ये बात बताने का सबसे मेन कारण ये था कि अगर आपके घर के बड़े बुजुर्ग यानी सीनियर सिटीजंस को ये आदतें हैं तो आगे चल करके उनके अंदर विटामिन्स की कमी एंड प्रोटीन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उससे क्यों होती है, कैसे होता है, निवारण मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले क्या होता है वो
11: समस्या बताते हैं।
10: समस्या अंशिका बताएं।
11: तो समस्या सबसे पहले तो मैम ने भी विटामिन्स के लिए बताया और बताया कि किस तरह से हो जाता है। तो देखिए सबसे पहला कारण तो हमने आपको आते ही बता दिया जो था खाना नहीं खाना, और दूसरा होता है ठीक से नहीं खाना।
10: अच्छा,
11: ठीक से नहीं खाना इन द सेंस कि ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना खाते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं हम चार रोटी खा लेते हैं, ठीक है अच्छी बात है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, आप खा पाते हैं, आप खा लेते हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि खाना कभी भी बिल्कुल ऐसे देख देख के और बिल्कुल सीरियस होके नहीं खाना चाहिए। जैसे कुछ लोग खाना खाते लगता है उबाऊ तरीके से, बस मिला है तो किसी तरीके से खा रहे हैं।
10: नहीं तो अंशिका वो कहावत नहीं सुनी है, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं।
11: दोनों ही सही है मैम।
10: नहीं दोनों सही नहीं है, आप अर्थ समझे ना, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं कि भाई अगर हमको जीना है तो खाना है मजबूरी में, और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं कि हमको मतलब हम जी रहे हैं खाने के लिए, मतलब अगर हमको कहीं से भी कुछ मिल जाए तो हाँ पेट में डालो। लाइक कौन है आप, पता है
11: मुझे।
10: चलो नेक्स्ट टॉपिक।
11: तो जैसा मैम ने भी आपको बताया तो एक तरीका ये देखिए, जैसे ये अभी मैम ने तो मजाक किया मुझे पता है, लेकिन जैसे खाना कभी भी खुश मन से खाना चाहिए। कहने का सेंस ये है जैसे हम बनाते हैं जब, तो कहा जाता है कि गुस्से में खाना कभी मत बनाइए क्योंकि नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। ठीक उसी तरह मुंह बना के या कुड़कुड़ करते हुए या फिर मन में नेगेटिव एनर्जी रखते हुए कभी खाना भी नहीं चाहिए। और खाना तो कभी बिल्कुल ऐसे जैसे वो कोस कोस के किसी को या खाने को कोसो कि अरे नहीं ये तो अच्छा नहीं है ना, मन नहीं कर बे ये बना दी मेरा तो ये का। तो इस सेंस से जब आप खाते हैं तो वो कभी आपकी बॉडी को नहीं लगेगा। खाना हमेशा खुशी से खाओ, चाहे आधी रोटी खाओ डजंट मैटर, लेकिन आप खुशी से खाइए। मतलब मैं खाना जब भी खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाती हूँ, लेकिन जब भी खाती हूँ तो पॉजिटिव एनर्जी से ही खाती हूँ, कभी नेगेटिव एनर्जी के साथ नहीं खाती हूँ कि अरे यार ये मन नहीं है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ मुझे गुइयां बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर किसी के घर जाती हूँ
10: अरबी
11: हाँ हम लोग में वो बोलते हैं अरबी, तो अगर जैसे कभी मैं जाती हूँ तो मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल, लेकिन अगर कोई मेरे सामने रख देता है मैं किसी का घर गई हूँ तो मैं वो भी आराम से खा लेती हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, उसे तो नहीं मालूम है ना कि मुझे नहीं पसंद है। तो ये होता है कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ खाइए तो वो आपके शरीर को जरूर लगेगा।
10: एग्जैक्टली, एक बोझ बन के नहीं खाना चाहिए कि हाँ भैया लाओ अब खाना तो है, अब पेट तो भरना है, तो फिर वो वही हैबिट हो जाती
11: है। बिल्कुल, और साथ ही साथ में बड़े बुजुर्गों को जब भी आप खाने की थाली दे रहे हैं तो उसके साथ उनको कुछ ऐसी चीज जैसे टीवी चला दीजिए, टीवी नहीं चलाना है तो म्यूजिक लगा दीजिए, गाना कोई अच्छा सा लगाइए जिससे मूड थोड़ा चीयर अप हो। कहने का मतलब ये है कि कई बार जैसे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनको लगता है कि अरे खाना खाना है तो हमें बैठ के खाना है, तो अकेले नहीं खा जाता है। एक उनके अंदर ये हैबिट होती है कि मुझे अकेले नहीं खा जाएगा, मैं अकेले कैसे खाऊं। तो अगर अकेले नहीं खा जाता है तो ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से उनकी बॉडी में धीरे धीरे विटामिन की और बाकी चीज़ों की कमी होनी शुरू हो जाती है।
10: बिल्कुल,
11: कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो जाती है क्योंकि प्रॉपर हमने मील लिया नहीं, और जब प्रॉपर लिया नहीं तो बॉडी में कमी तो होगी ही होगी।
10: बिल्कुल,
11: तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें और जहाँ तक हो सके वहाँ तक उन्हें अच्छी चीज़ें ही दें।
10: बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि अगर आपको ये है कि अगर कोई परहेज उनके साथ चल रही है तो भी उस परहेज के हिसाब से आप उन्हें अच्छी डाइट का एक प्लान बना करके उन्हें आप पूजन करा सकते हैं। अब निवारण क्या है हम बताएंगे, लेकिन अंशिका एक ब्रेक लेंगे, एक सॉन्ग सुना देंगे लिसनर्स को ताकि उन्हें भी बोरियत ना लगे। और वैसे भी लिसनर्स कहते हैं कि आज समता है ना आज अंशिका बहुत बोलती है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे इस बोलपन में एक गाना उन तक पहुँचा दिया जाए ताकि वो फिर से टॉपिक को हमसे आकर के जुड़े और फिर से इस टॉपिक को एंजॉय करें। तो बस हम यू गए यू आए।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के

0: माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
1: पता है सर्कुलर रोड आवास विकास कॉलोनी गोंडा।
0: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
0: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता। और जैसा कि हम आपको दो गाने सुनाने के बाद में फिर से आ गए हैं भाई, सीनियर सिटीजन्स का ये टॉपिक चल रहा था कि उनको हम विटामिन कैल्शियम की कमी को किस तरीके से पूरा करें और कौन सी ऐसी चीज़ें हम उनके आहार में बढ़ाएं जिसके कारण से ये सारी चीज़ें उन्हें फिर से उनकी बॉडी में रिकवर हो सके। ठीक है अंशिका
5: जी मैम।
0: तो सबसे पहले तो दूध और दही, जो रोज़ाना सुबह या रात को एक गिलास गुनगुना दूध दें। दोपहर के खाने में एक कचौरी, फ्रेश दही या छाछ भी आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि दही पचाने में आसान होती है, इसीलिए आप उन्हें रेगुलर दे सकते हैं। एंड एक रागी जो जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, और बुजुर्गों को रागी की रोटी, दलिया या रागी का सूप बना कर दें, ये आसानी से पच भी जाता है और पूर्ण रूप से ये प्रोटीन युक्त आहार होता है और इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। मखाना और तिल, मखाने को हल्के घी में भूनकर स्नैक्स के रूप में आप उन्हें दे सकते हैं। इसके अलावा एक सफ़ेद चम्मच तिल का हल्का भूनकर खाने में या लड्डू में मिलाकर उन्हें दे सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां और टोफू, यानी टोफू जैसे पनीर होता है ना
5: जी,
0: वैसे ही उसका दूसरा रूप होता है टोफू।
5: ओके।
0: पोकली, सहजन के पत्ते, सोयाबीन से बना पनीर यानी कि टोफू, और कैल्शियम से अच्छी शाकाहारी विकल्प आपको मिल सकते हैं। ठीक है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो उन्हें तो कोई बात नहीं, वो तो सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। विटामिन डी, यानी कि आप विटामिन डी पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि केवल कैल्शियम खाने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि शरीर को कैल्शियम सोखने के लिए भी विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है।
5: बिल्कुल,
0: कहा जाता है कि हमारी हड्डियों में विटामिन डी होता है, तो अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में उसकी कमी का एहसास दिखने लगता है। तो इसीलिए विटामिन डी यानी कि पर्याप्त मात्रा में धूप लेना चाहिए, दही और जो भी अभी मैंने बताया आपको, इसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है, तो आप अपने घर के बुजुर्गों के साथ साथ इस चीज़ का सेवन आप खुद भी कर सकते हैं।
5: बिल्कुल, जैसा मैम ने अभी आपको बताया कि कैल्शियम किन किन चीज़ों को खाने से पूरा हो जाता है बॉडी में और आपको ज़रूर खाने चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी को घटा देती हैं।
0: अच्छा, कौन सी?
5: और वो होती हैं दो चीज़ें, और दो चीज़ें जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले आती है चाय और कॉफ़ी।
0: ओके, चाय और कॉफ़ी एंड ज़्यादा नमक। ज़्यादा नमक भी हमारी बॉडी में कैल्शियम को कम कर देता है।
5: बिल्कुल, और रही बात चाय और कॉफ़ी की, तो जैसे मैंने कल भी कहा था कि कुछ लोगों को एडिक्शन होता है कि मिलना ही मिलना चाहिए, तो अगर ऐसा आपको भी है तो दिन में सिर्फ एक या दो कप चाय या कॉफ़ी पीनी चाहिए, लेकिन आप इसे कम कर सकते हैं। इसे कम करने के लिए आपको क्या करना है कि आधा कप, जैसे एक कप चाय को आधा कप पीजिए, आधा कप सुबह आधा कप शाम को, तो ये भी हो जाएगा कि आपका एडिक्शन भी दूर हो जाएगा और धीरे धीरे आपको इसकी आदत जो कम करनी है वो कम भी हो जाएगी।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ एक चीज और बतानी है कि बुजुर्गों के लिए कैल्शियम जो होता है सिंट्रेट यानी कि सप्लीमेंट्स को बेहतर माना जाता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ पेट में एसिड कम बनता है और कैल्शियम सिट्रेट बिना पेट खराब किए आसानी से पच जाता है। तो ये एक टैबलेट्स हैं जो कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के उन्हें दे सकते हैं।
5: बिल्कुल, लेकिन एक बार आप डॉक्टर से, जैसे कि मैम ने भी कहा, जरूर से पूछ लें। और साथ ही साथ में ये सब करने के साथ जो कि हमने अभी आपको बताया, कहीं ना कहीं इन सब के साथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज और होती है। और वो क्या होती है?
0: क्या होती है? बुजुर्गों की देखभाल।
5: देखभाल के साथ थोड़ा सा बाहर जाना, वॉक करना, घूमना, मोस्टली सबसे इम्पोर्टेंट खुश रहना।
0: ओके,
5: ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और देखिए, सुबह अगर आप योग, ऐसे नहीं कहा जाता है कि करें योग रहें
0: निरोग,
5: ये एक है ऐसी बात, क्योंकि जब आप योगा करते हैं, मान लीजिए जैसे बहुत लोग कहते हैं योगा कौन करे, तो बहुत हैवी योगा मत करिए। पीटी करते हैं छोटे बच्चे जो पीटी करते हैं, हम लोग जो करते थे, अगर आधा घंटा सिर्फ आप वो पीटी कर लेना तो आपके लिए बहुत हो जाएगा, क्योंकि वो हल्की स्ट्रेचिंग होती है, बिल्कुल हल्की एक्सरसाइज।
0: हाँ।
5: वो क्यों की जाती है? ताकि आपके बॉडी के जो मसल्स हैं वो ढीले हो जाए। कई बार जब नस चढ़ जाती है या ऐसी कोई प्रॉब्लम नस की हो जाती है, तो डॉक्टर भी कहते हैं कि हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करिएगा, बहुत ज़्यादा आपको अपने ऊपर स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ट्राई किया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इधर कुछ दिनों से मैं रेगुलरली ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि है मुझे भी कुछ प्रॉब्लम है, मसल्स में पेन है। तो डॉक्टर के पास मैं जब गई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप सुबह एक्सरसाइज हल्की वाली करिएगा, इससे धीरे धीरे वो रिकवर हो जाएगा
0: जी।
5: तो अब मेरा रिकवर काफी हद तक हो गया है और जो बचा है वो भी जल्दी हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सुबह उठ जाती हूँ, 6 बजे इस समय मैं उठ रही हूँ, क्योंकि मुझे ये करना होता है, वरना मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। मतलब
0: 6 बजे उठती हूँ
5: जी।
0: और एक्सरसाइज करती हूँ?
5: यस।
0: योगा करती हूँ?
5: Yes.
0: ये तो बहुत बड़ी बात होगी, मैंने इतने दिनों से समझा रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब खुद पे पड़ती है तभी दिमाग सही होता है।
5: तो वो कायदे वाली पड़ गई
0: कायदे
5: कुछ दिन पहले, तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने ये सोचा कि मैं कुछ दिन कर लेती हूँ और जब मेरी हेल्थ प्रॉपर हो जाएगी फिर मैं बीच में थोड़ा गैप करके फिर उसको स्टार्ट कर दूंगी। तो सुबह जब मैं 6 बजे उठी तो आज का तो मौसम बहुत ही अच्छा था,
0: बहुत अच्छा मौसम था, सुबह बारिश रात में पड़ी है ना, इस वजह से फिर।
5: लेकिन जैसे रेगुलरली अगर आप उठ रहे हैं तो सुबह जब आप बाहर निकलेंगे ना अपने बैल्कनी में, तो आप देखेंगे बहुत अच्छी हवा लगती है, मतलब फील होती है एक फ्रेशनेस वाली।
0: हाँ।
5: तो वो बहुत जरूरी है। तो मैं तो पूरे घर का चक्कर लगाती हूँ, थोड़ा घूमती हूँ, बाहर निकलती हूँ और फिर उसके बाद धीरे धीरे एक्सरसाइज करती हूँ। लेकिन एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद ना नहाना चाहिए और ना ही मतलब कुछ मत कीजिए नहाने की, जैसे आपने एक्सरसाइज की 10-15-20 मिनट आराम से बैठ जाइए,
0: क्योंकि उसका कारण पता है क्या होता है?
5: क्या होता है
0: उसका कारण? ये होता है कि हमारी बॉडी, जब हम योग करते हैं ना, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी हीट हो जाती है। और अगर बॉडी हीट हो जाती है और उसके बाद आप जाकर के, कुछ लोगों को मैंने देखा है इधर योगा किया और 2 मिनट के अंदर वो अपना टॉवल उठाएंगे और जाकर के नहाने लगेंगे, तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी हीटेड है उस समय, और उस समय आप तुरंत नहाएंगे तो ये आपको फायदे की जगह पर आपको बहुत बेहतर वाला नुकसान भी कर सकता है।
5: राइट। और इसलिए अपनी हैबिट्स जो है उन्हें थोड़ा सा बदलें, थोड़ा सा सुबह उठने की हैबिट डालें, क्योंकि ऐसे ही नहीं कहते हैं कि सुबह उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। और आपकी सेहत का ध्यान रखने का जिम्मा थोड़ा सा हमारा भी है, इसलिए हम सुबह रोज लेकर के आते हैं योगशाला। सुनिए आरजे समता की प्यारी प्यारी आवाज के साथ और योग भी करिए, क्योंकि मैम तो ऐसे बताती है ना, मतलब
0: मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे योग के लिए और योगशाला जो हमारा मॉर्निंग में आता है, वो काफ़ी लोगों के मैसेजेस मेरे पास आए थे और एक दो लिसनर्स हमारे पास आए थे अंशिका
5: जी,
0: और उन्होंने मुझे ये कहा कि आज इस हफ्ते, मैं अपनी खुद के लिए नहीं बोल रही हूँ, मतलब मैं ये आपको एक उदाहरण बता दूँ ताकि आप लोग भी सुनो, कि जब आप किसी किताब में पढ़ करके, किसी कॉपी में पढ़ करके, या आजकल मोबाइल में आप रीड करके आप योगा करते हैं तो वो इजिली समझ में आता है, पिक्चर देख के समझ में आता है, लेकिन अगर कोई सुन के आपको इतना इजीली समझा रहा है, उस पे अगर आप योगा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने कई स्टेप्स को बिल्कुल आराम से बताती हूँ ताकि आप सुन करके उसे आराम से करें और उसका अच्छा वाला एक बेनिफिट आप उसे बना सकें।
5: बिल्कुल, तो वही सुने करें और अपने आप को फिट रखें, क्योंकि अगर हम फिट रहते हैं तो फिट वाले ख्याल भी आते हैं।
0: Exactly.
5: और फिर और अनफिट नहीं होते।
0: हाँ,
5: फिजिकली फिट रहने से मेंटली अनफिट नहीं होते। मैम कुछ बोल रही थी?
0: नहीं, मैं ये बोल रही थी कि अगर जैसे कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ठीक है, बट आजकल का जो क्या हो गया है कि स्वस्थ मस्तिष्क जो होता है वो स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है, जस्ट इसका अपोजिट हो गया है। तो अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ को और अच्छा सा इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो साथ ही साथ में आप मेडिटेशन को भी ले सकते हैं, और साथ में घर के जितने भी बच्चे बूढ़े और जवान सभी मिलकर के अगर आप ये काम करेंगे तो आई थिंक सो सभी की हेल्थ बहुत अच्छे से बूस्ट होगी। चलिए हम यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे पौधों पे बात करने के लिए, क्योंकि मॉनसून आ गया है और मॉनसून में पौधों की जो देखभाल होती है वो बड़ी ही अच्छी से हमें करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें आप इस मौसम में लगा सकते हैं और जल्दी ही उसका फल आपको मिल सकता है, फल मतलब खाने वाला नहीं, फूल वाला फल, ठीक है। तो चलिए फटाफट एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद बस यू गए यू आए, स्टे ट्यून्ड।

0: जाने का टाइम हो गया है और अभी मुझे बताना है बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन जो कि है पौधों के लिए, क्यों अंशिका?
1: बिल्कुल,
0: तो चलिए शुरू करें।
1: जी
0: जी,
1: तो बताते हैं पौधों के लिए। पौधे बहुत प्यारे होते हैं और घर में प्यारी सी खुशबू भी फैलाते हैं, लेकिन वो तब होगा जब आप पौधे लगाएंगे। तो आप बताते हैं कि मैम कब से पूछ रही थी और आपको बताना चाह रही थी कि इन मॉनसून में कौन से ऐसे पौधे हैं जो आसानी से लग जाते हैं।
0: हाँ, मैं पता है क्योंकि ना मैं बहुत दिन से देख रही थी अपने जो मैं करती हूँ गार्डनिंग, कल मैंने चिटाई बटाई कटाई करी क्योंकि बहुत ज्यादा जो फालतू की जो नहीं वो पत्तियां अत्तियां निकल आती हैं, तो कल मैंने चटाई भी करी और मेरा मन हो रहा था कि कुछ ऐसे प्लांट्स मिल जाए मुझे ताकि वो जल्दी से लगे और जल्दी से वो ग्रो करे, है ना। तो मैं जानना चाहूंगी कि कौन से ऐसे पौधे हैं।
1: तो सबसे पहले हम आपको उस पौधे का नाम बताते हैं जिसे कहते हैं सिंबल ऑफ लव।
0: ओके, वाव, क्या होता है वो?
1: गुलाब।
0: गुलाब इस मौसम में जल्दी उग जाते हैं?
1: यस।
0: ओके,
1: अगर आप गुलाब लगाना चाहते हैं तो मॉनसून का टाइम है, करेक्ट से भी ज्यादा करेक्ट। फटाफट से आपको जो उसकी कटिंग होती है वो ले आना है और लगाना है। सबसे बेस्ट है आप थोड़ा सा भी अगर उसकी केयर करेंगे ना, जैसे आप पानी देंगे और निराई गुड़ाई ये सब करेंगे, तो वो फटाक से लग जाएगा और बहुत जल्दी बढ़ेगा भी मॉनसून।
0: ओके, ओके।
1: तो लगाएं, क्योंकि प्यारे प्यारे गुलाब जब आसपास खिलते हैं ना तो मन हमेशा जो है क्या कहते हैं वो
0: मन गार्डन गार्डन हो जाता है।
1: हाँ, गार्डन गार्डन हो जाता है और न फालतू के कोई भी आपको थॉट्स नहीं आते, फालतू लोगों के भी थॉट्स नहीं आते।
0: और पता है ये भी कहा जाता है कि जब हम गार्डन में बैठते हैं ना और एक कहते हैं ना कि एक नेचुरल वाली फीलिंग जब हम फील करते हैं ना, तो वाकई में ये चीजें बहुत अच्छी होती है।
1: बिल्कुल।
0: एंड सेकेंड कौन सा पौधा होता है?
1: और सेकेंड होता है गुड़हल।
0: गुड़हल की तो मैंने भी सुना है कि केवल एक कलम जो होती है ना उसकी, हाँ। जो मतलब एक डंठल होती है उसको भी अगर अच्छे से हम लोग छील करके अगर उसमें लगा देना इस समय तो वो जल्दी से लग जाती है।
1: और तीसरा आता है सदाबहार।
0: सदाबहार, ओके।
1: सदाबहार के फूल चाहे व्हाइट वाले हों या पिंक वाले हों, दोनों ही आप लगाइए। जैसे सदाबहार नाम से ही समझ में आता है, हाँ। कि हर मौसम में लग जाता है,
0: हाँ।
1: पर बारिश में अगर आपने सदाबहार लगा दिया तो आप सबसे पहला तो इसका बेनिफिट ये होता है कि ये पूरा आपका गार्डन और अगर अपने घर में ही गमले में लगाया हुआ है पूरा घर महकता है सदाबहार।
0: अच्छा, तो
1: और दूसरा ये होता है कि बहुत अच्छे से लग जाती है
0: और जल्दी से मतलब फूल भी इसमें आने लगते हैं, आई थिंक, है ना?
1: जी मैम।
0: हाँ, सदाबहार। और कोई ऐसा पौधा है जो कि आपको लग रहा है कि हाँ उसको लगाएं तो जल्दी से आसानी से मिल सकता है, चाहे वो सब्जियों में हो चाहे वो किसी और में हो?
1: सब्जियों में जिनके घर भी हरी मिर्च ज्यादा खाई जाती है उनके लिए है कि हरी मिर्च बरसात में बहुत आसानी से लग जाती है। अगर आप हरी मिर्च का पौधा लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाएगी।
0: तो अब मैं जानना चाहूंगी कि इस मॉनसून में कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जो पौधे को लगाते समय हम सभी को वो अपनाना चाहिए।
1: बिल्कुल। तो सबसे पहले आते हैं कि जब भी बहुत तेज या लगातार बारिश हो रही हो और तब तुरंत नया पौधा न लगाएं।
0: अच्छा।
1: हल्की बारिश जब रिमझिम वाली हो रही हो तभी पौधा लगाना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि ज्यादा तेज बारिश में जैसे आपने ताजा पौधा लगा दिया तो वो उतना ग्रो नहीं कर पाता है। और दूसरी चीज आती है कि मिट्टी सबसे मेन होती है। मिट्टी में जो रेत नहीं होनी चाहिए, मतलब बालू वाली जो रेत होती है वो नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी मतलब मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। जब मिट्टी भुरभुरी होती है तो बारिश का पानी गमले में नहीं रुकता है।
0: अच्छा।
1: और इससे आपके पौधे
0: सड़ने लगते हैं और ज्यादा पानी भी नहीं डालना चाहिए।
1: हाँ।
0: मतलब मैंने कई घरों में देखा है कि पाइप लगा देंगे तो लगा, हाँ। देंगे मतलब वो पूरा पौधा और मतलब पूरा उसका पॉट भर जाएगा पानी। जैसे आप अपने आप को ही देखो, ज्यादा पानी पी लेंगे तो क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा। तो ज्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं, जैसे ये है कि हाँ मतलब जितनी उसको नीड हो, पौधे को जितनी नीड हो। कहा जाता है कि अगर आप ज्यादा पानी मतलब पौधे में डालेंगे तो वो नीचे उसकी जड़ वो सड़ने लगती है, खराब होने लगती है।
1: बिल्कुल। और एक लास्ट है, बस लास्ट ये है कि जब भी आप पौधे की टहनी को लगाएं तो उसे मिट्टी में 2-3 इंच अंदर लगाना चाहिए, इससे आपके पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं।
0: तो चलिए भाई, आज के लिए इतनी जानकारी काफी थी और अब हम दोनों को दें इजाजत। हम मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय
1: बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेख बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 88 40 098 123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब?
2: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

बारिश भी कुछ कुछ तुमसी है। हाँ तुमसी, तुम्ही से कह रही हूँ। ये बारिश भी कुछ कुछ तुमसी है। एक वो है जो भीगने को तैयार ही नहीं, मगर मेरी आंखों से ये सावन आज भी हार जाता है। बारिश के हर कतरे से आवाज़ तुम्हारी आती है। मोहब्बत की बारिश में भीगने का अलग ही मज़ा है। हर बूंद में लगता है जैसे सिर्फ तेरा ही प्यार सजा है। ये बारिश कुछ कुछ तुमसी है। हाँ ये बारिश कुछ कुछ तुमसी ही है। जो बरसती तो बहुत है, लेकिन सुकून सिर्फ मेरे दिल को ही देती है। बारिश की हर एक बूंद जैसे तेरा नाम पुकारे। तरसती है आंखें मेरी जब तुम नजरों से दूर हो जाओ मेरे प्यारे। मौसम में ठंडक और हवाओं में नमी है, सिर्फ तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी, हाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बाहों की कमी है। बरसात की इन ठंडी हवाओं में तुम याद आते हो, इन भीगी हुई राहों में सिर्फ और सिर्फ तुम और तुम ही याद आते हो। जी हाँ दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। जी हाँ, शो का वक्त हो गया है। बाय स्टूडियो क्लॉक 3:06। आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और आज डिमांड्स में मैं चाहूँगी आप बौछार लगा दें। हाँ किसकी? बरसात के नगमों की। बाकी आपकी पसंद, जी हाँ आपकी पसंद हमारी सर आँखों पर। और हाँ, कॉल इन का नंबर वही है 6393316429। उस सभी डिमांड्स को ले जाएंगी जो डिमांड हम तक आएंगी, और कल जिनकी डिमांड रह गई थी उनको मैं प्रायोरिटी पे रखूंगी। मतलब आज एनी हाउ उनकी डिमांड हम कंप्लीट करने वाले हैं। फिलहाल बढ़ेंगे आज के सबसे पहले सॉन्ग की ओर, जो कि मेरा पसंदीदा सॉन्ग है, ऑल टाइम माई मोस्ट फेवरेट बारिश वाला सॉन्ग। और जब किसी खास को याद करने की बारी आती है तो भाई जितनी भी बूंदें बरसती हैं उन पे बस वही देखते हैं। कारण क्या है? क्योंकि बारिश होती ही कैसी है? जैसी होती है, आइए सुनते हैं मिल के हम और आप। कैसी होती है? टिप टिप करके। तो जब टिप टिप करके बरसा पानी तो फिर क्या हुआ? सुनते हैं इस गाने के माध्यम से। मैं आपकी होस्ट हूं आरजे आकांक्षा। आपने ट्यून कर रखा है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। शो है आपका पसंदीदा वाला फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा। एंजॉय द ट्रैक।

क्या बात भाई, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। व्हाट अ सॉन्ग। थैंक यू सो मच आप लोग के फीडबैक के लिए। लगातार आप लोगों ने एंजॉय किया इस सॉन्ग को, जो कि आपकी आरजी आकांक्षा का मोस्टेस्ट फेवरेट सॉन्ग है भाई, बारिश वाला। अभी बढ़ते हैं उस डिमांड की ओर जो भाई बारिश का ही डिमांड लेके आया है। और ये भाई आज फिर से एक कॉन्सिडेंट हुआ कि एक लोगों ने, दो लोगों ने सेम डिमांड की है। और वो डिमांड करने वाले हमारे सऊदी अरेबिया के प्यारे लिसनर यानी कि मुस्तफ़ा जी, और उसके अलावा हमारे प्यारे अमित कुमार जी, जो कि मे बी हमें राधा कुंड से सुनते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और भाई बढ़ते हैं 90s हिट्स में से एक और प्यारे सनगमे की ओर। और ये गाना आपने कई दफ़ा भाई रील में भी सुना होगा, एंजॉय किया होगा। तो फिर देर किस बात की, बढ़ते हैं इस नगमे की ओर, जो कि डिमांड है हमारे मुस्तफ़ा जी की और अमित जी की।

हाँ जी दोस्तों, तो ये डिमांड हमारे दो प्यारे प्यारे लिसनर्स की है, और अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं तो कॉल मिला सकते हैं भाई। बरसात की झड़ी लगानी है, बारिश गम के बरसाना, जम के नहीं, गम के, गमका के माने कि कड़का के, बिजली उजली कड़क उड़क जाए ऐसे वाली। हाँ, और तो फिर कॉल मिला लीजिए 6393316429 और अपनी डिमांड को ट्यून करवाइए। सुखी राम जी, आज हम आपसे एक बारिश वाला सॉन्ग चाहते हैं, प्लीज सेंड करिए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, जो कि आई हुई है हमारे पास में सुनील कुशवाहा जी की, और ये हमें सुनते हैं एमपी से। चलिए भाई, हमारी चीची जी पे फिल्माया गया गाना, उसके बाद हमारे पंडित जी की बारी होगी। देवी प्रसाद जी ने सैड सॉन्ग भेजा, मैं कतई नहीं बजाऊंगी, आई एम सो सॉरी। अब नहीं खोना, क्या बात, हमका भी नहीं खोना भाई।

क्या बात है भाई, बहुत प्यारी प्यारी टैगलाइंस भी आ गई है, हमको मिल गई है। नीना जी का कहना है, नहीं जी नेहा जी का कहना, मैं मंगू जी आई हूँ बड़े दिनों बाद, लग रहा है फुर्सत से टाइम निकाल के आई हैं। और लिखती हैं आकांक्षा जी, आपको नहीं खोना, ओके। और तरन्नुम आरजू जी हैं जो कि जुड़वा बहने हैं और एक ही फ्रेम में सेट हो गई हैं, लिखती हैं मेला मत जाना क्योंकि मेले में अक्सर सब कुछ खो जाता है। ओहो, और पंडित जी की तो बात ही निराली, कहते हैं ओह मेरी सोना तुम पीतल की होना और ऐसे ही रहना। ओहो क्या बात है, क्योंकि सबकी नज़र सोने पर होती है, पीतल पर केवल और केवल मेरी नज़र रहेगी। सही है, सही है, बहुत सही है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो किसी और की नहीं, हमारे पंडित जी की डिमांड है भाई। गाना बहुत ही प्यारा है, क्योंकि फिर से एक बार हम एंजॉय करेंगे अपने गोविंदा जी के सॉन्ग को। भाई चैट बॉक्स के गोविंदा जी ने आज गोविंदा जी की डिमांड कर दी, मजा आ गया। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वाली डिमांड।

भाई वो रहना फिर आएगी तो जरूर पूछेंगे कि जादू कैसा चल रहा था। मजा मजा मजा आ गया, ऑसम सॉन्ग। और इसके लिए फीडबैक भी मिले हैं आप सभी दोस्तों से। प्रमुख जी ने तो भैया अपना दिल ही निकाल के रख दिया, बड़ा गजब गाना लगा इनको। और शिवाजी की भी हम तक आ गई है डिमांड, लेकिन अभी हम चलते हैं उस गाने की ओर जो कि हम चंगू मंगू जी की जोड़ी को करेंगे डेडिकेट। आई है डिमांड हमारे पास में देवी प्रसाद जी की ओर से। हमने कहा भैया सैड सॉन्ग है, अपन कतई प्ले नहीं करने वाला, और इनके दिमाग का खुल गया ताला, इन्होंने फोन मिला डाला। और सुनिए फिर इनकी फरमाइश का ये गाना, एंजॉय करते हैं। चंगू मंगू जी आपके लिए स्पेशली।

भाई छुप छुप के मिलने का बड़ा फायदा होता है, दरोगा साहब सामने ही होते हैं और कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, ये अच्छी बात होती है। उम्मीद है नेहा जी आपको वो वार्तालाप याद आई होगी जो मैंने आपसे की थी, और अभी फिर से बढ़ेंगे इसी डिमांड की ओर और फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ में। और नेक्स्ट डिमांड तो भाई आ जाए हुए हमें लग रहा है हमारे सुरेंद्र यादव जी की बहन जी हैं, मतलब सगी बहन है, कौन सी बहन मुझे नहीं पता है, हो सकता है मुंह बोली हूँ, तरन्नुम और आरजू जी जो कि जुड़वा बहनें हैं उनकी ओर से उनका सिग्नेचर सॉन्ग आया हुआ, मतलब तरन्नुम और आरजू जी की ओर से सुरेंद्र यादव जी का सिग्नेचर सॉन्ग। चले कोई बात नहीं आपको सुनाते हैं, लेकिन इस गाने के उस पार एंजॉय करते रहिए 3 से 4 के सफर में आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम में आने के फोन फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा को।

दरोगा साहब सामने बैठे रहते लेकिन मजा बड़ा आता है भाई गॉड। हाँ हाँ हमको सब दिख रहा है, चैट बॉक्स की कोई हरकत हमारे से अनभिज्ञ नहीं है, बड़े मजे लिए जा रहे हैं, अच्छी बात है। वैसे भी बरसात में मजे ले लिया ही जाना चाहिए। अभी बढ़ते हैं उस सॉन्ग की ओर जो कि हमारे सुनील यादव जी का सिग्नेचर सॉन्ग है, और उनकी बहना को यानी कि तरन्नुम और आरजू जैसी जुड़वा बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया, एक ही फ्रेम में मैंने आज तीनों को निपटा दिया। वाह, पहले बधाई मैं खुद को दे लेती हूँ और एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, और फिर आएंगे नेक्स्ट डिमांड लेकर अपने सुखी राम जी की और उसके बाद में नीना जी की।

0: पतली कमर।
1: एक तो बेचारी पतली ऊपर से पतली कमर, मतलब लचक तो जानी ही है, लेकिन मुझे एक बात याद आया कि भाई इस गाने के बाद सुरेंद्र जी का गाना है, तो सुरेंद्र यादव जी अपनी बारी के लिए तैयार रहिएगा। फिर होंगे हमारे सुखी राम जी और नीना जी, देन होंगे हमारी सभी हाजी। भाई सावन आया है, मौसम छाया है, बादल छाए हैं और गाने प्यारे प्यारे हैं, एंजॉय करते रहिए।

भाई राजा बन के अगर कोई बारिश में आ रहा है तो कैसे चलेगा, छप छप छप छप छप, मुझे ये याद आ रहा है। हाँ, और आसिफ खान जी जो मैं मुंबई से सुने वो कह भी रहे हैं भैया कि चप्पल उतार के बारिश में चलो ना, ये तो फिसल जावो तनी संभल के। हाँ जी, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि हमारे पास में आई हुई है हमारे सुरेंद्र यादव जी की ही गौरा चौकी से। और ये प्यारी सी डिमांड थी हमारे तरन्नुम और आरजू जी की। एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को।

और भाई हमारे कुमार साहब आ गए एमपी रीवा से, और इनका कहना भैया पूरा एमपी तो का मन लगाए के सुनत है तनी ध्यान से। हाँ हाँ पूरा ध्यान है हमें। और इन्हीं का एक सवाल है, जो छम्मक छल्लू होती है वो धीरे धीरे ही क्यों चलती है? ओके इनको अच्छा लगता है क्या? तो भाई सोचिए, जब पत्ता जो हल्का फुल्का होता है हवा चलते ही वो डोल जाता है, अगर जो दुबली पतली छम्मक छल्लू होती है वो धीरे धीरे नहीं चलेंगी तो लड़खड़ा के गिर जाएंगी, वो बोलते ना हमारे अवधि में भदरा के लुढ़क जाएंगी। एंजॉय द ट्रैक।

बहुत ही खूबसूरत सी डिमांड थी, उमदा उमदा उमदा मजा आ गया भाई मेरे पसंदीदा सॉन्ग्स में से। ऐसे मुझे नहीं समझ में से पसंद क्या नहीं है, और हमारे प्यारे दोस्त हमसे यही कहते हैं भाई नहीं ये बताओ तो नहीं तो पसंद काना ही है, तो ऐसा तो दुनिया में कोई चीज़ ना है जो हमें पसंद ना हुआ है। यहाँ तक कि मेरा फेवरेट करेला है, सोच सकते हैं आप लोग।

नागेश्वर जी की है। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, फिर आते हैं अपने नीना जी के सॉन्ग के साथ में, और उसके बाद नेक्स्ट सॉन्ग होगा हमारी सबीहा जी का। अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहे, एंजॉय करते रहे रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पे, आपका अपना पसंदीदा फोनी फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा।

0: पहुंच गया
1: आधे घंटे में आ रहे हैं
0: पक्का
2: पक्का
3: भाई हमारे साथ जुड़े हुए आरजे अमन जी और ये लिखते हैं भाई करेला तो मुझे भी पसंद है मुझे लग रहा है जितने भी मीठी आवाज के मालिक होते हो करेला खाते हैं तो आप लोग भी खाइए अपनी आवाज को मीठा बनाइए जनहित में सूचना जारी एंजॉय करते रहिए और हाँ घर की वो बहुएं जो बहुत कर्कश आवाज में बोलती हैं उनको तो जरूर करेला खिलाना चाहिए। वैसे मैं बता दूं मेरे घर में मेरी भौजाई जब आई थी मतलब मेरी भाभी आई थी भौजाई अवधि में बोलते हैं तो जब वो आई थी तो वो करेला बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। फिर जब मैंने उनको अपना तरीका बताया कि कैसे करेले को बनाते हैं पकाते हैं भाई साहब अगर मैं सब्जी मंडी में हूं और करेला मेरे को दिख गया तो मैं बिना लिए घर पहुंचती नहीं क्योंकि उनकी स्पेशल डिमांड होती है क्या करेला।

भाई हमारा दिल तो कभी नहीं टूटा है, किसी ने बहुत संभाल के रखा हुआ है। और कल ही हमसे कोई कह रहा था कि भाई ऐसा दिल किसी को ऐसे देते नहीं, दिल फेक आशिक नहीं बनते। हमने कहा हमारा दिल जिसके पास है बहुत ही हिफाजत से उनके पास है। और हाँ, किसी ने कुमार साहब आपको कुछ लिखा है कि कांड याद आ जाता है, तो ये बात सच है, बहुत ही जबरदस्त आता है। और अभी चलते हैं नीना जी की ओर। भाई हमने इनकी सास से कुछ कांड कर दिया था, उनको दरोगा साहब बोल दिया था, तब से वो इतना इतराती हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं। और सच में वो दरोगा साहब लगती भी हैं। ऐसे बैठी थी ठाट से हमारे सामने कि हम का बताएं भैया, हम डरा गए थे। फिलहाल एंजॉय करते हैं इनकी डिमांड पर ये प्यारा सा सॉन्ग। 3 से 4 के सफर में आप शो सुन रहे हैं फोनी फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गुंडा। और इस गाने में वो जो BGM साउंड इफेक्ट है ना, टुपक टुपक, बड़ा पसंद है हमको।

कुमार साहब खाली वही नहीं करते हैं, शुरुआत हम ही करते हैं, बस अंत वो कर देते हैं। ऐसा होता है, मतलब आप समझदार है, बाकी संभाल लेते हैं, बाकी तो हम बहुकांडी हैं, बहुकांडी। मतलब जब हम किसी की बहू बनेंगे तो हम कांडी करते फिरेंगे क्या? ऐसा भी मैं क्या क्या बोल जाती। फिलहाल एंजॉय करते इस ट्रैक को।

भाई हमारे हीरो हीरोइन फैसला ही नहीं ले पा रहे हो, तब तक शिक्षक महोदय ने फैसला ले लिया है। कहते हैं कुमार साहब, जो हम एमपी रीवा से सुनते हैं, अरे खोलो तो छतरी हम देख ले, आहा उहू ओम भूर भुवः स्वाहा। क्या बात है, क्या राइमिंग की है, वाह मजा आ गया। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारी सभी हाजी की, बहुत ही प्यारी सी सूदी सी फीलिंग वाली रिमझिम बारिश वाली। एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को।

जी हाँ, और एक और बहुत प्यारी सी बात कही गई है कि कसम से हम इतना जिंदा आदमी हैं कि जिंदा भी शर्मिंदा हो जाता है। वाकई आपके साथ जो रहे, आपके जो संगत में रहे, उसको दर्द का कभी एहसास ही नहीं होगा और वो इसी बात से परेशान हो जाएगा, भैया ये कितना खुश रखता है हमको, हमारी जिंदगी तो इसी से झंड हो गई है कसम से। बाय गॉड, एंजॉय करते हैं सभी जी की इस डिमांड को, उसके बाद आते हैं बादल गोयल जी के सॉन्ग के साथ और देन हम आएंगे चैट बॉक्स की ओर आपके पैगाम के साथ।

हाँ जी, और रिमझिम ये सावन फिर बरसाते ले आया है और कुछ यादों को भी अपने साथ में, जी हाँ, समेट के ले आया है और हमारी आंखों में, हमारी सांसों में, हमारे जहन में उनको दोहराया है। क्या बात है, मजा आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। डिमांड है हमारे बादल गोयल जी की, जो हमें सुनते हैं सुभागपुर गुंडा से। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को और देन आते हैं आप सभी के मैसेजेस यानी पगामात की ओर। दिल में छुपा लूंगा आहा।

क्या बात है भाई, किशोर दा की आवाज और एकदम जिंदा दिली पे बात ही हो रही थी कि जिंदा दिल, हमारे किशोर जी की आवाज हमारे कानों में पड़ गई। बहुत बहुत शुक्रिया बादल गोयल जी ये गाना हम तक पहुंचाने के लिए। अभी बढ़ते हैं आप सभी के पैगामात की ओर, और पैगामात में हमारे पास में सबसे पहला मैसेज जो हमको दिख रहा है चैट बॉक्स में, वो हमारे मुस्तफा जी का। जी हाँ, सऊदी अरेबिया से नीला वाला लिंक। गुड आफ्टरनून मैन, गुड आफ्टरनून टू यू। सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से आपका भी स्वागत है। प्रमोद कुमार जी लुधियाना से गुड आफ्टरनून। रेडियो सखी प्यारी आकांक्षा दे दिया राम राम राम राम तो के राम राम। तरन्नुम आरजू जी हैं, गुड आफ्टरनून मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू डियर। नीना जी हैं, ओके नीना जी के बाद में मुझे भी कभी कभार भूत प्रेत का छाया का भ्रम हो जाता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, अच्छा करियर भी खराब है, तो प्लीज़ आप, आपके लिए स्पेशली ऐड है प्रमुख जी। हाँ जी लुधियाना वाले। नीना जी लिखती हैं, आकांक्षा जी नमस्कार, एक डायलॉग याद आया सुनील शेट्टी के कि आप की कोई तारीफ करे मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई आपकी अच्छा बुराई का, इन्होंने बिराई लिख दिया, बहुत ही बढ़िया वाला आप मिस टाइप करती हैं कसम से, बुराई का बिराई हो गया है आपकी कोई बिराई करे मतलब बुराई करे ये हम होने ही नहीं देंगे। ओह क्या बात है, इतना मोहब्बत कहाँ लेके जाओ, हम ही बताए दो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले मैसेज की ओर। नेहा जी हैं बहराइच से, और नेहा जी बहराइच से क्या लिखती हैं जरा देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं और आपको भी सुनाते हैं। और ये लिखती हैं, नमस्कार हमार गुलाब जामुन दीदी आए हैं, मुंह मीट कराए दियो, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले मैसेज की ओर। उस्मान खान जी हैं, लिखते हैं बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग, कौन सा यही जो बीजम बज रहा है भाई, टिप टिप बरसा पानी, थैंक यू सो मच, मेरी पसंद को अच्छा बताने के लिए मतलब फ्री में उतारने के लिए। प्रमोद कुमार जी तो भैया गजबे कर देते हैं, आहा हा मतलब ये कौन सा रिदम है, आहा वाह। इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज में हमारे बीच में हैं हमारे प्यारे प्रबल कुमार जी, यानी कि हमारे प्रबल मिश्रा जी, यानी कि हमारे पंडित जी। हाँ लिखते हैं, गुड आफ्टरनून श्री राधे राधे मैम जी, राधे राधे आपको भी, राधे रानी की कृपा पे बरसती रहे, हाँ ढेर सारा प्यार आपको पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं, हमारे रतलाम की गलियों से प्रकट हुए हैं नागेश्वर धाकड़ जी। सुखी राम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमेशा सुखी रहें यही कामना है। लिखते हैं, झूठ चाहे कितना भी खूबसूरत हो, झूठ है या झूठ है चलिए पढ़ के देखते हैं, झूठ चाहे जितना भी खूबसूरत हो एक दिन बिखर ही जाता है। ओहो झूठ ही है, झूठ नहीं है। गुड आफ्टरनून टू यू। और इसके बाद में आसिफ खान जी मुंबई से गुड आफ्टरनून आपको भी। और नेक्स्ट मैसेज की अगर बात करें तो आप सभी के बीच में बड़ा सा, बहुत ही बड़ा सा मैसेज आया भाई, चलो आज पढ़ ही लेते हैं, मन कर रहा है पढ़ दे। प्रमोद कुमार जी लिखते हैं बड़ा वाला मैसेज, बड़का मैसेज लिखा इन्होंने, नेहा नीना दोनों बहनें, शरारत की सरकार, रेडियो सुनते सुनते करती हंसी की बौछार, आरजे आकांक्षा का शो जैसे हो जाए शुरू, इनकी मस्ती का मीटर सीधा 100 के पार, हाँ गुरु क्या बात है, कभी कहें मैम आज गाना बेसुरा सुनाइए, ओहो कभी बोले पहले हमारी फरमाइश बजाइए, आकांक्षा हंसकर कहती अरे तुम दोनों कमाल, तुम्हारी शैतानी से ही रंगीन होता हर सवाल, जहां नेहा नीना पहुंच जाए हंसी वहीं जम जाए, रेडियो भी बोले इन दोनों से बचना मुश्किल हो जाए, ही हा हा हा हा, यही सबको सिखाए, क्या बात है मजा आ गया भाई। नेहा जी नीना जी फीडबैक इन तक पहुंचा दीजिएगा, आपके लिए आज इन्होंने कविता लिखी है, कविता लेखक थे हमारे प्रमोद कुमार जी फ्रॉम लुधियाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मैसेज की ओर, जिसमें है सचिन शुक्ला जी जो मैं दिल्ली से सुनते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत बड़ा वाला। अगर किसी को चाहो तो छुप कर रखो, ओके छुपा कर रखो, जमाना खुशियों से ज्यादा रिश्तों से जलता है, बेशक 100% नहीं 200% सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मैसेज की ओर, और आप सभी के फीडबैक्स हैं हमारे पास में। शिवा पटेल जी ने भाई अपनी डिमांड को हम तक पहुंचा दिया चैट बॉक्स के माध्यम से। इट्स कुमार साहब जी आ गए हैं अपनी एंट्री के साथ में, ओहो करते हुए, ओहो डिंग डिंग डिंग डिंग, ये ओहो देख के मुझे वो याद आ गया। और नेक्स्ट पे हैं राम भवन जी, बमनान गोंडा से बड़े दिनों बाद भाई इनके दर्शन हो रहे हैं, गुड आफ्टरनून टू यू, और 2 कप कॉफी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे मौसम में कॉफी चाय आहा मजा आ जाए, वाह वाह वेरी नाइस सॉन्ग। उस्मान खान जी बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक के लिए, और आप सभी के फीडबैक्स भी लगातार मिलते गए हैं, और एक एक मैसेज मैं पढ़ नहीं पाऊंगी इसलिए मैं फटाफट से आगे बढ़ती हूँ और नेक्स्ट डिमांड की ओर आगे बढ़ती हूँ। उससे पहले देख लेती हूँ कहीं किसी का मैसेज तो नहीं छूटा भाई, किसकी हाजिरी छूट तो नहीं रही है, तो अपन से तो ऐसा हुआ नहीं आज तक, कभी कभार हो जाता है जब लेट लतीफ होता है तब।
फिलहाल मैंने सभी के मैसेजेस ले लिए हैं और हमारे बीच में हैं हमारे कृष्ण कुमार मिश्र जी जो कि हैं पत्रकार और इनको भी एक प्यारा सा गाना सुनना है। ओके चलिए फिर देखते हैं, वक्त रहा अगर मेरे पास तो आपकी डिमांड भी ज़रूर कंप्लीट की जाएगी। और इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज में हम देख रहे हैं आप ही लोग की हार्ट से इमोजीज और फीडबैक्स। चलिए फरहीन खान जी भी आ गई हैं, गुड आफ्टरनून मैम। ओके सॉरी किस लिए भाई, सतरंगी सदाबहार और क्या बोलूँ मैं, जो इंद्रधनुष आप लेके आई हैं साथ में, तो फिर सॉरी किस बात की, आप कभी सॉरी मत बोली, कभी किसी से सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, जो करता है इंसान अपने मन से करता है, अपनी जानकारी में करता है और उसको मालूम होता है कि मैं सही किया या गलत किया है। देखिए एक ही टाइम पे एक ही बात दो लोगों के लिए सही भी होती है गलत भी होती है, तो फिर सही गलत जैसा कुछ होता ही नहीं, फिर सॉरी किस बात का, कभी अपने किए पे ग्लानी नहीं करना चाहिए और करने से पहले हजार दफा सोचिए ताकि गलती आपकी ना रहे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर और ये डिमांड है हमारे पास में निशा जी की। भाई इनकी भी डिमांड कल रह गई थी और आज हमने वादा किया है जिन जिनकी डिमांड रह गई थी उनकी कंप्लीट होगी। भाई बारी आ गई आपकी, अपने गाने को एंजॉय करिए। बहुत प्यारी सी डिमांड 90s से।

जी जब मिलेंगे तो बारिश जरूर होगी जरूर होगी जरूर होगी। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, जब मुलाकात का एंड पॉइंट होगा तभी, ताकि आप जब राइड कर रहे हो तो बारिश का लुत्फ़ उठा पाए और मुलाकात भी आपकी मुकम्मल हो जाए।

हाँ जी, और बहुत ही प्यारी सी डिमांड थी निशा जी, बहुत खूबसूरत, वाकई मैंने पहली दफा सुना लेकिन मजा आ गया। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, रमेश कुमार जी की। बाय स्टूडियो क्लॉक 3:50, शेष 10 मिनट ही है मेरे पास में, डिमांड बहुत सारी है, देखते हैं किस किस की डिमांड आज कंप्लीट होती है, कौन होता है इस रेस से बाहर। और इस गाने के बाद होंगे हमारे उस्मान खान जी, फिर होंगी हमारी सुनीता जी, और उसके बाद में होंगे हमारे कृष्ण कुमार मिश्रा जी जो कि पत्रकार हैं, और फिर रोशन लाल जी आपकी डिमांड, फिर देखते हैं उसके बाद वक्त होगा तो बाकी डिमांड्स भी प्ले की जाएगी।

जी हाँ दोस्तों, और बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। और ये डिमांड हमारे उस्मान खान जी की, कल भी इन्होंने सेम डिमांड की थी और भाई इन्होंने साफ साफ बोल दिया था अगर वक्त नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं कल दोबारा से डिमांड कर दूंगा। चलिए आज एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को।

ओल्ड इज गोल्ड वर्जन में से ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा आपने एंजॉय किया उस्मान खान जी की डिमांड पे। और अब बढ़ते हैं सुनीता जी की प्यारी सी डिमांड की ओर। गाना बहुत ही बेहतरीन है। फिर आएंगे हम शिवा पटेल जी की डिमांड की ओर। कृष्ण कुमार मिश्रा जी जो हमारे पत्रकार हैं, आपका सॉन्ग मुझे क्लियर नहीं हो रहा है इसलिए मैं इसे प्ले नहीं करने वाली हूँ, आई एम सो सॉरी। आप कल प्लीज डिमांड करिएगा 2 घंटे का आपके अपने शो में, कल पूरे 2 घंटे का फोनी फरमाइशी कार्यक्रम कॉल ट्यून गुंडा होगा। फिलहाल ये गाना एंजॉय करते हैं, गाना बहुत ही प्यारा है।

क्या सुनीता जी की इस डिमांड के बाद जो कि हमें गुड़वाघाट से सुनती हैं, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर जो कि हमारे शिवा पटेल जी की है। और इनका गाना हम तक रुक रुक के आया था, इसलिए इन्होंने चैट बॉक्स से अपने गाने को मेंशन किया था। उसके बाद चलेंगे हम रफी खान जी की डिमांड की ओर, और देन आज की लास्ट डिमांड हमारे रोशन लाल जी की होगी। और वक्त तो बिल्कुल हाथ में नहीं है, अगर वक्त रहा कोशिश करके मैं कहीं एडजस्ट करना चाहूंगी अपने प्यारे लिसनर आसिफ खान जी को। अगर आज नहीं कंप्लीट होता तो आप लोग जिन जिनकी डिमांड रह गई है कल प्लीज डिमांड करिएगा प्लीज, क्योंकि कल पूरे 2 घंटे का शो होगा और मुझे उम्मीद है सभी की डिमांड जरूर कंप्लीट होगी। एंजॉय द ट्रैक।

0: धड़कने लगा।
1: अच्छा ठहरने लगा, मुझे लगा धड़कने लगा। और राधिका सिंह जी जुड़ गई हैं शो, बहुत ही सुंदर, खासकर शुरुआत में मजा आया, थैंक यू सो मच। इट्स कुमार साहब कहते भैया शो ऐसा था कि सोते हुए को जगा दे। और हमारे प्यारे आरजे अभिषेक जी, नहीं यार आरजे अमन जी ने पूछा है कल 2 घंटे कुछ खास है क्या, तो खास बस इतना ही है कि कल होगा हमारा वीक ऑफ और होंगी उन्नति जी पूरे 2 घंटे के प्रोग्राम के साथ में। अब चलते हैं अपने प्यारे लिसनर यानी के जिनका नाम है रफीक खान जी, उनकी डिमांड के साथ में फिर आएंगे। रोशन लाल जी आपकी डिमांड और लास्ट डिमांड, कोशिश है पूरी मेरी आसिफ खान जी आपकी कंप्लीट करूं, तो फटाफट से थोड़ा थोड़ा ही सही, मुखड़ा ही सही, लेकिन सभी के गानों को कंप्लीट कर दे।

रफीक खान जी, गाना बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, लेकिन वक्त की कमी के कारण मुझे माफ करिएगा, मैं आपसे माफी ही मांग सकती हूँ, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, प्लीज नाराज मत होइएगा, कल आप सेम सॉन्ग की डिमांड कर लीजिएगा, पर मुझे अब आगे बढ़ना होगा नेक्स्ट डिमांड की ओर। और लेते हैं रोशन लाल जी की इस डिमांड को, और आपका भी मैं मुखड़ा ही प्ले करूंगी रोशन लाल जी। और लास्ट डिमांड आज की हम लेंगे अपने आसिफ खान जी की, जो हमें सुनते हैं मुंबई से, और जिनका सॉन्ग रह गया प्लीज कल सेम टाइम आप कॉल करिएगा, 2 घंटे के शो का एंजॉय करिएगा विथ योर फेवरेट आरजे उन्नति ट्रैक। और अब मुझे यहीं से इजाजत दीजिए, मिलते हैं आपसे शाम के शो यानी कि हाँ उसी शो में जिसका कि नाम है खेत खलिहान, और विषय आज का बहुत खास है, आइएगा जरूर।

0: मिलते हैं।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
5: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
6: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
9: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
10: गोंडा शहर की धड़कन।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में, और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: मैप है नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, लो गाऊं ऐसा गाना दिल्ली को पार कर दूं।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: हाँ जी श्रोताओं, तो वक्त हो गया है 5:06, और कहीं ना कहीं मैंने देखा नहीं भाई, हमने तो माइक ऑन कर दिया, हमने सोचा कि चलिए मुलाकात आप लोग से कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ही हमने बोलना शुरू कर दिया था। खैर कोई बात नहीं, 5:06, यानी कि आज का दिन है गोधूली स्पेशल खेत खलिहान का। विषय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, और हमारे बीच में बतौर एक्सपर्ट जो आए हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे लेकिन आप कर भी सकते हैं भाई, ये ज्ञान असली है और ज्ञान असली पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। बड़े ही दूर से आज हमारे मेहमान आए हैं, और मेहमान कौन है ये हम आपको बताएंगे, उससे पहले बताना चाहेंगे कि हमारे साथ में बतौर को होस्ट की भूमिका में आप सभी के प्यारे इरफान शाह जी हैं, तो इनका भी वेलकम करते हैं और देखते हैं कि भैया ये आज कैसे हैं। कैसे हैं इरफान शाह जी?
1: सबसे पहले तो सभी किसान भाई बहनों को जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब।
0: अच्छा,
1: और बताना चाहेंगे क्योंकि
0: चाय पानी भी पूछ लेते, पकौड़ी सकौड़ी खिला देते, पानी वानी बरसा है?
1: बिल्कुल, अभी जब स्टूडियो आ रहे थे तो काफ़ी जगहों पर पानी का भराव भी देखा गया, इसीलिए कहते हैं कि जब बरसात आती है ना तो अपने साथ मुसीबत भी लाती है।
0: कितनी सारी?
1: बहुत सारी, क्योंकि
0: जैसे?
1: जगह जगह पे पानी भरा हो जाता है, जहाँ पे कुछ जल निकासी की व्यवस्था नहीं होता है या कुछ ऐसे व्यवस्था नहीं होता है तो वहाँ क्या नाम है, पानी जो है भर जाता है। लेकिन जो बारिश हुई है
0: जी,
1: किसानों के चेहरे पे मुस्कान आ गया है। खरीफ की जो है सीजन चल रहा है इस समय, जो हमारे किसान भाई बहन जो हैं वो खरीफ की जो फसल है वो लगाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बादल जो है वो बांध के खेती नहीं की जाती है, बादल को देख के खेती की जाती है।
0: ओहो, मतलब किन आंखों से देखना होता है, चश्मा लगा के या फिर डायरेक्ट ऐसी नंगी आंखों से या फिर आंखें बंद करके, कैसे?
1: देखिए जब किसान जाता है तो आसमान के तरफ ही देखता है कि बस जो इंद्रदेव हैं वो आज जरूर बारिश करेंगे, और जब बरसात होती है तो जो फसल है वो भी खुश हो जाती है और किसान भी खुश हो जाता है। और आज हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं वो खरीफ की फसल से संबंधित, उसका प्रबंधन, उसमें जैसे दलहनी फसल बोई जा रही है, जैसे उड़द है, मूंग है, अरहर है।
0: जी जी, खरीफ की फसलों में विशेष करके जो हमारे इधर बोया जाता है उसमें है अरहर, मूंग और उड़द, तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप सभी में से किसी का भी कोई इससे संबंधित सवाल है तो नंबर हम पहले आप लोगों तक पहुंचा देते हैं। आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो गाना 89.6 FM गुंडा शहर की धड़कन, और इसके स्टूडियो का नंबर वही है 6393316429, यानी कि 6393316429। और इस पर, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं बतौर एक्सपर्ट शुभेंदु सिंह जी, जो कि आए हुए हैं बनारस से, बीएचयू बनारस से, जी हाँ, जहाँ के वो रिसर्च स्कॉलर है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बनारस, हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस, यानी कि BHU। क्यों, हमने सही फरमाया ना हमारे इरफान जी?
1: जी बिल्कुल मैम, आपने सही कहा, और यही कहेंगे कि बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं।
0: नहीं नहीं नहीं, बड़ी दूर से आए हैं, दाल का तोहफा लाए हैं।
1: बिल्कुल, जो कि दलहनी फसल की बात होगी आज रेडियो ज्ञान असली पर
0: जी,
1: और आज हम आशा करते हैं कि बहुत सारी जो है कॉल हमारी रेडियो पर आएगी ज्ञान असली पर, बहुत सारे लोग फोन करेंगे और अपना वो सवाल जो है वो रखेंगे।
0: हाँ बेशक, और काफ़ी लोग हमसे जुड़ना भी शुरू हो गए हैं और चैट बॉक्स में हाजिरी भी इन लोगों ने दर्ज करा दी है। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ बात करें, हम जानना चाहेंगे कि आखिर में इसका नाम खरीफ का मौसम क्यों रखा गया, और इस मौसम में, खरीफ के मौसम में दलहनी फसलों की खेती इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ये हम जानना चाहेंगे अपने विशेषज्ञ महोदय से। उससे पहले आपका बहुत हार्दिक वाला स्वागत और अभिनंदन करती है आपकी अपनी आर्ज आकांक्षा सर।
2: मैम खरीफ मौसम की बात करते हैं, पहले तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम शुभेंदु है और मैं इस टॉपिक पे खरीफ मौसम में दलहनी फसलों के बारे में आया हूँ। खरीफ का, पहले तो हम लोग खरीफ के बारे में जानते हैं, खरीफ का मतलब होता है जब मानसून शुरू होता है। खरीफ एक अरेबिक वर्ड है, वहाँ से ये आया है। और खरीफ मौसम में अगर हम दलहनी फसलों की बात करें, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें कम लागत और कम से कम टाइम में काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलता है, इससे मिट्टी की काफ़ी सारी उर्वरता बढ़ती है और ये अपने एक वेजिटेरियन देश और लोगों के लिए अच्छा प्रोटीन का स्रोत है
0: जी। और तो इस तरह से मतलब कहीं ना कहीं जो प्रोटीन और वेजिटेरियन लोगों के लिए दाल बहुत महत्वपूर्ण होती है, और बोलते भी कि जैसे बच्चे, नवजात शिशु जो होते हैं हमारे 6 महीने के जैसे कंप्लीट होते हैं, उनको कुछ और दिया जाए नहीं, लेकिन दाल, दाल का पानी और दाल से बनी हुई खिचड़ी, मतलब ये सारी चीज़ें खिलाई जाती हैं। और कहीं ना कहीं आप देखते होंगे तो जितनी शक्ति मैंने जो महसूस किया है, क्योंकि मैं जो चीज़ जब तक फील नहीं करती मैं किसी को वो सलाह भी नहीं देती, तो मुझे जो लगता है जितना शक्ति, जितनी ताकत हमारे हमारे दूध में होती है। जैसे दूध को पूरक आहार मानते हैं, उतनी ही शक्ति हमारी दाल पीने से भी हमें प्राप्त होती है। अगर आप व्रत रख रहे हैं, रोजे रख रहे हैं या कुछ ऐसा आप रख रहे हैं, उसके एक दिन पहले अगर आपने जम के दाल खाई है तो यकीन मानिए आपको व्रत और रोज़ा बिल्कुल नहीं खलेगा। और हमारे पास में एक कॉल भी आ गई है, देखते हैं हमारे साथ में कौन कॉलर जुड़े हुए हैं और इनका सवाल क्या है। हेलो,
3: हेलो, नमस्ते मैम
0: जी। नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं प्लीज।
3: जी तमन्ना बोल रहे हैं हम।
0: जी तमन्ना भाटिया जी, कहाँ से बोल रही हैं आप?
3: नहीं मैम, तमन्ना
0: आरजू है। ओ माय गॉड, तमन्ना आरजू। अब मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है भाई, तमन्ना आरजू दो लोग हैं या एक ही हैं?
3: जी मैम, दो लोग हैं, दोनों बहनें हैं।
0: जुड़वा है?
3: नो मैम।
0: ओके,
3: हम बड़े हैं, वो छोटी है।
0: क्या बात है भाई। तमन्ना आरजू जी जो कि हमारी डेली लिसनर हाल फिलहाल में बनी है, इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कहाँ से आप हमें सुनती हैं जी? कहाँ से सुनती
3: हैं? मलिहाबाद से सुनते हैं।
0: ओहो, मलिहाबाद भैया, आज का याद दिवा दी हो आप। कहाँ से आम आई, अब बताओ?
3: आमों के शहर से।
0: अब बताओ, हम मैं आम खा के कैसे खाई?
3: देंगे मैम।
0: अरे मजाक कर रही थी, आपने कॉल किया, आपके वहाँ की खुशबू मिठास सब हम तक आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। क्या ही बोले, दाल की फसल बाद में उगाएंगे, पहले आम याद कर लेते हैं जी भर के। हाँ कहिए आपका जी, आपका सवाल क्या है कहिए
3: जी। मैम मेरा सवाल यही है, दलहनी फसलों में अगर खरपतवार हो जाए तो उसे मतलब कैसे, क्या उसकी देखरेख कैसे करें?
0: ओके, इसके अलावा भी कोई सवाल
3: जी मैम? मूंगफली पे पूछना चाहेंगे, मतलब कैसे बोएं या कब का टाइम होता है या उसमें कितना पानी लगाएं, कैसे क्या मतलब?
0: ओके, तो मूंगफली के लिए भी हम अपने एक्सपर्ट महोदय से पूछेंगे, अगर उनको जानकारी होगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे, और अगर नहीं होगी तो नेक्स्ट कोशिश करेंगे आपके बीच में जो हमारे एक्सपर्ट आए।
3: मेरे यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन मेरी रिश्तेदारी में है ऐसा, तो अगर पता चल जाएगा तो हम बताएंगे।
0: ओके, अगर हो सकता है, अगर हमारे एक्सपर्ट महोदय जी, आपको इसकी जानकारी है मूंगफली की खेती के बारे में?
2: मैम पहले तो इनका क्वेश्चन जो खरपतवार नियंत्रण पे था
0: जी,
2: तो
0: जी तमन्ना जी, आप तक आपका सवाल क्या जवाब पहुंच रहा है, मैं कॉल ड्रॉप करूंगी। थैंक यू। ओके ओके,
2: सो अगर हम खरपतवार नियंत्रण की बात कर रहे हैं, तो आपने अगर जस्ट बुआई की है, अगर एक वीक हुआ है या उससे कम भी हुआ है, तो हम लोग पेंडामेथिलीन यूज करते हैं 30 EC का, जो हमें मार्केट में नॉर्मली मिल जाएगा मांगने पे, उसको 0.75 750 ml से 1 L तक पर हेक्टेयर की दर से हम उसका छिड़काव करते हैं। और अगर आपकी फसल 1 से 1.5 महीने पुरानी हो गई है या आपको टाइम हो गया है, तो उसको जो पोस्ट इमरजेंसी है वो डालते हैं, वो है इमेजाथाइपर, और उसको भी हम लगभग इसी क्वांटिटी में यूज करते हैं
0: जी।
2: तो ये आपके खरपतवार नियंत्रण के लिए हो गया। बाकी एक दूसरा तरीका भी है जो थोड़ा किफायती और वो भी है, उसको हम एज अ हैंड वीडिंग यूज करते हैं, जिसको हम पहली हैंड वीडिंग 20 से 25 दिन पे करेंगे, सारे खरपतवार निकालेंगे, और दूसरी निराई गुड़ाई 40 से 45 दिन पे हम करते हैं।
0: ओके, तो इसके अलावा मतलब जैसे अगर जैसे खरपतवार का नियंत्रण हम बुआई से पहले ही कर सकते हैं कि उसमें कुछ ऐसा डाल दें, कुछ भी जो दवा वगैरह आती है, जैसे खरपतवार आए ही ना या आए तो बहुत ही कम मात्रा में, जैसे हमारी फसलों को नुकसान ना हो?
2: मैम उसी के लिए मैंने पेंडामेथिलीन बताया, आपने जैसे बस सीड सो किया है, उसको हफ्ते से 15 दिन के अंदर आप पहले स्प्रे कर दीजिए, प्लांट इमर्ज होगा, आप उस टाइम डाल देंगे, आपको बहुत कम प्रॉब्लम होगा।
0: ओके,
2: पूरे टाइम में।
0: और क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि मतलब हमें दवाई ना डालनी पड़े, और क्या हाथ से सफाई करके मतलब गुड़ाई निराई बीच में भी हम कर सकते हैं फसल की या नहीं कर सकते?
2: तो उसके लिए हमें उनको प्रॉपर एक बीज उपचार अपना करना होगा, और थोड़ा सा हैंड वीडिंग, जिसको है निराई गुड़ाई हाथ से बोलते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। इसका बस एक समस्या ये है कि अगर हमारे पास जो भी खेत है, खलिहान है, वो ज्यादा है, या फिर हमने ज्यादा एरिया में अगर दाल लगाई है,
0: तो मुश्किल होगा,
2: लेबर प्रॉब्लम, और उसका कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है।
0: अच्छा, जैसे ऐसा भी कर सकते हैं कि सर, जैसे हम लोग क्या होता है घर पे, आमतौर पे हम लोग की छोटी मोटी बगिया बगीचा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि डे वाइज हिस्सा बांट लेते हैं और थोड़ी थोड़ी दूर की सफाई किया करते हैं, तो ऐसे भी बांट के कर सकते हैं?
2: हाँ मैम, अगर कोई पर्सनल अपने घर के लिए कर रहा है तो वो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अगर कोई कॉमर्शियली कर रहा है तो वो इतना आसान
0: इफेक्टिव नहीं होगा। बेशक, तब हमको दवा का ही यूज करना पड़ेगा। सर इन्होंने मूंगफली के बारे में भी पूछा था, क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है?
2: मूंगफली में मैम क्या स्पेसिफिक जानना चाहते हैं?
0: ये उसकी बुआई निराई पानी कब देना है, मतलब एक तरह से इन शॉर्ट में आप सब कुछ बता दें इन शॉर्ट में।
2: मैम अगर मूंगफली की खेती की बात करेंगे तो हम कोशिश करते हैं, अगर बलुई दोमट है या पूरी तरीके से बलुई मिट्टी है तो काफी अच्छा रहता है। जैसे मैम ने बोला कि ये मलिहाबाद के रहने वाले हैं, तो जो आसपास का वहाँ गोमती का एरिया है,
0: जी,
2: उसके किनारों पे ये खेती करी जाती है, और बाकी अगर हम सिंचाई का बात करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, एक से दो पानी लगाने होते हैं, और उसमें भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आता है खरपतवार का, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं। आप हैंड वीडिंग से या एक दो बार यही पेंडामेथिलीन या वो कोई भी दवा ले लेंगे जो भी पोस्ट इमरजेंस की है, आप आराम से अच्छे से खेती कर सकते हैं।
0: और किस महीने में मतलब इसकी खेती होती है मूंगफली की?
2: मैम खेती अभी खरीफ में आप कुछ टाइम बाद स्टार्ट कर सकते हैं।
0: ओके, तो इसमें मतलब लागत ज्यादा पड़ती है या मतलब मुनाफा अच्छा होता है लागत या फिर?
2: मुनाफा अच्छा है, स्पेशली अगर हम एज अ रॉ मंडी में भी बेच रहे हैं तब भी फायदा है, और अगर हम थोड़ा सा जो है मतलब आगे खुद से ही प्रोसेसिंग भी करते हैं, अगर फूड प्रोसेसिंग में जाते हैं तो काफी अच्छा हमें मुनाफा प्रदान करता है।
0: और कंपनीज भी हाथों हाथ इसको ले लेती हैं अगर आपका ब्रांड अच्छा हो, आपकी मतलब मूंगफली अच्छी पैदावार हुई हो उसकी, तो क्योंकि उसको नमकीन बनाना और बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है, मूंगफली का तेल भी निकलता है खास करके व्रत वगैरह में यूज होता है। और मूंगफली की अगर हम बात करें तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में ये यूज में आता है। अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे अपने प्यारे लिसनर्स का जो कि हमें चैटबॉक्स में दिख रहे हैं। तो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो सबसे पहला मैसेज हमें दिख रहा है प्रमुख कुमार जी लुधियाना से, गुड इवनिंग एवरी वन बोला है, गुड इवनिंग टू यू डियर। और साथ में विजय पाल यादव जी हैं ललहुआ लखीमपुर खीरी से। और तमन्ना जी, अगर आपका भी कोई सवाल अभी रह गया हो तो आप चैटबॉक्स में आके मेंशन कर सकती हैं। और आदरणीय विजय पाल जी लिखते हैं, आदरणीय इरफान शर जी एवं बहन आकांक्षा जी व एक्सपर्ट महोदय जी, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। सर जी, मैं अरहर बोना चाहता हूँ, उपयुक्त समय उन्नत किस्म बताने की कृपा करें, साथ ही बरसात के मौसम में। ओके, तो आपकी अरदास हमने कबूल कर ली है, देखते हैं आज हम कितने गानों को जाते जाते प्ले करेंगे, और उसके बाद में ज़्यादा नहीं तो मुखड़ा और एक टुकड़ा ज़रूर कोशिश करेंगे बजाने की। इसके अलावा धर्मेंद्र मोहन भारती जी आवाज़ विकास कॉलोनी गोंडा से, इरफान सर जी को गुड इवनिंग और शुभ संध्या बोला गया है, खेती किसानी में इरफान सर जी का ही स्पेशली उन्होंने स्वागत किया, हम लोग तो हैं ही नहीं, कोई बात नहीं, हमने मान लिया कि हम हैं। और प्रमुख जी हैं, मलिहाबाद का आम दुनिया का सबसे स्वादिष्ट आम है, हाँ हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा है, और अपने इलाकों की तारीफ करते रहिए ताकि विश्व में एक दिन हम भी विख्यात हों। और इसके बाद में प्रश्न पूछने का ढंग बहुत ही प्रशंसनीय है, आकांक्षा बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इरफान भाई, वीडियो प्ले नहीं हुआ, ऐसा क्या हुआ, फिर से लाइव आइए, आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आप लाइव आइए। उससे पहले आप चलिए मैं ही सवाल रखती हूँ जो हमारे इनका विजय पाल जी का था सर, कि इनको बोना है अरहर, तो इसमें उन्नति किस्म कौन सी है और साथ में उपयुक्त समय क्या है?
2: देखिए, अरहर बुआई का उपयुक्त समय वही 15 जून से चालू हो जाता है, कोशिश करें 15 जुलाई तक का आप बो दें, अगर नहीं भी बो रहे हैं तो कोशिश करें लास्ट जुलाई ख़त्म होने से पहले बो दें, वरना आप फिर जितना ही लेट करेंगे आपकी फसल को उतना ही प्रभावित करेगा। और कोशिश करें कि उन्नत किस्में हैं, जैसे उपास 120 है, पूसा 992 है, नरेंद्र अरहर 1 है, नरेंद्र अरहर 2 है, नरेंद्र अरहर 3 है, बाकी एक कनिका वेराइटी है, आशा वेराइटी है, इन सबका उपज भी काफ़ी अच्छा है। और कोशिश करें अगर आप बीज खरीदने जा रहे हैं तो अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र या ब्लॉक लेवल पे सरकारी बीज भंडार या किसी अच्छे दुकान से अच्छे कंपनी का बीज खरीदें।
0: अब बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर, लेकिन हम चाहेंगे कि इरफान जी अगला सवाल आप रखें।
1: चलिए मैम, आपने हमें मौका दिया कि आप सवाल करिए तो बिल्कुल हम सवाल करेंगे। सर, आप जानना चाहेंगे कि खरीफ का सीजन चल रहा है, तो इस समय जो खरीफ की जो फसलें जो बोई जाती हैं, तो कौन कौन सी फसलें जो खरीफ की सीजन में बोई जाती है?
2: देखिए, अगर हम खरीफ मौसम में स्पेशली दलहन फसलों का बात करेंगे तो अपने यहाँ ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में अरहर हो गया, उड़द हो गया और मूंग की फसलें ली जाती हैं, और इन फसलों पे सरकार भी और लोग भी थोड़ा ध्यान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम लोग कम से कम टाइम में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर हम लोग बात करें उड़द और मूंग की, तो ये कम दिन की फसलें हैं, जैसे उड़द है वो 70 से 90 दिन में हो जाती है, मूंग है वो 50 से 75 दिन में ही हो जाती है, और आप जानते हैं कि अगर MSP की बात करें तो उड़द का 8200 रुपये है, मूंग का 8780 रुपये पर कुंटल है, और अरहर भी लंबे समय में आपको अच्छा फ़ायदा देती है, और अरहर का भी लगभग MSP 8450 रुपये है, तो आप कम समय में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और यही तीनों फसलें अपने आप ज़्यादातर उगाई जाती हैं
1: जी। अब सर हम आते हैं अगले सवाल पर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि सर जैसे मान लीजिए हमारे किसान भाई बहन खरीफ की जो फसल वो बुआई करना चाहते हैं, तो वो खेत की जो तैयारी है, जो भूमि की तैयारी है, वो कैसे करें?
2: पहले तो देखिए जुताई कर ले, फिर आपके पास अगर कंपोस्ट है तो कंपोस्ट 1 से 1.5 टन, बाकी अगर कहीं पे पोल्ट्री मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है वो भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है।
0: जी, मैं आप लोगों को यहाँ पे रोकना चाहूँगी, हमारे पास में फिर से उन्हीं की कॉल आई है, हमें लग रहा है कुछ इनका अधूरा सवाल लग गया। हाँ हेलो तमन्ना जी, कैसी हैं, कैसे याद किया दोबारा? हेलो हेलो,
3: उसके जो पौधे भी अच्छे होते हैं उसमें जो छियां लगती है।
0: जी जी फिर से जी एक बार फिर से बोलिए, आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई है।
3: जी हम ये बता रहे हैं जो उड़द की दाल की जो फसल बोई जाती है उसका पौधा भी अच्छा होता है, उसमें जो छियां लगती है वो भी अच्छी होती है, लेकिन छियां के अंदर जो दाल होती है वो क्यों नहीं होती है? अगर कभी कभी होता है ऐसा कि छियां सिर्फ होती है उसमें दाल नहीं होती है।
0: अच्छा अच्छा,
3: इसका कारण हम जानना चाहेंगे।
0: ओके ओके, इसके अलावा और कोई सवाल?
3: जी मैम नहीं।
0: ओके बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमन्ना जी हमारी जानना चाहती हैं आपसे कि भाई इनका पौधा पूरी तरह से स्वस्थ रहता है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन उसमें फल नहीं आ पाता है।
2: तो इसके लिए मेन आपने मैंने आपसे बोला था कि जो है थोड़ा सा बीज को अच्छी जगह या अच्छे सोर्स से लीजिए, कि जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है या सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, सरकारी बीज भंडार हैं। दूसरा चीज ये है ना कि आपको दलहन फसलों में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है जल निकास का। ऐसी भूमियाँ जो नीचे में हैं या तराई एरिया है तो वहाँ पे ऐसा कोशिश करें इनको ना लगाएं, या अगर कहीं पे पानी भरने का प्रॉब्लम है तो आप उचित जल निकास का व्यवस्था करें, वरना अगर पानी भरना इनके लिए
0: जी। और उस्मान खान जी हमसे जुड़ गए हैं और इनका भी यही सवाल है सर कि खरीफ क्रॉप में बारिश के क्रॉप्स की सुरक्षा कैसे की जाए, किस तरह से निचले एरिया में अगर हमारा घर है या हमारी खेती ही है तो हम कहाँ जाएंगे, तो हमें किस तरह से हम इसकी मतलब देख रेख करें कि बारिश के पानी से इससे नुकसान ना हो। साथ ही में राही नवाबों के शहर लखनऊ से हमें सुन रहे हैं राही जी। राही जी आपका भी स्वागत है, प्लीज सर जवाब दें उस्मान जी के सवाल का।
2: पहले तो कोशिश करें कि जो है जल भराव वाला जो एरिया है उसमें या तो बुआई ना करें या प्रॉपर आपको मतलब ड्रेनेज जल निकास का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, वरना उससे फिर सड़न रोग है या येलो मोज़ेक वायरस है, ऐसे बहुत सारे रोग भी लगेंगे या कीट भी आएंगे। तो कोशिश करें जो तराई इलाका या निचले इलाके हैं उसमें या तो बुआई ना करें या करें तो जल निकास की एकदम उत्तम व्यवस्था रखें।
0: अब बढ़ते हैं फिर से, आज जो आपसे प्रश्न रखा था इरफान जी ने, क्या रखा था इरफान जी?
1: जी बिल्कुल, खेत की तैयारी से संबंधित हम लोगों ने पूछा था सर से।
2: तो वही हमने जो बताया था कि नॉर्मल आपने जुताई कर ली, उसके बाद में अगर कंपोस्ट मिल जा रहा है 1 से 1.5 टन तो वो डाल दीजिए, अगर वर्मी कंपोस्ट आपको मिल जा रहा है या आपको पोल्ट्री मैन्योर मिल जा रहा है तो वो एक नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत है, आप उसको भी डालें
1: जी।
2: और बाकी अगर कोई प्री इमरजेंस को वो लगाना है वरना कोशिश करें ना ही लगाएं
0: जी। और एक सवाल और आया हुआ कि जैसे प्रमुख जी का कहना कि हमारे यहाँ तो अरहर पिछड़ गया रहा लेकिन मेरे पापा ने फिर भी बो दिया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी?
2: नहीं नहीं, अभी आप जुलाई लास्ट तक का बो सकते हैं, अगर 15 जुलाई के पहले बो रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बाकी आप 15 से 30 तक का भी बो सकते हैं अगर बारिश थोड़ा सा लेट है आपके
0: जी। और हमारे पास में एक कॉलर की कॉल भी आ गई, देखते हैं कौन हमारे साथ में। हेलो
3: हेलो, नमस्कार मैम
0: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना शुभ नाम बताए हमारे श्रोताओं को।
3: जी मैम धन्यवाद, और डॉक्टर साहब को, इरफान भाई से चुकी हूँ भी, मेरा नमस्कार।
1: नमस्ते नमस्ते, बिल्कुल आपको भी नमस्कार।
3: मेरा नाम है रौशनी रावत, मैं उन्नाव से प्रोग्राम सुन रही हूँ आपका।
0: जी जी, उन्नाव से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उन्नाव से हमारे विकास तिवारी जी, हमें सुनते हैं, उनकी याद आ गई, कहिए क्या सवाल है?
3: मेरा सवाल जो है वो अरहर की उन्नत खेती के बारे में ध्यान रखने योग्य बातें जाननी है मुझे।
0: ओके, इसके अलावा कोई सवाल?
3: इसके अलावा सवाल तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे आपकी तारीफ करनी है क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इरफान भाई के साथ और आपका मतलब दोनों का जवाब ही नहीं, क्योंकि आपके द्वारा पूछे गए सवाल और इरफान भाई के द्वारा पूछे गए सवाल सराहनीय है।
0: अच्छा,
3: और जो जवाब बताए जा रहे हैं डॉक्टर साहब के द्वारा वो भी बहुत ही लाजवाब है,
0: और जो बीच में हम खुरपेज करते हैं उसका क्या
3: वो भी बहुत अच्छे लाजवाब।
0: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
3: जी धन्यवाद,
0: जी धन्यवाद। तो ये थी हमारे बीच में रोशनी जी, और ये हमें उन्नाव से सुन रही हैं, और पीछे से कॉल और आ रही थी, हो सकता है कुछ देर में आए, तो इनको लीजिए आ गई, तो इनकी भी कॉल हम ले लेते हैं। हेलो
4: नमस्कार
0: जी। नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं।
4: मैं विजय पांडे थाना पचपड़वा जनपद बलरामपुर से बोल रहा हूँ।
0: जी बलरामपुर से आपका बहुत बहुत हार्दिक वाला स्वागत है सर, क्या हाल चाल है आपके?
4: बहुत अच्छे है, मैं जानना चाहता हूँ
0: जी। आप कुछ जानना चाहें उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ आपके उधर बारिश हुई थी क्या?
4: बारिश हुई थी।
0: चाय पकौड़े हुए आपके?
4: कल भी रात बारिश हुई
0: जी। कल से बारिश हो रही तो आज तक में आपने चाय पकौड़े लिए या नहीं लिए?
4: चाय पकौड़ी खाए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा जीव जुड़ाएगा। अब अपना प्रश्न रखिए।
4: मेरा प्रश्न है कि मैं उर्द बोना चाहता हूँ।
0: जी जी।
4: तो अभी तो पानी नहीं लगा हुआ है खेत में, तो कब तक हम बो सकते हैं?
0: ओके, और कोई सवाल सर?
4: और एक सवाल है कि अरहर अभी हम नहीं लगा पाए हैं, बो पाए हैं, तो वो भी हम बोना चाहते हैं।
0: जी जी। तो आप इसका वक्त जानना चाहते हो और बाकी चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया
4: जी
0: जी। तो ये थे हमारे विजय जी, लेकिन उससे पहले हम रोशनी जी के सवाल पे जाएंगे। वो जानना चाहती थी उन्नत तकनीक की, उर्द पूछा था या अरहर पूछा था? हाँ, अरहर की खेती के लिए क्या क्या किया जाए?
2: देखिए, अगर अरहर की खेती करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मिट्टी का ध्यान रखें कि मिट्टी अगर आपकी दोमट है या हल्का सा बलुआ दोमट या वैसी भी है तो चल जाएगा। दूसरा, इसमें दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि एक समय पर बुआई हो गई, तीसरा है बीज उपचार, और खाद भी जो हमें डालनी है काफ़ी संतुलित मात्रा में डालनी है, और थोड़ा बहुत खरपतवार नियंत्रण का भी ध्यान रखना है, स्पेशली बीज उपचार का, और बीज हम कहाँ से ले रहे हैं तो किसी अपने जानने वाले या मतलब किसी अच्छे सोर्स से लें।
0: बीज उपचार का तरीका क्या है?
2: मैम, बीज उपचार का तरीका अगर हम बात करेंगे तो इसमें तीन प्रक्रिया होती है। सबसे पहले तो हम कोई एक फफूंद नाशक उठाते हैं, जैसे कार्बेंडाजिम या थीराम यूज करते हैं, तो वो आपके पर किलो 2-3 ग्राम लेते हैं। उससे पहले हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद कोई एक कीटनाशक लेंगे जैसे कि क्लोरोपाइरोफॉस है, वो 5-6 ml पर किलो बीज हम लेते हैं। फिर उसके बाद में हम इसको 24 घंटे के लिए अपने बीज को रख देंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये होगा अगर कीटनाशक के बाद में हम जो बायोफर्टिलाइजर ट्रीटमेंट करते हैं, अगर वो हम 24 घंटे या 25 घंटे का टाइम नहीं देंगे तो वो आपके बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सकता है। फिर आता है इसका सबसे मेन पार्ट बीज उपचार का, वो है बायोफर्टिलाइजर और पीएसबी का जो हम ट्रीटमेंट करते हैं
0: जी।
2: इसके लिए क्या करते हैं, पहले लगभग अगर आपका 1 kg बीज है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, आप 1 liter पानी लीजिए, उसमें 120 से 130 ग्राम गुड़ ले लीजिए और मुश्किल से 5-10 ग्राम गोंद ले लीजिए, उसको अच्छी तरह से घोल दीजिए, उसके बाद में खौला लीजिए, खौलाने के बाद फिर उसको गैस से उतार के ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए। फिर जब वो ठंडा हो जाता है आपके रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल हो जाएगा, उसमें 5-10 ग्राम राइजोबियम और 5-10 ग्राम फॉस्फोरस सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया, इसको पीएसबी बोला जाता है, मिल जाता है मार्केट में आसानी से, इसको भी 5-10 ग्राम डालेंगे, फिर इसको घोल लेंगे, फिर जब एकदम नॉर्मल हो जाएगा, इतने घोल में 1 kg हम बीजा, जो भी आपका दाल है, अरहर है, उड़द है, मूंग है, आप उसमें डाल दीजिए, फिर उसके बाद हम वही 40-45 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर उसको सूख जाने दीजिए, फिर हम अच्छे से बुआई कर सकते हैं इसका। और आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स इससे मिलेंगे। इवन अगर आप ये बीज उपचार भी अच्छे से करते हैं तो आपका समझिए जो फाइनल प्रोडक्शन या यील्ड होगा उसमें 10-15% तक का आपको बेनिफिट मिल सकता है।
0: जिस तरह से अभी एक सवाल आया था कि उनकी उर्द की खेती तो करती है, छीमी भी आता है, पौधा भी स्वस्थ रहता है, पर उसमें फल नहीं आता, उसका कारण यही है कि उसका बीज जो है वो अच्छा किस्म का नहीं है या तो फिर उसमें बीज उपचार नहीं हुआ है। इसके अलावा एक सर और सवाल है कि अरहर की बुआई का जो उपयुक्त समय है वो क्या है?
2: मैम, अरहर की बुआई का उपयुक्त समय वही 15 जून से 15 जुलाई होता है, बट जहाँ पे बारिश लेट है वो मैक्सिमम 30 जुलाई तक आप कर सकते हैं। कोशिश करें इससे लेट ना करें, वरना फिर आपकी फसल पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा
0: जी। और इससे पहले अगर कर दिया तो भी?
2: नहीं नहीं, पहले मैम 15 जून से ये 1.5 महीने का आपके पास विंडो रहता है, आप इसमें आराम से कर सकते हैं।
0: ओके, अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर, और उससे पहले सवाल ये था, हाँ जी, हमारी विजय पांडे जी का, जो कि मैं बलरामपुर से सुन रहे हैं, उनको जानना था, सेम सवाल था, बस ये हमारी रोशनी जी ने अरहर के बारे में पूछा था और ये उड़द के बारे में जानना चाहते हैं।
2: उड़द का भी कोशिश करिए आप जुलाई महीने में लास्ट तक का आराम से लगा लीजिए, और छोटी सी फसल है 70-90 दिन की, और कोशिश करिएगा कि उपयुक्त बीज लीजिए, और वेराइटीज़ तो इसकी कई सारी हैं, जैसे पंत उड़द पंत उड़द 3 है, फिर नरेंद्र उड़द 1 है, नरेंद्र उड़द 2 है, फिर एक शेखर 2 वैरायटी है, काफ़ी फेमस है, एक ताप्ती करके है, और इसका कोशिश करें आप 18-20 kg पर हेक्टेयर का बीज लें, बीज में कमी ना करें, और आप इसको दोनों पर्पस के लिए लगा सकते हैं। बहुत लोग एज अ ग्रीन मैन्योर के लिए लगाते हैं और बहुत लोग एज अ दलहनी फसल के लिए भी लगाते हैं
0: जी। तो मतलब अभी आपने जो बीज उपचार बताया वो सभी बीजों के
2: वो लिए? सभी बीजों के लिए है, जो भी दलहनी है आप सब में यूज कर सकते हैं
0: जी। और इसका मतलब उपयुक्त समय क्या है उड़द की खेती का?
2: मैम उड़द का पूरा जुलाई,
0: पूरा जुलाई, इससे आगे पीछे
2: लास्ट जून से? हाँ मैम कर सकते हैं, लेकिन बहुत जितना भी लेट करेंगे उतना ही फसल पे नुकसान होगा।
0: ओके, हमारे पास में प्रमुख जी ने भाई एक सवाल भेजा लुधियाना से, लिखते हैं विशेषक महोदय जी, हमारे यहाँ अरहर उड़द मसूर की खेती होती है। एक बार 2022 में जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी आए हुए थे हमारे जिले में, तब उन्होंने हमारे जिले की तारीफ भी की थी इस चीज के लिए। हमारे यहाँ बलुई मिट्टी है, अरहर का पौधा शुरू से बहुत अच्छा चलता है, लेकिन पकते समय उसके फल सूख जाते हैं, इसका कारण क्या है? खेती करने के दौरान किसान कोई गलती कर रहे हैं क्या? सही प्रजाति का चुनाव नहीं हो पा रहा है या मिट्टी में कोई कमी है?

0: किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से आप जरूर डालें और उचित टाइम पे सिंचाई करें, आपको हो सकता है आने वाले टाइम पे समस्या नहीं आएगी।
1: जी, और अब हम लेंगे एक शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे फिर आपके सवालों का जवाब। ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। कॉल करने के लिए फिर से मैं आपको नंबर देती हूँ 6393316429, यानी कि 6393316429। सुनते रहिए। और ये प्यारा सा आल्हा भाई, आल्हा की रिक्वेस्ट आई हमारे पास में, तो आप सभी की रिक्वेस्ट पे और खासकर विजय पाल जी की रिक्वेस्ट पे ये प्यारा सा आल्हा आप तक पहुँचाती है आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। स्टे ट्यून्ड, आते हैं जस्ट यूं इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार।

0: हाँ जी, और इसी तरह से कहीं ना कहीं अभी आपने आला एंजॉय किया, पूरा तो बजा नहीं सकती, पूरे 40 मिनट की पूरी कहानी है भाई। भोलेनाथ का मौसम आने वाला यानी कि सावन आया है, और इसलिए हमने ये वाला आला आप सभी के लिए बजाया है। उम्मीद है आपने काफी एंजॉय किया होगा। और अब हम चलते हैं फिर से एक बार, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने शो में यानी कि गौधुली स्पेशल खेत खलिहान में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, हमारे साथ में को होस्ट के रूप में है इरफान शाह जी, और हमारे एक्सपर्ट हैं हमारे प्यारे सर जिनका के नाम है शुभेंदु सिंह जी, जो कि हैं रिसर्च स्कॉलर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारसी यानी कि BHU से। चलते हैं फिर से प्रश्नों की ओर, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी भाई, दो तरह की दालों पर तो हमने चर्चा अच्छे से कर ली है, एक हो गई है अरहर, दूसरी हो गई उड़द। अगर इससे भी संबंधित अभी आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप चैट बॉक्स में बोल सकते हैं, इसके अलावा आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर वही है 6393316429 यानी कि 6393316429। अब बारी है हमारे फसलों में एक फसल जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मुझे आपकी अपनी आरजे आकांक्षा को, कारण भैया इसकी कचौड़ी बहुत बढ़िया बनती है। बरसात का मौसम हो, चाय हो, कचौड़ी हो, पकौड़ी हो, भैया और क्या ही चाहिए। तो बता देते हैं कि अब बची है हमारी मूंग की दाल, और इसको हिंदी में मूंग की दाल ही कहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं, सजाएंगे नहीं, संवारेंगे नहीं, जैसी है वैसी बड़ी प्यारी है। और कहा जाता है कि ये भारत में सबसे लोकप्रिय और आसानी से पचने वाली दालों में से है। और आपको बता दें इसका कोई भी आइटम हो, चाहे वो आपकी इसकी कचौड़ी हो, इसकी फुलौरी हो, या फिर इसकी खिचड़ी हो, और कुछ भी आप इसका बना लीजिए, मज़ा आ जाता है। और अगर इसकी पकौड़ी है ना इस बरसात के मौसम में, जिस तरह से हम फुलौरी बनाते हैं बेसन की और साथ में पुदीने की चटनी, ओहो मुँह में पानी ला देगा। और ये प्रोटीन, फाइबर और विटामिन का एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत होता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। साबुत मूँग, जिसे होल ग्रीन मूंग कहते हैं, ये हरे रंग का छिलके वाला पूरा दाल होता है, जो आपने देखा होगा जो जिम वगैरह करती हैं, जो अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस जो होते हैं, वो सुबह सुबह इसको भिगो के इसको अंकुरित करके खाना पसंद करते हैं। और ये बिना छिलके की भी छोटी दानों वाली होती है, जिसको बोलते हैं धूली मूंग यानी कि येलो मूंग दाल, और छोटे दानों वाली पीली दाल होती है। इस तरह से ये हमारे लिए, आप इसको खाली दाल में या खाने में ऐसे ही नहीं यूज़ कर सकते, इसको एज आ सलाद भी आप खा सकते हैं। तो ये रही हमारी मूंग, और अब हम चलते हैं अपने इरफान जी की ओर और पूछते हैं, भैया क्या मूंग के लिए भी कोई सवाल है आपके पास में?
1: जी बिल्कुल मैम, क्योंकि अब आते हैं अपने अगले सवाल पे
0: जी,
1: और जानते हैं सर कि उड़द की जो मूंग की जो है उन्नत खेती के बारे में, क्योंकि उसका जो प्रबंधन है कैसे किया जाए, उचित प्रबंधन।
2: देखिए जो मूंग की खेती है उसका भी उचित समय यही जुलाई स्टार्टिंग से लेके आप 15 अगस्त तक बो सकते हैं। कोशिश करिए इस टाइम में, ऐसे 15 अगस्त से पहले ही बोने का कोशिश करिए। हमें खास ध्यान इसमें ये रखना है, जैसे सीड ट्रीटमेंट हो गया या सीड हो गया, वो तो सब सेम रहेगा कि अच्छी जगह से लीजिए, बाकी सीड ट्रीटमेंट करिए। बाकी इसमें हमें ध्यान रखना है कि कई सारी उन्नत किस्में हैं, हमें उनका ज़्यादा यूज़ करना है। जैसे एक सम्राट वेराइटी है, प्रजाति है, जो दलहन अनुसंधान कानपुर से निकली है, काफ़ी अच्छी वेराइटी है। यह 55 से सिर्फ 60 दिन में तैयार हो जाती है, और ये येलो वेन मोज़ेक करके एक बीमारी होती है, उसके प्रति रेजिस्टेंट है
0: जी। और हमारे बीच में कॉल आ गया, मैं आपको रुकना चाहूँगी, क्षमा चाहूँगी। हेलो
3: हेलो
0: जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, अपना नाम बताएं। जी क्या सवाल है आपका, अपना सवाल रखे सर।
3: सवाल यही है कि कोई ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए एक आध घंटे का
0: जी,
3: प्रतिदिन जैसे कॉलिंग शो होता है, या हफ्ते में एक दिन बनाया जाए कोई ऐसा कार्यक्रम, कम से कम ये सब संजू बघेल के आवाज में या लल्लू वाजपेयी की आवाज में या किसी की आवाज में ऐसा भक्ति गाना और अल्हा सुनाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा
0: जी। आपका सुझाव ऊपर तक पहुंचा दिया जाएगा, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए और आपका अपना कीमती फीडबैक हम तक पहुँचाने के लिए, थैंक यू सर। ये थे हमारे बीच में हमारे देव प्रसाद जी भाई, इनका एक फीडबैक आया हुआ है, इस पे हम चर्चा कर लेंगे आपस में। और इसके अलावा नागेश्वर धाकर जी आ गए रतलाम की गलियों से, लिखते हैं विशेषक महोदय को मेरा प्यार भरा नमस्कार, इरफान शाह जी को प्यार भरा नमस्कार, और हम तो कहीं हैं ही नहीं, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि हम हैं, क्या बात है, आज हम हैं ही नहीं
1: जी। नमस्कार भाई, नमस्कार
0: सर, आप भी हेलो बोल दें।
2: हेलो भाई
0: जी। और साथ ही में इन्होंने लिखा है कि भाई भारत दलहन उत्पादन में नंबर 1 पर आता है, और इन्होंने बताया है कि एक नीले कलर की भी दाल होती है मूंग की, क्या ऐसा है?
2: हमने तो मेरे जानकारी में नहीं है।
0: मूंग की दाल भाई पीली होती है, हरे हरी तब होती है जब वो छिलके सहित होती है। ये नीले कलर का उत्पादन क्या एमपी में स्पेशली हो रहा है रतलाम की गलियों में, हमको जरा सूचना दीजिए इसका थोड़ा सा विस्तार में, ताकि हमारे लिसनर्स भी जान पाए। फिलहाल हमारे पास में एक और कॉल आ गई है, देखते हैं हमारे साथ में कौन जुड़ा हुआ है। हेलो।
4: हेलो
0: जी, नमस्कार, अपना शुभ नाम बताए।
4: जी मैडम, उत्कर्ष तिवारी है
0: जी, कहाँ से आप बात कर रहे हैं सर?
4: मुझे कानपुर से बात कर रहा हूँ मैडम। मैं
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है सर आपका?
4: मैम, मूंग की इसके बुवाई की परिपेक्ष में जानना था
0: जी।
4: हम लोग यहाँ जो बुंदेलखंड लगता है, तो मूंग की बुवाई के लिए क्या उचित रहेगा
0: जी? क्या पूरी डिटेल आपको अभी हम आप तक पहुँचाते हैं। और कोई सवाल सर?
4: नहीं मैम, बस इतना था।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
4: ओके, धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में हमारे उत्कर्ष जी, जो हमें कानपुर से सुन रहे हैं, और ये मूंग की खेती के बारे में इसका पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं कि इस महीने में इसकी खेती होती है, किस तरह से खेती होती है, मिट्टी किस तरह से होनी चाहिए, पानी की सिंचाई की व्यवस्था किस महीने में की जानी चाहिए, ये सब कुछ।
2: हाँ, तो जैसे हम मूंग की बात कर रहे थे कि बीज सही जगह से लीजिए, बीज अच्छा लीजिए, और हम कुछ उन्नत किस्मों के बारे में बात कर रहे थे। जैसे एक सम्राट है इन्हीं के यहाँ कानपुर दलहन अनुसंधान से, बहुत फेमस वैरायटी है
0: जी।
2: फिर पूसा विशाल है, नरेंद्र मूंग एक है, नरेंद्र मूंग दो है, नरेंद्र मूंग तीन है, फिर बाकी पंतनगर की भी वैरायटीज़ हैं। तो कोशिश करिए आप अच्छी वैरायटीज़ लीजिए। और आप अगर बोने का समय पूछ रहे हैं, तो मैंने वही बताया था कि 1 जुलाई से 15 अगस्त तक का है। कोशिश करिए अगर आप थोड़ा और पहले बो सकते हैं 15 अगस्त से तो और अच्छा है। बाकी आपको बीज दर का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो है लगभग 15-20 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से लीजिएगा। और जो रो टू रो डिस्टेंस रहती है, मतलब दो पंक्तियों के बीच की, उसको 30 सेंटीमीटर रखिए, और पौधे से पौधे की दूरी आप 10 सेंटीमीटर रखिए। क्योंकि जब आप उचित दूरी रखेंगे तो आपका उचित उत्पादन भी मिलेगा और पौधे को सनलाइट हो या न्यूट्रिएंट हो या किसी भी चीज़ का कमी नहीं होगा
0: जी। और सिंचाई और कीट और रोग प्रबंधन भी बता दें
2: मैम। अगर सिंचाई की बात करते हैं तो मोस्टली इसमें इतने दिन में एक या कहीं कहीं पे अगर बारिश वो हो रही है तब तो ठीक है, आप एक इरीगेशन कर दीजिए, वरना आप दूसरा तो वैसे कमी है, क्योंकि 55-60 दिन की सिर्फ फसलें हैं, कुछ कुछ 75 दिन तक का भी जाती हैं
0: जी जी। और इसके अलावा कीट और रोग प्रबंधन की बात
2: मैम, कीट और रोग प्रबंधन की बात करेंगे तो मूंग में यही थोड़ा सा आपको पीला मोज़ेक रोग होता है, जिसमें जो है पत्ती थोड़ी सी सुनहरे रंग की या मतलब हल्की वैसी पीली हो जाती है, उस पे चकत्ते पड़ जाते हैं
0: जी।
2: तो इसके लिए कुछ नहीं है, एक मार्केट से आई है डाई मेथियोट करके है, 30 cc का आता है, उसको 1 लीटर ले लीजिए और 1 हेक्टेयर के हिसाब से आपका जितना भी भूमि है उस हिसाब से उसको पानी में मिला के छिड़किए, या कहीं कहीं पे कोशिश करिए अगर आपको उसकी रेजिस्टेंस वैरायटी आपको आराम से मिल जा रही है तो आप वो लगाइए, वरना फिर यही दवाई से आप काम सारा कर लेंगे। और दूसरा ये है, अगर आपको फसल में सफ़ेद मक्खी आ रही, सफ़ेद मक्खी एक्चुअली उसका शरीर छोटा सा होता है, मुश्किल से 1-2 मिलीमीटर की होती है, सफ़ेद कलर के पंख होते हैं और पाउडर जैसा सफ़ेद उस पर आपको लगेगा कि आटा जैसा वो कीड़े पे लगा हुआ है। ये फसल को काफ़ी नुकसान करती है, जैसे पत्तियों का हो गया, तने का हो गया, इनका सबका जूस सक करना और ईल्ड को गिराना। तो इसके लिए आप ये दोनों उपचार पर्याप्त हैं, डाइमेथियोट 30 cc 1 लीटर हेक्टेयर के हिसाब से डाल दीजिए, या बहुत ज़्यादा अगर थोड़ा और वो करना चाहते हैं, येलो स्टिकी ट्रैप्स आते हैं मार्केट में, आसानी से मिल जाते हैं, चमकीला पीला सा होता है
0: जी।
2: वो लगा देंगे तो आप उससे आपको कि कितना जनसंख्या है, दवाई और बढ़ानी या नहीं बढ़ानी है, बहुत उसमें चिपक के भी समाप्त हो जाएंगे
0: जी। और खरपतवार नियंत्रण सेम ही होगा तीनों में
2: जी? खरपतवार नियंत्रण वही ऑलमोस्ट सेम रहता है, इसमें यह है कि पहला वही 20 दिन पे कर दीजिए और दूसरा वही 40-45 दिन पे अगर निराई गुड़ाई कर रहे हैं, बाकी अगर ज्यादा हो रहा है तो कोशिश करिए वही 1 महीने बाद पेंडीमेथिलीन डाल दीजिए
0: जी। और कटाई किस वक्त करेंगे?
2: कटाई में वही 1.5 महीने बाद, अगर अभी मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल 1 जुलाई को लगा रहे हैं तो आपकी अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक तक का तैयार हो जाएगी, मैक्सिमम ये 75 दिन की फसल है मूंग
0: जी। और बहुत ही प्यारा सा फीडबैक आया हमारे पास में, मैं पढ़ना चाहूँगी। प्रमुख जी लिखते हैं लुधियाना से, विशेषक महोदय जी 2-3 महीने पहले की बात है, FM गोल्ड चैनल पर एक किसान भाई बता रहे थे कि अरहर की कोई खास प्रजाति आई है जिसका पेड़ सरसों के पेड़ के बराबर रहता है और उसका पैदावार साधारण अरहर की तुलना में इस नई वाली प्रजाति में ज़्यादा होगा। सर क्या ऐसी कोई प्रजाति सच में आई है?
2: देखिए प्रजातियां तो ऐसे लैब और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी आती रहती हैं, लेकिन हमारा मुख्य ध्यान रहता है कि जो किसान भाई यूज़ कर रहे हैं या जो किसान डोमेन में है
0: जी।
2: तो रिसर्च तो बहुत पे हो रहा है, मैंने वही जैसे कुछ कुछ वैरायटीज आपको बताई थी कि पंतनगर की हो गई एक दो तीन है, ऐसे नरेंद्र की है एक दो तीन है, या आपके यहाँ PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ से भी संपर्क करके वहाँ से लीजिए तो आपको अच्छा वो मिलेगा। और बाकी ये सब बातें, पौधा इतना होता है, यील्ड इतना होता है, तो वो सब कहने की बातें हैं, उस पे मत जाइए।
0: उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, आप समझदार प्राणियों में से एक हैं, तो यूज टू जो हमारा ज़्यादा होता है हम उस पे फोकस करते हैं, बाकी रिसर्च में कुछ ना कुछ उत्पादन होता ही रहता है। और जब रिसर्च में चीज़ें अभी बनाई ही जा रही हैं तो उसकी मात्रा भी कम ही होती है, बहुत ही लिमिटेड होगा अगर मैं गलत नहीं हूँ। और विजय पाल जी लिखते हैं ललहुआ लखीमपुर खीरी से, भाई ये तो मैं पढ़ के मुस्कुरा रही थी, थैंक यू सो मच, पहले मैं आपको बोल देती हूँ और फिर पढ़ती हूँ। लिखते हैं आकांक्षा बहन जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैंने बोल दिया है नाराज़ हो गई, तो इरफान सर को कार्यक्रम की बागडोर संभालनी पड़ेगी, इसलिए इरफान सर जी के साथ बहन जी को भी याद रखो भाई। थैंक यू सो मच भाई, मैं मजाक करती हूँ, मेरी आदत है हंसने खेलने की, और मैं हंसती खेलती प्यारी सी चिड़िया मान सकते हैं आप, मैं चहचहाती रहती हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल की ओर, और सर आपसे जानना चाहेंगे इरफान जी, आपके जहन में कोई और भी सवाल है?
1: क्योंकि खरीफ का सीजन भी चल रहा है, उसकी बातचीत हो रही है, सर एक सवाल है कि क्या खरीफ की जो फसल है उस पे सरकार द्वारा कोई सब्सिडी का भी वो किया गया है?
2: देखिए आप दलहनी फसलों की बात करेंगे तो आपको बीज आसानी से मिल जाएगा, और बाकी सब्सिडी का अगर बात करें, सब्सिडी मोस्टली आपको वेजिटेबल्स में या फ्लावर प्रोडक्शन में, या जो आप भी जो एलाइड साइंस हैं जैसे फिशरीज है या लाइव स्टॉक है उसमें ज़्यादा आपको मिलेगा। बस इसका ये है बीज आपको टाइमली मिल जाएगा, बाकी सरकार का एक काम था, उन्होंने MSP इनका सबका अच्छा सुनिश्चित किया हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे नॉर्मल किसी भी क्रॉप या सीरियल्स की किसी की 2500 है, किसी की 3000 बहुत ज़्यादा आती है, सरसों 6,000 पे, इनका सबका आप एक एवरेज देखेंगे तो ये सब 8,000 के पार ही हैं, तो सबसे अच्छा बेनिफिट यही है लगाने का कि कम टाइम में अच्छा बेनिफिट लीजिए।
1: सर एक सवाल और है जानना चाहेंगे
2: जी,
1: कि जब भी किसान भाई बहन जब बीज लेना चाह रहे हैं तो वो सर सबसे पहले बीज का जो वो है चुनाव, और वो कहाँ से खरीदे, क्योंकि कभी कभी होता है कि लेते तो हैं बीज लेकिन अक्सर क्या होता है कि बो देते हो, बोने के बाद में उत्पादन कभी कम हो जाता है या कभी कभी दाने मर जाते हैं या उसमें फलत नहीं आता है, तो सर हम चाहेंगे क्या एक संदेश देना चाहते हैं सर?
2: तो उसके लिए यही हमारा संदेश है, सबसे पहले कोशिश करिए आपके ज़िले में, हर ज़िले में एक या दो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, वहाँ पे साइंटिस्ट रहते हैं, आप उनके पास जाएंगे, वो आपको सीड उपलब्ध करा देते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ दूर है या आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो उसके पास अगर कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो आसपास है तो वहाँ कोशिश करें। अगर ये दोनों चीज़ों में नहीं हो पा रहा है तो तीसरा, आप हर ब्लॉक लेवल पे आपको सरकारी बीज भंडार मिलते हैं, उसमें प्रमाणित बीज आते हैं, वहाँ से जाके लीजिए। और बाकी अगर आपको कहीं आप नहीं जा रहे हैं या नहीं मिल रहा, तो फिर प्रॉपर किसी दुकान पे जाइए, और दुकान से भी अगर ले रहे हैं तो कोशिश करिए किसी अच्छे कंपनी का बीज लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना किसान भाई कभी कभी 10-20-50 रुपए बचाने के चक्कर में आगे का पूरा फसल उसी सीड से ही बेकार हो जाता है। तो कोशिश करें सीड अच्छा लें, और कोशिश करें, पहली कोशिश यही रखें कि आप सरकारी जगह से लें, खास करके कृषि विज्ञान केंद्र या सरकारी बीज भंडारों से,
1: तभी उत्पादन अच्छा मिलेगा
2: जी।
0: और हमारे बीच में जुड़ गए हैं मनी शर्मा जी, चूँकि हमें भटपुरवा खुरासा से सुनते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और इन्होंने जी बोला है खाली, अब जी में इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया है ये यही जानते हैं जी। हाँ जी, और साथ में लिखा है प्रमुख कुमार जी ने लुधियाना से, आकांक्षा दीदियाँ हंसती मुस्कुराती रहती हैं, आखिर बेचारी की उम्र ही क्या है, तो आपको बता दें जस्ट अराइव्ड है, मतलब कि अभी जस्ट हम अवतरित हुए हैं धरती पर। थैंक यू सो मच वैसे। और इसी के साथ में भाई कोई आखिरी सवाल अगर आपके जहन में उमड़ रहा है इरफान जी, आप रख सकते हैं
1: जी बिल्कुल, क्योंकि सवाल तो बहुत है और घड़ी कह रही है कि अब इशारा
0: चलने का वक्त हो गया है, क्योंकि हमारे पास में भाई किसानों से संबंधित अभी एक फीडबैक आया हुआ है हमारे देवी जी का, उससे पहले हमारे पास में दो सॉन्ग पेंडिंग पड़े हुए, तो वो भी हमें ट्यून करके ही जाना है।
1: एक मतलब एक सवाल ये है सर कि आज ज्ञानस्थली रेडियो पर सर आप आए और हम लोगों ने दलहनी फसल से संबंधित बातचीत किया
2: जी।
1: सर चलते चलते हमारे किसान भाई बहनों को क्या आह्वान करना चाहते हैं, इस रेडियो ज्ञानस्थली के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं?
2: देखिए अगर हम दलहनी के पहले कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं
1: जी,
2: तो नॉर्मल यही है कि अभी उपयुक्त टाइम है, आप किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल लेट नहीं है, बस मूंग है तो उसका एक टाइम रहता है 15 अगस्त, बाकी अगर आपको अरहर या उड़द लगानी है तो कोशिश करें इसी जुलाई में लगा लें। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है पहला तो बीज की अच्छी जगह से स्रोत से लें, बीज उपचार जरूर करें, बाकी थोड़ा सा मिट्टी का और जगह का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत जगह क्या होता है जैसे अभी एक भाई साहब ने पूछा था कि मेरे यहाँ जल भराव, कोशिश करें जो जल भराव वाली ज़मीनें हैं वो उस पर ना दलहनी फसलें लगाएं, या जो जिनमें पानी भरने का या बारिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है तो कोशिश करें कि प्रॉपर ड्रेनेज या आप वहाँ पर रखें ताकि एक्स्ट्रा एक्सेस पानी वहाँ पर ना लग पाए, वरना कभी कभी जल वो सड़ने लगती हैं जड़ें। बाकी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, मैं जैसे देखता हूँ कि अपना अगर किसानों का मिट्टी परीक्षण नहीं करवाते हैं, वो आसानी से कहीं भी कृषि विज्ञान केंद्र या बहुत सारे प्राइवेट हैं या उसमें करवाएं अपना, ताकि उसके हिसाब से हम उर्वरकों का प्रयोग करें, वरना अपने यहाँ देखें कुछ भी फसल लगा है कुछ नहीं है, यूरिया डाल दो DAP डाल दो, सो इससे थोड़ा सा बचें। और जैव उर्वरकों का भी आने वाले टाइम में अच्छा स्कोप है, कोशिश करें उर्वरकों का कम इस्तेमाल करें, कोशिश करें ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, आप उससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और पैसा भी अच्छा कमाएंगे।
1: जी आपने सर बहुत सही ये चीज़ कहा कि उर्वरक जो है उसकी मात्रा थोड़ा कम करें और जैविक खेती की तरफ जाएं, क्योंकि इसी में खेत बचाओ अभियान जो है वो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उसका उद्देश्य यही कि आप जैविक खेती की तरफ आएं और जब उर्वरक जो है कम डालेंगे तो बीमारियां जो है वो कम होंगी। और एक सुझाव चाहते हैं सभी किसान भाई बहनों से जो हमारे कार्यक्रम इस समय सुन रहे हैं, वो अगर कुछ जानकारी चाह रहे हैं तो चैट रूम बॉक्स में लिखें और हम चाहेंगे कि जल्द ही उस विषय से संबंधित लाएंगे। आप क्या चाहते हैं जानकारी जरूर आप चैट रूम में बताएं।
0: जी आप अपने विषय को साझा कर सकते हैं ताकि इरफान जी आपके विशेषज्ञ तक आपकी बात को पहुंचा सकें और आपको आपकी समस्या का समाधान किया जाए। फिलहाल आज जो हमारे बीच में बतौर एक्सपर्ट थे हमारे प्यारे सर, जिनका कि नाम अब हमें लग रहा है इरफान जी बताएंगे, हम देखना चाहते हैं आपको याद है या नहीं।
1: नहीं नहीं बिल्कुल मैम, देखिए
0: शुभेंदु सिंह जी।
1: जी शुभेंदु सिंह जी
0: जी हमारे बीच में बतौर एक्सपर्ट हैं और ये आए हुए
1: एग्रोनॉमिक
0: जी, और ये आए हुए हैं BHU से बनारस से, और सबसे प्यारी बात तो ये है कि आपकी आवाज़ बड़ी ही प्यारी है। हम जो आवाज़ की दुनिया के लोग होते हैं, हम चाहते हैं हमारी ऐसी भारी भरकम आवाज़ हो, पर मतलब मज़ा आया सुन के आपको, और
1: बड़ी मिठास है।
0: हाँ मिठास भी है, बड़ा ही ठहराव है आवाज़ में, गंभीर आवाज़ है, और आपने हर एक सवाल का बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब किसी ने सवाल पूछा है, और मतलब कम शब्दों में बहुत ही अच्छे से आपने उसको फिनिश किया।
1: और आपको बताना चाहेंगे कि जब हम सर से अपने यहाँ इनवाइट किए सर को रेडियो पर बुलाने के लिए, तो सर से बात किए तो बड़ा अच्छा लगा, सर भी खुश हुए कि चलिए भाई रेडियो ज्ञान असली पर आएंगे, क्योंकि अपना ये देवीपाटन मंडल का पहला रेडियो स्टेशन है जहाँ से खेत खलिहान जाता है और काफी लोग लगातार जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम से।
0: जी जी बेशक बेशक, और जब भाई खेती किसानी की बात होती है तो जुड़ना बनता है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। खेती किसानी करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया हमारा कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरह से आश्रित है ज्यादातर। तो अब चलने का वक्त हो गया है, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंसते खेलते खाते मुस्कुराते रहेंगे और सुनते रहेंगे रेडियो गाना स्टेट 9.6 FM गुंडा शहर की धड़कन। मिलते हैं अगले हफ्ते आपसे आपके अपने इसी कार्यक्रम में, यानी कि गौधुली स्पेशल खेत खलिहान में। शो था आपका यही जो मैंने आपको बताया, और आपके साथ में बतौर होस्ट की भूमिका में थी मैं, यानी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा, को होस्ट थे हमारे इरफान शाह जी, और एक्सपर्ट महोदय तो हमारे शुभेंदु जी जो कि आए हुए थे बनारस की गलियों से। चलते हैं और चलते चलते प्रमुख जी का और प्यारे हमारे धर्मेंद्र जी का नगमा, यानी कि गाना, ये किसानी गीत आप तक चाहते हैं। और मुझे दीजिए शोशे इजाजत, फिर मिलूंगी आपसे जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम है आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
5: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
5: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
7: गोंडा शहर की धड़कन।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
8: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
9: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
8: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
9: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
10: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
11: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
11: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
11: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
12: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ। कोई आइडिया है?
13: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
12: सच में? क्या खास है वहाँ?
13: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
12: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
13: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
12: और फोटोग्राफी वगैरह?
13: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
12: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
13: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
12: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

जब कोई कहे कि दिलवा में करार कब आवेला, जब कोई कहे कि दिलवा में करार कब आवेला, हर केहू के जुबान पे सिर्फ एक के नाम आवेला। शुभ संध्या सबन के, नाम है आप सबन के आपन फेवरेट शो गोंडा मैसेज मसाला, आरजे बीना वाला और वो भी बृहस्पतवार के भोजपुरिया वाला। तो सबका आज के भोजपुरिया वाली शाम में स्वागत है। और जैसे कि आप सबका पता है कि आज मौसम तो अनुकूल है ये है, लेकिन आज बहुत सारी बात होने वाली है आप सबन के संग, ना सिर्फ अपने मतलब हाल चाल के बारे में, बल्कि आज अपने मतलब भाषा से जुड़ी मतलब कहते ना कि पुराने ज़माने के जो धूल है ओका हटावे के समय आ चुका है, और एक दूसरे से फिर से दिल मिलावे के समय आ चुका है। तो सबन के स्वागत है, और बताएं कि सबन रउआ के का हाल है। और जैसे कि आप सबन का पता है कि आरजे बीना के संग हर शाम होती दिलचस्प, तो आज वाली शाम काहे रही पीछे।

0: तो आज आप सबका बताए दी कि आज के संध्या ना सिर्फ संध्या है बल्कि आप सभी के लिए एक शुरुआत है। काहे कि कहा थे कि अगर आप क्यों दूसरे के दुख मां दुखी हो जात हो तो ये समझें कि आपके अंदर भावनात्मक जुड़ाव शुरू हो चुका है। लेकिन अगर आप हर वक्त दूसरे के दुखे सुन सुन के दुखी हो तो कहूँ ना कहूँ आपके जीवन में भी दुख के पराकाष्ठा शुरू हो जाए। तो हमारे साथ जुड़ के अपने और आसपास के सभी दुखी मन इनका मुस्कुरावे के मौका दिए और हाँ खास तौर पर बृहस्पतिवार का भोजपुरिया शाम में जरूर जुड़े के प्रयास करें। तो सबके शुरुआत सबसे पहले आप सबके हालचाल के साथ हो चाहिए तो रवा लोगन के का हालचाल है और एगो खत लिखे के मौका मांगत है इन एक ये जो उनका था ना दुनिया के भाग दौड़ है हमारे सबके भाग दौड़ है एक मिनट के टाइम नहीं है केहू का मैसेज करे के केहू से बात करे के तो वह भाग दौड़ में अगर एगो मौका मिल जाए एगो शाम मिल जाए जब हम सब एक दूसरे के लिए मतलब जैसे खासा मतलब हमारे सबके जुड़ाव है जैसे हमारा आपसे है तो हम आपका अगर खत लिखा जाए तो हमारे खत में का लिखा हुई तो हम एक खत लिखब जमा लिखब हम कि मांगब रब से जब मोहब्बत हम तब उन मोहब्बतन माँ मुसीबत के पहाड़ हटाए देव बड़े चाव से जब उगाइब हम इश्क के फूल उबाग का उजड़े से बजाए देव मांगब यार से जब निशानी कोनो तब ओकर गम पूरे जीवन के लिए बहाए देव सालन तक सोच के केहू का संदेश भेजन हम सालन तक सोच सोच के हम केहू का संदेश भेजन लेकिन एक खत लिख के फिर उ खत मिटाए देव हम एक खत लिख के फिर एक खत मिटाए देव हम। तो सबन के स्वागत है ई अवध के गोंडा शहर के आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन पर ज्ञान सिटी 9.6 FM ई है गोंडा शहर के धड़कन। अवधि के जो रंग है वो हमारे सबके भाषा में तो मिलते हैं लेकिन हमारे सबके जो उन भावनात्मक जुड़ाव है वह मिलत है। अभी भी हमारे सबके क्षेत्र माँ हमारे सबके यूपी माँ हमारे सबके बिहार माँ हमारे सबके पूरे मतलब कहा जाता है ना कि एगो जो उनका था ना भावनात्मक जुड़ाव चाहे कि वो अमरीका का है ना बैठा हो लेकिन वो जो भावनात्मक जुड़ाव है अपने भाषा से अपने संस्कृति से वो हमेशा बना रहा था। तो चलिए अब शुरुआत की जाए भावनात्मक जुड़ाव के इस संगीत के सगे
1: जाने कैसन जादू कैलू ए बोला जाने कैसन जादू कैलू मंत्र दिलू मार

सबके स्वागत है और इस सुरीली सी शाम माँ आज आप सबके पसंदीदा गीत लेके हम उपस्थित हैं। ज़्यादातर गीत का आवाज़ लता जी और आशा जी दीन है और ये ना सिर्फ गीत है बल्कि ये एहसास है जोन की हमारे सबके संस्कृति काम बॉलीवुड से जुड़े के काम के हिसरा। तो चलो वापस से सबसे पहले बात करी थे कुछ कहावत से जोन कहावत हमारे सबके मतलब अवध में बहुत फेमस रही, लेकिन आज धीरे धीरे जोन कहा थे ना कि चाहे पश्चिमी संस्कृति होए चाहे अंग्रेजी भाषा होए सब हमारे सबके भाषा का कहूँ ना कहूँ एकदम मिटावे के काम कर देने। वैसे सब कहा थे कि जैसे जोन भाषा भी होए लेकिन अगर मातृभाषा में कुछ भी सिखावा पढ़ावा जाए तो बड़े आसानी से सीखा जा सकता है, लेकिन का किया जाए हमारे सबके यहाँ तो भाषा के तो मिटावे के काम शुरू हो चुका है। लेकिन अभी आपके आरजे बीना और आप सब बिल्कुल तैयार है अपने भाषा में फिर से रंगे के लिए। कहा थे कि अरहरी के टाटी माँ गुजराती ताला, ये बड़ी कहे सुने वाली कहावत रही जेकर मतलब होता है कि कोनो मामूली वस्तु माँ कोनो बहुत बड़ा मतलब कहा जाता है ना कि रहस्य छुपाए वाली बात करब, जैसे कि केहू के घर माँ या मतलब केहू के पास बतावे के लिए ये है कि हमारे घर में आज चाय माँ ताज चाय पत्ती पड़ी, लेकिन एक बड़ा मतलब बढ़ाए चढ़ाए के बतावे वाला काम जब होता है तब वो जगह यह कहावत बोली जाती कि अरहरी के टाटी माँ गुजराती ताला। अब आप सब बताएं कि आप सभी कहावत अपने दादी पर दादी से सुने हो कि नहीं। अस जोड़ा से निगोड़ा भला ये तो हम बहुत बार अपने दादी से सुने हैं। बेमेल जोड़ा से बिना जोड़े के रहना ठीक है, एकर मतलब ये है। तो अस जोड़ा से निगोड़ा भला मतलब कहा था ना कि जोने चीज़ी के मेल ना होए उका मिलाए के मतलब कहा जाता है कि जोड़ी खराब करे से अच्छा है कि जोड़ी नवे बने तो ठीक है। शुभ संध्या आशु जी, सविता शास्त्री जी, धर्मेंद्र मोहन जी, मुश्तफा जी और कमल नयन और यासीन सबके स्वागत है आपके अपने शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना भोजपुरिया स्टाइल में। तो आगे बात करी कि अस जोड़ा से निगोड़ा भला के बाद हम बात करी थे अंधा धुन दरबार माँ गधा पंजीरी खाए। हाँ हाँ ई वाला तो हम अपने नानी के घर हमारे नाना बहुत बोलत रहे कि अंधा धुन दरबार माँ गधा पंजीरी खाए, जहाँ नियम कानून या मुखिया ना होए बस मूर्ख या अयोग्य इंसान लोग मलाई खाए। और कई बार हमें तो बड़ा अपने मतलब कहा था ना कि शासन व्यवस्था में ये चीज़ देखे का मिला थी, कई बार आप सब भी महसूस किए होंगे कि मतलब हमारे सबके शासन चलाए वाले कुछ ऐसे मंत्री या ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें मतलब उस क्षेत्र के बारे में जानकारी भी नहीं होती लेकिन उन्हें वो डिपार्टमेंट दे दिन जात है मूल रूप से। तो हम तो ये कही थे कि अगर कोई केहू का कोई काम दिया जाए, जैसे कि घर के एक औरत है जे खाना बनाने में बड़ी निपुण है, अगर उसका खाता के काम दीन जाए तो कैसे करी। तो जे इंसान जोने चीज़ में निपुण होए उसका वह काम दिए के चाहिए। चलिए आगे बात किया जाए। आज के शाम बड़ी खूबसूरत होने वाली है और एक कप चाय तो हम पिए शुरू कर दी, कहा कि आशु जी मेरे लिए चाय भेज दी हैं। चिरई के जान जाए और लड़का के खिलौना मतलब अगर केहू के नुकसान हो तो होए लेकिन हमका अगर कोनो चीज़ से मनोरंजन मिलत है तो मिले, मतलब ये तो वह वाला हाल हो गया कि मतलब सामने वाले के प्राण निकलत है और हमें सबका वो एंटरटेनमेंट लागत है। तो

प्रतिकूल ना होए ओका हर जगह कठिनाई के सामना करे के पड़त है। तो यही से सब कहते हैं जहाँ जाए लूला रानी वहाँ पड़े पाथर पानी कि क्योंकि उनकी किस्मत खराब होती अगर वो अच्छा भी करा चाहे ना तो उकरे साथे बेकार हो जाते हैं और फिर सब यह कहावत कह के ओका चढ़ावे लागत हैं। फिलहाल हमें तो ये पता है कि केहू का ई कहे से अच्छा है कि ओका तनी शांत बना दिए। अगर ऐसन कह के हम सब केहू का मतलब परेशान करब तो सामने वाला कही कि यहाँ हम परेशान हुई थे इन्हें सबका मजा आवत है। तो ई बिल्कुल भी नहीं करेगा चाहिए, ठीक है। तो एगो हमारे सबके लिसनर हैं और साथ ही बहुत अच्छा लिखत हैं, दीपक वर्मा उनके नाम है, लिखत हैं कुछ अवधि पंक्ति कि दौके नाम पर लूट ले भैया तोहरे सबका छूट बा भैया, ई बेईमानी ई घुसखोरी और ई सब कौन जमाना भैया। हमर सबके जिंदगी तो बड़ी मजबूरी से चलत है, अमीर कै कहाँ भक्ति मा मन लागत है। आज अशिक्षा बेरोजगारी ठेल ठेल गए, अब जनता पैया धान पछोरी, का हुई ई दुनिया मा का हुई ई लुटखोरी। बहुत अच्छा लिखे हैं, अपन व्यथा व्यक्त करते हैं ई पंक्ति के माध्यम से। कहा थे कि आए दिन हम सब मतलब परेशान रही थे लेकिन हमारे सबके सरकारन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल देखा सरकारन का फ़र्क पड़ता है कि नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि अगर आप कोनो रास्ता पे चले कोशिश कर दियो तो मंजिल एक ना एक दिन तो ज़रूर मिली। तो भाई सबसे जो ज़रूरी काम है वो है चलब, रुके के नहीं है, बस चले खे चले खे चले खे और चलते ही जाए खे। तो चला कुछ शब्द भी बताई हम अपने अवधि शब्द कोश से लाए हैं आप सबके लिए, जैसे कि हर बार कुछ ना कुछ शब्द लेके आई थी। तो आज के शब्द जो है बड़ा प्रसिद्ध है, जो उनकी हम सब अक्सर यूज करी थे मतलब अवधि भाषा में, बैल का अवधि भाषा में बर्धा कहा जाता है, ठीक है। एक बाद आप सबन का पता है बंदर का वानर कहा जाता है और कुछ नेवला का नेऊर कहा जाता है। तो ये सब मतलब ऐसन ऐसन जो शब्दावली है जो हमारे सबके भाषा के खूबसूरती बढ़ावा थी। हाँ सुने में थोड़ा बहुत अटपटा जरूर लागत है लेकिन सबके भाषा सबका अटपटी लगी। भाई पहली बार अंग्रेजी सुने के बाद में भी हमें सबका बहुत हंसी आए हुई। तो इसे हर भाषा के अपना अपन रूप है, हमें सबका बस समाहित करे के ज़रूरत है, ठीक है। तो हम समझी रहे हम समझ रहे थे 100 ग्राम हद से ज़्यादा एक पाँव बढ़ी, एक दीद बढ़ी है नामुमकिन और इबारिश गर्मी कै मार बढ़ी। मतलब बारिश के बाद भी गर्मी महसूस करते हैं हमारे श्रोता लोग, यहीं से लिख के भेजे हैं कि अब जो न शब्दकोश है उमन दूसरे शब्द के बारी आ चुकी है। फिलहाल हमें तो ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती लेकिन हाँ एक दो दिन में महसूस हुई तो बाद में आपका बताई। हाँ बाल का हमारे सबके अवधि भाषा में बार कहा जाता है और बताइए आप सबका का कहा जाता है हमारे सबके शब्द कोश के बाद कहा जाए। तो गले का गटई कहा जाता है, आप सब सुने ना गटई के गटई में दर्द होता है, क्यों ना सुने हुए तेका बता दिए। और सिर का हमारे सबके अवधि भाषा में मूड़ कहा जाता है। और कोई ऐसा है जेका ना पता हो जल्दी से हमें लिख के भेजे कि आर्जमीना एकर मतलब का होते या एका का कहा जाता है, हम आपका सोच समझ के ज़रूर बतेबे। तो चलिए आगे और बात कीन जाए कि आज ई भाषा आप सबका कहाँ कहाँ ले जाए वाली है। केहू कहत है खाए के दाना ना मिलत, केहू शिकायत है ठिकाना ना मिलत, यही दौर के रफीक हैं, यही दौर से रफीक हैं, हमहू का शिकायत है, दिल लेहे घूमित है निशाना ना मिलत। रफीक सादानी जी बहुत बढ़िया लेखक रहे जेका अवधि भाषा के लेखनी में बहुत मतलब चर्चा मिली और उनके बारे में आज आपका बतावे के सूचित है। तो बिल्कुल हमारे साथ बना रही हैं और रफीक सादानी के बारे में जाने के लिए बिल्कुल तैयार रही हैं। तो अभी जो ने कहा था ना कि
जो उन गाना के जो न आपका धीमी धीमी आवाज़ सुनाई दी थी, ये गाना ना सिर्फ एगो गाना है बल्कि ये दौर है जो हम आपके सामने उपस्थित करके मतलब लेके आए हैं, आपके सबके प्रस्तुति के लिए लेके आए हैं, जो 1980 से लेके अब तक के लिए जो एगो कहा था।

कि उपहार है। 1980 के दौर में आए वाले ऊ गीत हैं जेका सुने के बाद माँ आपके कलेजा का सिर्फ ठंडक पहुंची और आपका कोनो भी प्रकार के शर्मिंदगी तो अपने भाषा से ना हुई।

वैसे शादी के सीजन चलत है और जेका जेका अभी अपन डोली मंगवावक है वो अपने लिए ये गाना डेडिकेट कर सकत है। और लिखत है आशु जी की, मत फेंक पत्थर पानी माँ उहू के केहू पियेला, मत रहा उदास जिंदगी माँ तोहरा के देख के केहू जियेला, दर्द के दर्द बढ़ावल न जाला, दीप जला के बुझावल न जाला, प्रेम कितनो बढ़ी पर बेगाना न होई, दिल लगा के दिल हटावल न जाला। का बात है आशु जी, मजा आएगा।

आज के गीतन के श्रृंखला ना सिर्फ आप सबके लिए एगो ताज्जुब करे वाली चीज़ है, बल्कि आपका ई समझे की ज़रूरत है कि भाई गाना अगर आपके प्लेलिस्ट में ना आए हैं तो ये गाना आपके प्लेलिस्ट में हो जाए चाहिए। तो चलिए अब बात करे वाली है ना हम आपके सबके साथ आपके पसंदीदा कवि के बारे में, जे कि हिंदी और अवधी भाषा में आप पर अलगे पहचान बनाए रहे। तो चला रफीक जी के बारे में आप सबका बताई कि जे ना सिर्फ कवि रहे बल्कि हमारे सबके लिए एगो विरासत छोड़ के गए अपने भाषा में। तो चलिए सबसे पहले इनके बारे में जाना जाए, कहाँ से रहे, का लिखिन, कैसे लिखिन और कैसे इनके जीवन के शुरुआत इतनी खूबसूरत है। तो सबसे पहले आपका बताए दी कि इनके जन्म भवा बर्मा माँ यानी कि म्यांमार माँ और मार्च 1934 माँ ये दुनिया में आए और फरवरी 2010 माँ ये दुनिया छोड़ के चला गए। और आप सबका बताए कि इनके जो उन लेखनी है उमा बड़ी खास बात थी, वे अपने नहीं पूरे दुनिया के लिए लिखे। उनके ये बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है कि पाखंडी रहे छाव माँ घामे माँ जरी हम जलपान करे नेता भुगतान करी हम भारत में कैसन है दुर्भाग्य तनी देखी गेहूं का धरे दिल्ली भूसा का धरी हम गेहूं का धरे दिल्ली और भूसा का धरी हम। आप सब बताएं कि इनके पंक्तियां सुने के बाद में आपके मन में का ख्याल आवा, का ये अपने बारे में लिखी नहीं या फिर इनके लिखे के सिर्फ और सिर्फ जरिया इस समाज रहा। तो चलिए इनके बारे में और जाना जाए, इनका पढ़ा जाए, समझा जाए। तो सबसे पहले इनके बारे में जब जाने के बाद आवा थी तो इनके लेखनी का समझे की जरूरत है। तो यह अवधि में लिखिनी कुपंथी औलाद आतंकवाद हेलमेट ओफ फोफ मोबाइल के चक्कर में जितना चिल्लात है उतना चुटान थोड़ी है जेउ बहादुर खुददारी शिकायत उल्लू हो नेता लोगे घूमे लागे खुनवा तो हम लियन लेब जिंदगी ना उ ज्ञानी ना उ ध्यानी। तो ये उनके बड़ी बड़ी लेखनी है। तो जेमा मसे जो न बहुत प्रसिद्ध है वो आप सभी सुने हो वो तू जितना समझत हो उतना महान थोड़ी है खान तो लिखत है लेकिन पठान थोड़ी है मार मार के हमसे बयान करवाईस ईमानदारी से हमारा बयान थोड़ी है देखो आबादी माँ तो चीन का पिछाड़ देश हमारे देश के किसान मरियल थोड़ी है हम ही मानित है कि मोहब्बत माँ चोट खाईस है हम ही मानित है कि मोहब्बत माँ चोट खाईस है लेकिन जितना चिल्लात है उतना चटान थोड़ी है ऊ छत पे खेल रही फुलझड़ी पटाखा से ऊ छत पे खेलत है खड़ी फुलझड़ी पटाखा से हमारे छप्पर के ओर उकर ध्यान थोड़ी है चुनाव आवत है देख परे नेताजी अरे भाई चुनाव आवत है देख परे नेताजी तोहरे वादे का जनता भुलान थोड़ी है रफीक मेकअप और मेहंदी के ही कमाल है सब रफीक मेकअप और मेहंदी के ही कमाल है सब तू जितना समझत हो उतना जवान थोड़ी है। ये वाला तो भाई बड़ा खतरनाक रह के पढ़े के बाद माँ अच्छे अच्छन के हालत ख़राब हो जाए। और फिलहाल बड़ा अच्छा रहा और एक टू और इनके लिखा बड़ा मतलब मस्त से कविता है जिन्हें का पढ़े के बाद माँ मतलब मज़ा आई जाता है। तो आप सब इनका मज़ा आई सुने के बाद माँ पढ़े के बाद माँ जब आप रफीक जी का पढ़ा जाए। तो फिलहाल तो हम यह कहा कि आप सबका अगर मौका मिले तो इन्हें ज़रूर पढ़िए और इनके लेखनी ना सिर्फ लेखनी रही बल्कि एक समाज का परिवर्तन दिए वाली लेखनी रही। कहते हैं जिंदगी के मतलब रफीक का कहते हैं कि कभू ठंडी तो कभू गर्मी जिंदगी कभू ठंडी तो कभू गर्म जिंदगी एक गंजेड़ी के जैसे चिलम जिंदगी
ध्यान से सुनी है कि अगर आपका जिंदगी के परिभाषा में अभी भी कोनो डाउट है, कोनो दुविधा है, कोनो परेशानी है, तो चल ही ये बात जरूर सुनी है कि जिंदगी के असली मतलब रफीक जी का कहा था। ध्यान से सुनी कि कभो ठंडी तो कभो गर्म जिंदगी, कभो एक गंजेड़ी के जैसन चिलम जिंदगी, और का कही ऐसा पावा है हम जिंदगी, का कही ऐसा पावा है हम जिंदगी, बिन स्याही के जैसे कलम जिंदगी, का कही ऐसा पावा है हम जिंदगी कि बिन स्याही के जैसे कलम जिंदगी, दिल के चक्कर मा अस छिछला देर भाई, कि दिल के चक्कर मा अस छिछला देर भाई, कि हाय सत्यम शिवम सुंदरम है जिंदगी, हाय सत्यम शिवम सुंदरम है जिंदगी। हम ही जानें कि अब दुख से फुर्सत मिली, अब हम ही जानें कि दुख से फुर्सत मिली, दो घड़ी हंसे के बाद बेधर्म है जिंदगी, दो घड़ी हंसे के बाद बेधर्म है जिंदगी, और कभो ठंडी तो कभी गर्म है जिंदगी। अब बताएं कि आपका जिंदगी के ये परिभाषा अच्छी लाग कि नहीं। ठीक है, हमें तो भाई इनके लेखे के जो अंदाज है, लेखनी जो है, हमें बड़ी पसंद आए, और अगर आप सबका भी पसंद है तो आप भी पढ़े के ज़रूर प्रयास करिए। ना एक मुद्दे पर, बहुत मुद्दे पे ये लिखी नहीं, और ना सिर्फ लिखी नहीं बल्कि अपन पहचान भी बनाई नहीं। इनके अवधि बानी इतनी खूबसूरत रही कि अवधि के बात होए और उनका नाम ना आवे ऐसा हो नहीं सकत। अवध क्षेत्र के गंगा जमुनी तहजीब से के जो मसीहा के काम करते रहे रफीक सादानी, बिना कोनो स्कूली पढ़ाई किए रफीक अवधि जो भाषा है ओकर पायदान से जो आपन पहचान बनाई नहीं, वो बड़े बड़े लिखे वाले सोचा करें। इनके वालिद के बात करी तो इनके इत्र के कारोबार रहा, अगर रफीक के पिताजी के बात की जाए तो उनके इत्र के कारोबार रहा, और दूसरे विश्व युद्ध में उनके कुल कारोबार तहस नहस हो गए। इनके वालिद के हुआ से पलायन हो गए बर्मा से, और बर्मा छोड़ के वे हुआ से परदेस आए गए, और परदेस में कोनो परदेस आए, फैजाबाद आए गए। तो फैजाबाद आए एक रहा तो अवधि भाषा का तो सीखे नहीं का रहा, और ही ऐसे रफीक के मन में अवधि के लिए बड़ी मतलब इज्जत शुरू हो गए। ये बड़े अचरज के बात है कि दुनिया के जो व्यंग और हंसी लुटावे वाले रफीक खुद बड़ा मुफलिसी और झंझटन माँ जिंदगी गुजारें, मतलब दुनिया का हंसावे के मौका दिए वाले खुद इतना परेशान रहे कि अगर वह हंसे के सोचे भी तो उन्हें हंसी कबू नहीं आवत रही। एक अंदाज़ा लगाए के लिए अगर आप उनके बारे में पढ़ें तो आपका पता चली कि उनके जिंदगी में कितना दुख रहा, संघर्ष उनके बचपन से लिखा रहा। फिलहाल अपने मजबूरी का वे अपन ताकत बनाइन, और दुनिया का हंसावे वाले एक ऐसा आवाज बन के दुनिया में आइन कि जेका कोई भी भुलाए नहीं सका। 2010 माँ उनके एक दुर्घटना में मृत्यु हो गए, और वही दुनिया का अलविदा कह दिन। यही के साथ एगो कविता उनके और प्रसिद्ध भरी, जियो बहादुर खद्दर धारी, जियो बहादुर खद्दर धारी, लुटा देश को बारी बारी, देश माँ महंगाई बेकारी, नफरत के फैली बेमानी बीमारी, दुखी है जान जनता बेचारी, बिका जात है लोटा धारी, जियो बहादुर खद्दर धारी। तो इसे इसे कह के इनके बड़ी सारी, उल्लू हो तुम चाहत हो भाईचारा, उल्लू हो देखो लगायो दिन माँ सारा, उल्लू हो, ऐसे के एक कविता है उल्लू हो जे बड़ी प्रसिद्ध है। तो ये सब लिखे के बाद अगर ऊ चीज़ के बाद हमारे सबके सामने ना हुए, अगर उका चर्चा ना की जाए तो ऊ चीज़ मिट जाए। तो अब देखा जाए, बस समय हो चुका है आप सबके फरमाइशन के भी, लेकिन उससे पहले एक गाना और हमारे पसंद के आप सब सुन लें, फिर बताएं कि आप सबका पुराना गाना पसंद है कि नहीं।

तो ये सुरीली सी शाम माँ आप सब हमारे साथ जुड़ा हो, लेकिन एक गाना और है जो न हम आज आप सबका सुनावे के तो सोचे ना, लेकिन अभी तक सुनाए नहीं पाए। लेकिन ये गाना सुने के बाद माँ आप सबके जो है ना दिल एकदम जाग उठी, कहे कि ये गाना हमारा बहुत ही पसंदीदा गाना है। आप अगर सुने हुई हैं ये वाला गाना, वैसे तो पुराना गाना भी है लेकिन एकर नया वर्जन है, लेकिन पुराने अंदाज में है, तो सुने के बाद में आपको बहुत अच्छा लगी। आप शायद सुने हुई हैं कि सारी सारी रतिया जगावे कोयल तोरी बरहन बोलिया। तो चलिए सुन के बताएं ये गाना आपका कैसा लगा था।

सारी सारी रतिया सतावे कोयल तोरी बिरहिन बोलिया। तो बारह बंकी माँ होत है बरसात, तो बरसात वाला गाना सुने के तो मन है, लेकिन उससे पहले जो फरमाइश है ओका सुन ली जाए। फरमाइश है बबीता जी के, दिनवा में चंदा ओ हो, दिनवा में चंदा देखे का मन कहे, तो ये गाना सुन ली है बबीता जी की फरमाइश के। और ये गाना के बाद हम सब सुनी है अमित के फरमाइश के गाना जोन है बरसात स्पेशल।

वक्त लखनऊ में भी बारिश होत है कल से, गोंडा शहर में भी बारिश होत है कल से, और अच्छा मौसम है फिलहाल। चली अगला गाना सुने के बारी है, जो बारिश स्पेशल है, जो हमारे सबके अमित के फरमाइश है। चली सुनी और बताएं कैसा नहीं गाना। वैसे गाना का अगर आप सब रेटिंग दे हैं, यानी कि 5 मां कितना स्टार दे हैं, तो पता चले कि गोन गाना कितना अच्छा है। तो हमारे तरफ से अभी तक के सब गाना का 5-5 स्टार।

बदरवा बरस मत इतना। और अब अगले गाना के बारी है, जोन की फरमाइश है मुशीब जी के, और रवा सुनत है हमें मुस्तफा जी के, मुस्तफा जी सुनत है हमें तो का सऊदी से, तो चला सुना जाएंगे फरमाइश के गाना हम हई पिया जी के पातर तेरी। वाह आहा क्या बात है।

0: रुक जा बेटा रुक जा, ई गांव छोड़ के ना जा।
1: हमारा के मत रोकी बाबूजी, हमारा के मत रोकी। भूख और प्यास के सिवा ई गांव ई माटी में का रखलवा।
0: ऐसा कह के बेटा ई गांव ई माटी का घारी मत दा। यही गांव के माटी से हम तोरा के पलनी पोसनी इतना बड़ा कैली कि तू हमार सहारा बनबा और तू ही हमके छोड़ के जाता हुआ।

सो फिलहाल अभी आप सब सुना तो अनुष्का के फरमाइश के गाना, श्रावस्ती से अनुष्का के फरमाइश के गाना है।

तो चलिए अगला गाना सुने के बारी है। जोन गाना है हमारे सबके आशु जी के फरमाइश के, और आज बड़े अच्छे अच्छे गाने सुने के मतलब मौका मिला है। और भैनी हम बावरिया आशु जी के फरमाइश के। शुभ संध्या इम्तियाज जी, शुभ संध्या मुश्तफा जी, सबका शुभ संध्या और स्वागत है। और अपने फरमाइश भोजपुरी फरमाइश के लिए बिल्कुल तैयार रही हैं।

तो फिलहाल वापस आए गए हम आप सबके पास, आप सबके फरमाइश बजावे। और देखा जैसन कि आप सबका पता है कि आज भोजपुरी फरमाइश, और जब फरमाइश बजत है ना तो समय के पता नहीं चलता। और देखा देखा कब 7:25 और 34 सेकेंड और 35 सेकेंड भी हो गए हैं, पता नहीं चला। लेकिन क्या करा जाए, ई जोन घड़ी है अपने दिशा में चलती। फिलहाल हम सब कोई भी दिशा में जाई, लेकिन बटोहिया जोन है ओका तो वक्त के दिशा में चले का पड़ी। तो चला सुना जाए गाना नीना के फरमाइश के, कोने दिशा में लेके चला रे बटोहिया।

अब बारी है अगला गाना के, जोन की जन्मदिन पे खास सुने के मतलब फरमाइश है, वो है मोहिनी जी का। मोहिनी सुना चाहती जन्मदिन स्पेशल सॉन्ग, तो हिंद के सितारा से बेहतर कौन गाना हो सकता है। तो चला सबका दुआ दिया कि सब हिंद के सितारा बने और बड़ा हो के एकदम।

सॉन्ग गाना है भाई हमरे सबके इम्तियाज अहमद जी के फरमाइश के गाना है, चला सुना जाए। बहुत प्यारा गाना है पवन सिंह के और पायल देव के आवाज में, सुन के बताइए कैसा।

सुनिशा, आपके फरमाइश के गाना ना मिलने की वजह से आपके लिए ये गाना प्ले किन गए है। सखीरे हम बर पा गई नहीं, आपके लिए स्पेशल सुनी है अपने पसंद के गाना। दीपक जी, गुड इवनिंग, का हाल है रुआ? और बहुत दिन के

0: टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
1: और फोटोग्राफी वगैरह?
0: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
1: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
0: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
1: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियो।
2: ना जाने दिल विच की आया।
3: सो नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी इश्क फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को अभी तक नहीं खोली है, किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना, आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल आ चुकी है। सो फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्ले लिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत क्यों, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके और ये आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। सो क्या हाल चाल है गोंडा और क्या हाल चाल है इंडिया, मुझे जरूर बताना चैट बॉक्स में। इंजॉय कर लेते हैं फिलहाल ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा।

शंकर सिंह और अलका याग्निक की आवाज में ऐश्वर्या राय और अनिल कपूर का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमने एंजॉय किया है दोस्तों, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की फरमाइश पर। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। प्रमुख कुमार लुधियाना से, आशा मिश्रा जी लखनऊ से, मुस्तफ़ा साउदी से, सुरेंद्र यादव गारा चौकी से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, मालवे नगर से राजेश सिंह जी, अनुष्का श्रावस्ती से, जुगल किशोर वर्मा जी आई मीन जग्गू दादाजी एमपी से आपका फिर से स्वागत है, शशि सिंह जी गोंडा से, नीना गोंडा से आपका भी स्वागत है, मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, मोहम्मद मुशीब बाराबंकी से, लवली सिंह गोंडा से और राही नवाबों के शहर लखनऊ से आपका भी स्वागत और इस्तकबाल है आपके अपने फरमाइशी महफिल में। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। प्रमुख कुमार को लुधियाना से सुनना है गाना माँ मुझे दर्शन दे। सो फरमाइशी की महफिल में प्रारंभ करते हैं पहले पहले पहले वाले फरमाइश का, और अगर पहली फरमाइश माता रानी की होगी तो माता रानी की कृपा से भाई हमारी महफिल में तो आज फुलझड़ी ही गिरने वाली है। फूलों की बरसात होगी, खुशबुओं की बरसात होगी, खुशियों की बरसात होगी। सो तैयार हो जाइए आप सभी अपने अपने फरमाइशी गीतों के साथ में। एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो राजू कश्यप फ्रॉम गोंडा, स्टे ट्यून्ड। सो एंजॉय करते हैं प्रमुख कुमार की फरमाइश। सो देरी किसकी है, देरी किस बात की है, अपनी फरमाइशी की गठरी में से खोलिए बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, बहुत ही प्यारा सा जज्बात टटोलिए आज के मूड के हिसाब से, और अभी भी आप अपने चैट बॉक्स में अपने फरमाइशी गीत को ऐड कर सकते हैं। हाई स्टे ट्यून्ड।

अपने चरणों का दास बना ले माँ तो मुझे दर्शन दे। हमने एंजॉय किया है ये डिवोशनल सॉन्ग सोनू निगम की आवाज में प्रमुख कुमार की फरमाइश पर, जो कि है लुधियाना से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और दोस्त तो दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि अगली फरमाइश हमारे पास में है लखनऊ से। और लखनऊ से आशु मिश्रा जी को सुनना है गाना ताल से ताल मिला। सो ओह माय गॉड, हम एंजॉय करने जा रहे हैं सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा यार रहमान अलका याग्निक उदित नारायण का नगमा ताल मूवी का, सिर्फ और सिर्फ हमारी आशु जी की फरमाइश पर, जो कि है लखनऊ से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो निशा फ्रॉम पटेल नगर गोंडा। स्टे ट्यून्ड। इस गाने से जुड़ी हुई मेरी बचपन की एक याद है, आप लोग की भी कुछ यादें खट्टी मीठी तो जरूर होंगी। आप चाहें तो चैट बॉक्स में

आशु मिश्रा जी। सो लखनऊ से आई थी ये बहुत ही रोमांटिक सी फरमाइश हमारी आशु जी की तरफ से। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। एंड दोस्तों यू नो व्हाट, अगली फरमाइश भी है ओएमजी वाले गाने की। अगली फरमाइश हमारे पास में है मुस्तफा जी की सऊदी से, और सऊदी से मुस्तफा को सुनना है गाना बरसात मूवी का आजा आजा। सो एंजॉय करते हैं बॉबी देओल और प्रियंका चोपड़ा का ये नगमा अलका याग्निक की बहुत ही खूबसूरत सी और आवाज में, और ये गाना है एकदम एकदम एकदम सदाबहार। आहा, स्टे ट्यून्ड।

से हमने एंजॉय किया है, हाउ रोमांटिक वाला नग मनाओ, लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में फिर से सुपर डुपर हिट गाने की। जी हाँ दोस्तों, अगली फरमाइश है सुरेंद्र यादव की गौरा चौकी से। सुरेंद्र यादव को गौरा चौकी से सुनना है सुपर डुपर हिट रोमांटिक वाला लव डब वाला सॉन्ग, एक जवानी तेरी एक जवानी मेरी।

हमने एंजॉय किया है ये सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा हमारे सुरेंद्र जी की फरमाइश पे जो की है गौरा चौकी से। और मैंने पूछा था कि आप चाहें तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आखिर ये किसकी है आवाज। तो शशि सिंह जी का एकदम करेक्ट कहना है कि आवाज हल्का याग्निक और कुमार सानू की। एकदम सही जवाब, तालियां तो बनती है ना दोस्तों। तो चैट बॉक्स में तालियां जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है किसकी, आखिर किसकी? जग्गू दादा की। और जग्गू दादा को एमपी से सुनना है गाना बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा एक बार फिर से, लेकिन इस बार जग्गू दादा की फरमाइश पर, एमपी के जग्गू दादा की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो राहुल कुमार विशाल बेदर्दी स्टेट यून इन योर शो। नाम में बेदर्दी है तो वैसे कितने बेदर्दी होंगे ना।

मुझे देखती है। जॉय क्या है ये नगमा, बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। सो दोस्तों, ये फरमाइश तो हमारे पास में आई हुई थी जग्गू दादा की तरफ से, जुगल किशोर और मजी की तरफ से, जो कि हैं एमपी से। और अगली फरमाइश हमारे पास में है निशा की, पटेल नगर गोंडा से। एंजॉय करेंगे अगली फरमाइश। अरे सबर करो, काहे की होता है सबर का फल मीठा मीठा, बहुत मीठा। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। आपका स्वागत और इस्तकबाल है आपके अपने शो में पार्थ। एंड पार्थ के साथ में एक लोग ने और ज्वाइन किया था, कहाँ गए, किधर गए रे बाबा, किधर गए रे बाबा। सो पार्थ के साथ में ज्वाइन किया था मुमताज अंसारी जी ने। मुमताज अंसारी जी, आपका भी स्वागत है सभी है, स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में तो थी अनुष्का की श्रावस्ती से, लेकिन अनुष्का ने कुछ सीरियल फरमाइश कर दिया था। अब अनुष्का दंगल टीवी का सीरियल तो यहाँ नहीं प्ले करूंगी ना, ये गीतों का फरमाइशी का महफिल है, सीरियल का फरमाइशी का महफिल नहीं ना। सो आप अपनी फरमाइश को चेंज कर सकती हैं, फटाफट से आप चेंज करिए। तब तक एंजॉय कर लेते हैं निशा की फरमाइश, और निशा को पटेल नगर से सुनना है गाना वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। सो एंजॉय करते हैं एक बार फिर से सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा अलका याग्निक बाबुल सुप्रियो की आवाज में हमारी प्यारी सी निशा की फरमाइश पे, जो की है पटेल नगर गोंडा से। ओहो, आई लव दिस सॉन्ग, थैंक यू।

जब प्यार हो जाता है तो वो लड़की और वो लड़का सिर्फ वो लड़की और लड़का नहीं हो जाते, एक दूसरे की जिंदगी बन जाते हैं। क्यों, सही कहा ना। सो थोड़ा सा कम रोमांटिक बनते हैं और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। क्यों, सही कहा ना मैंने अनुष्का। सो फाइनली अनुष्का की फरमाइश को एंजॉय कर लेते हैं और अनुष्का को सुनना है तड़कता भड़कता सा पंजाबी बीट्स वाला नगमा। सो दोस्तों कुर्सी की पेटी को खोल लीजिए और चैट बॉक्स के डांस फ्लोर पर आ जाइए और जसपिंदर नरूला और सोनू निगम के इस तड़कते भड़कते से गाने की बीट्स पर थोड़े से ठुमकर लगा लीजिए। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है कि थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाए डांस के बहाने। वैसे तो हम लोग बहुत आलसी हैं।

रेस्ट वाले मोड में, सो हम लोगों ने एक्सरसाइज वाला मोड तो ऑन कर लिया था अनुष्का की फरमाइश के थ्रू। अब चलिए चलते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, बॉडी को भी रिलैक्स देते हैं और दिमाग को भी थोड़ा सा रिलैक्स देते हैं और दिल को भी थोड़ा सा सुकून देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवे नगर से राजेश सिंह जी की, और मालवे नगर से राजेश सिंह को सुनना है नगमा मोहम्मद रफी की आवाज़ में, लता जी की आवाज़ में।

हमने एंजॉय किया है मोहम्मद रफी, आशा जी और लता जी की आवाज में ये ओल्ड इज गोल्ड नगमा। मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। तमन्ना आरजू आपका स्वागत है। इरफान शाह जी नमस्ते एंड वेलकम इन योर शो। फरीन खान वेलकम इन योर शो एंड स्टे ट्यून्ड। और एंजॉय करते हैं फटाफट से अगली फरमाइश हमारे पास में मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की, और मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा को सुनना है गाना लाल दुपट्टा। तो मुझसे शादी करोगी मूवी का ये नगमा एंजॉय करते हैं अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में हमारे अजय मिश्रा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

0: अगर मेरी जान लेगा वो हमने एंजॉय किया, मुझसे शादी करोगी मूवी का ये नगमा अल्का याग्निक उदित नारायण की आवाज में हमारे मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पर बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों शशि सिंह जी की, उनको सुनना है गाना मेरा मन घबराए। सो एंजॉय करते हैं आशा जी की आवाज में शशि सिंह जी की फरमाइश पर ये वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: बाश बाश बाश बाश।

ये नगमा शशि सिंह जी की फरमाइश पर बढ़ते हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश है नीना की। नीना को सुनना है गाना थम के बरस। इंजॉय करते हैं ये नगमा इस फरमाइशी गीत के। उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो पेट पूजा जिन लोगों ने नहीं किया है, पेट पूजा करके आना, मीन्स डिनर करके आना। मिलते हैं सीधे 9 बजे आपकी फरमाइशी की महफिल में। आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन, अपनी खट्टी मीठी कड़वी आरजे सिंपल नॉट।

वॉरियर के गुप्ता तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से आपका स्वागत और इस्तकबाल है आपके अपने शो में। 9 बजे आना बिल्कुल मत भूलना। स्टे ट्यून्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया, वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक

0: रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है, हम अधीर है, बेसब्र है, हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
3: ऑकलैंड में वाइटाकरी इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय की आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा

0: शिक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोत्स्यूक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। सो हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा कुमार सानू की आवाज में। और ये फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी धर्मेंद्र मोहन की तरफ से, जो की है आवास विकास गोंडा से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहम्मद मुशीब की बाराबंकी से। और मोहम्मद मुशीब को बाराबंकी से सुनना है बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, हमका इश्क हुआ है यारो हमरे कोई खबरिया लो। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा अमिताभ बच्चन वाला नगमा हमारे मोहम्मद मुशीब जी की, आई मीन दिल पे एक आशिक मोहम्मद मुशीब जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

गवाही यारो हम भी कोई खबरिया लो एंजॉय के है मोहम्मद मुशीब की फरमाइश पे ये वाला नगमा। ये फरमाइशी गीत था बारा बंकी से। भी फरमाइश हमारे पास में है लवली सिंह की गोंडा से। लवली सिंह को गोंडा से सुनना है गाना बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ लवली सिंह की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। आवाज है लता मंगेशकर की और पिक्चर का नाम है आरज़ू।

दर्दी बाल माँ तुझको मेरा मन याद करता है, हमने एंजॉय किया है ये नगमा। लवली सिंह की फरमाइश पर जो की है गोंडा से, नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और दोस्तों हमारे पास में अगली फरमाइश है राही, नवाबों के शहर लखनऊ से हैं ये, और राही को सुनना है गाना देखें अपनी किस्मत में। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा अनुराधा की आवाज़ में राही की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

अनुराधा और मोहम्मद अजीज की आवाज में आई मिलन की रात मूवी का ये नगमा हमने एंजॉय किया है। दोस्तों, किसकी फरमाइश पर आप सोच रहे होंगे ना, राही की फरमाइश पर, जो कि है नवाबों के शहर लखनऊ से। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है राजू कश्यप की गोंडा से। राजू कश्यप को सुनना है गाना मेरे दिल की दुनिया में। सो एंजॉय करते हैं राहत फतेह अली खान की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सिर्फ और सिर्फ राजू कश्यप की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो सोनम मौर्या।

दुनिया में आकर तो देखो, राहत फतेह अली खान की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये नगमा राजू कश्यप की फरमाइश पर, जो की है गोंडा से। ओहो ओहो, इतना दर्द इतना दर्द इतना दर्द कहाँ से लाते हो भाई? मेरे पास तो जैसे गुस्सा आता है ना, दो चार मिनट के लिए आता है फिर चला जाता है, ऐसे ही मेरे पास दर्द भी आता है। कितना भी दर्द हो जाए, भगवान जी को दर्द मत दे देना, लेकिन कितना भी दर्द हो जाए वो भी दो चार मिनट के लिए ही दर्द देता है, फिर उसके बाद में कितना भी दर्द हो फील ही नहीं होता है। ऐसे लगता है ना वो सुन्न की सुई लग जाती है दोस्तों। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में है मुमताज अंसारी जी की गोंडा से, उनको सुनना है गाना, बहुत ही खूबसूरत सा गाना, मेरे महबूब तुझे सलाम। से एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मोहम्मद रफी आशा जी की आवाज में हमारे मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर, जो की है गोंडा से।

तारीखी की फरमाइश पर हमें इंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, और सब अपने महबूब को सलाम ही करते हैं ना। सो इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश दोस्तों हमारे पास में तो है डीके मौर्य की, और डीके मौर्य को सुनना है दिलवाले का गाना। सो इंजॉय करते हैं। जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। वाओ, व्हाट अ सॉन्ग। इस गाने के बिना कोई भी महफिल अधूरी रहेगी ना दोस्तों। सो फरमाइश है डीके मौर्य की। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

दोस्तों बढ़ते हैं हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है के गुप्ता की तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से, और के गुप्ता जी को तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से सुनना है गाना इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा, इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा दोस्तों। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ है। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी, तब तक ले टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून, एंजॉय करते हैं ये वाली फरमाइश।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-89-14416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणस्थली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और अब कार्यक्रम चल रहा है बहारे गज़ल और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। जी हाँ, तो इस प्यारी सी महफिल में, इस गज़लों की महफिल में आप सभी का इस्तकबाल है, अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है, नमन है। बात हम करते हैं दानिश्वरों की, बात करते हैं कलमकारों की, बात करते हैं उनकी जिन्होंने तलवार छोड़ कर के कलम उठा ली, क्योंकि उनके समझ में आ चुका था कि पेन इज़ माइटर देन स्वॉर्ड, कलम में तलवार से ज़्यादा ताकत होती है। और वही कलमकार जब लिखते हैं तो वो कहीं गीत, कहीं कविता, कहीं गज़ल, कभी नज़्म, कभी किता और कभी प्रोस की कोई विधा, हिंदी गद्य की या अंग्रेजी पद्य की कोई विधा बनती है। वे जो नींव की ईंट हैं उनके बारे में करते हैं बात। जी हाँ, आज जिस शायर को आपके बीच लेकर आए हैं उनको गजलों की दुनिया का युधिष्ठिर कहा जाता है। बहुत शांत रहने वाले और बहुत ही चुनिंदा शब्दों में अपनी बात को कहने वाले उस शायर को हम प्यार से इकबाल अशर के नाम से जानते हैं। उन्होंने लिखा कि कोई ख्वाब फिर से चमक उठा, कोई ख्वाब फिर से चमक उठा, कोई जख्म फिर से हरा हुआ, मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफिजे से जुदा हुआ। हाफिजे मतलब मेरी याददाश्त से, लेकिन अचानक लगा था कि मुझको कि मैं उसको भूल गया हूं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कोई ख्वाब फिर से चमक उठा, पुनः वो बात हो गई। यहां खुशबुओं की रफाकतें, रफाकतें मतलब नजदीकियां, यहां खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली, वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। जी हाँ, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लेकर आती है कि इस पूरी कायनात में हम सिर्फ एक इंसान को मांगते हैं और हमारे पास वही इंसान नहीं रह पाता, बाकी जहाँ की खुशियाँ मिल जाती हैं। और ये दर्द हम अपनी ज़िंदगी में लेकर जीते हैं। बात दर्द की हुई है तो चलिए आज आपको एक खासा एक्सपीरियंस आप भी करें और हो सकता है मैं भी करूं, या जहाँ तक मैंने सोचा। जगजीत सिंह साहब मुझे बेहद पसंद हैं और मुझे याद है उनकी पहली गज़ल जो मैंने सुनी थी वो थी फिल्म प्रेम गीत, यहाँ तक मुझको याद है, राज बब्बर की फिल्म। और जो गज़ल गाई थी उन्होंने वो थी होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। फिल्म में ये गज़ल जगजीत सिंह साहब ने गाई और उसके पश्चात ईश्वर ने सबको सब कुछ नहीं दिया और कभी कभी दिया भी तो छीन भी लिया। चार ही चीज़ों में ज़िंदगी उलझी पड़ी है, हासिले ज़िंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं, ये किया नहीं वो मिला नहीं, ये किया नहीं वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं वो रहा नहीं, ये कर नहीं पाए वो हो नहीं पाया, वो मिल नहीं पाया और वो मिल गया किंतु हमेशा के लिए नहीं मिला, अलग हो गया। जी हाँ, तो इकलौता बेटा जगजीत सिंह का, और ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और उन्होंने अपने कंधे पर अपने बेटे का जनाजा उठाया। और ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है, बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा।
उसके पश्चात 6 महीने उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद रखा, न मिले कुछ नहीं। और जब वो फिर बाहर आए तो लोग कहते हैं कि उनकी आवाज में दर्द आ चुका था। अब इसका विश्लेषण करते हैं, जब उन्होंने प्रेम गीत में ये गजल गाई थी उस समय उनकी आवाज़ कैसी थी, और बाद में उन्होंने जब उनके बेटे की मृत्यु हुई उसके पश्चात उन्होंने पुनः गीत गाया, यही गजल गाई, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। हम आपको दोनों ही वर्जन सुनवाते हैं, पहले वो जो फिल्म में था और बाद में वो जो उन्होंने एल्बम में गाया। आप भी जरा ध्यान से सुनिए और बताइए कि क्या आपको भी कोई फर्क नजर आता है, क्या आपको लगता है कि इन दोनों आवाज का जो मालिक है वो एक ही है। जरूर बताइएगा, हम आपको दोनों गजलें सुना रहे हैं, जो उन्होंने फिल्म में गाई और इसके पश्चात जो उन्होंने एल्बम में गाई, पहले फिल्म वाली बाद में एल्बम वाली। आप बताइएगा किस आवाज में आपको दर्द मिल रहा है, या कौन सी गजल ऐसी है, पहली वाली या दूसरी वाली, जो आपको ज्यादा अच्छी लगी और क्यों। जी हाँ, आपके उत्तर की प्रतीक्षा भी रहेगी। आइए आपको सुनाते हैं, एक थोड़ा सा प्रयोग करते हैं, हमने महसूस किया है, देखिए क्या जो हमने महसूस किया है वो आप भी महसूस करते हैं, या हमारी विचारधारा थोड़ी सी हो सकता है अलग हो और वहाँ तक हम न पहुँच पाए हों। फिलहाल आपके उत्तर हमारे लिए आवश्यक हो जाएंगे। जी हाँ, तो बगैर देरी के हुए आपको दोनों बार की गजलें सुनाते हैं और उम्मीद करेंगे कि आपका उत्तर हमें चैट बॉक्स में मिलेगा। जी हाँ, सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये दोनों गजलें आप सभी के लिए।

जी हाँ, ये वो गज़ल है जो फिल्म प्रेम गीत में थी। और अब आइए वो गज़ल सुनाते हैं जो उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु के उपरांत गाया। अब आप बताइएगा दोनों में बेहतर कौन सा लगा।

0: जी हाँ, हमारा सवाल था कि भाई इन दोनों गजलों में आपको कौन सी गजल पसंद आई। फिलहाल हमारे पास फोन आ चुका है, देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो।
1: हेलो, हाँ नमस्कार भैया।
0: जी प्रणाम।
1: सुरेश कुमार।
0: अरे अरे दर्द कुमार जी, आपसे बेहतर तो कौन बता पाएगा कि वास्तव में आपको क्या लगा।
1: हमको तो भैया जो एल्बम निकाला है, जो बच्चे के इस पार होने के बाद जिस तरह उन्होंने गाया है, ऑटो को छू लो मेरा गीत अमर कर दो, इसमें हमको दर्द बहुत नजर आया।
0: अच्छा क्या बात है, मतलब आपको लगा कि जो बाद में गाया गया उसमें।
1: हाँ उसमें बहुत दर्द है और बहुत अच्छा गाया है।
0: बाद वाली
1: पहले से ज्यादा सुपर है।
0: हाँ, मतलब पहले से ज्यादा आपको दूसरी वाली अच्छी लगी। क्या बात है भाई, हमको भी ऐसा ही लगा था। हमने कहा था लाइए अपने श्रोताओं से भी पूछेंगे। बहुत अच्छा लगा।
1: 100%।
0: हाँ, बहुत अच्छा लगा दर्द कुमार जी कि आपने हमको सही बात बताई।
1: उसमें तो को छू लो बताया है, मगर इसमें तो जगजीत कुमार ने, जगजीत सिंह ने सबका दिल छू लिया।
0: क्या बात है।
1: हाँ तो ये बात आप कहिए तो।
0: क्या बात है, बहुत प्यारी बात कही।
1: उसमें तो वो तो को छू लो बताए, इसने तो पूरा ऑल वर्ल्ड का

जला खत्म हुआ जलने जलाने वाला, सिलसिला खत्म हुआ जलने जलाने वाला, अब कोई ख्वाब नहीं नींद उड़ाने वाला। एक उम्र तक इंसान को हर चीज की परवाह होती है, और मुझे लगता है कि थोड़ी सी परिपक्वता आने के बाद, थोड़ी सी मैच्योरनेस आने के बाद शायद इंसान कुछ चीज़ों को समझ जाता है कि नहीं, इसमें ऐसा नहीं है जो हम समझ रहे थे, वैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सिलसिला खत्म हुआ जलने जलाने वाला, अब कोई ख्वाब नहीं नींद उड़ाने वाला, ये वो सहरा है सुझाए ना अगर तू रास्ता। सहरा बोलते हैं रेगिस्तान को, डिजर्ट को। ये वो सहरा है सुझाए ना अगर तू रास्ता, खाक हो जाए यहाँ खाक उड़ाने वाला। क्या करे आंख जो पथराने की ख्वाहिश न करे, क्या करे आंख जो पथराने की ख्वाहिश न करे, ख्वाब हो जाए अगर ख्वाब दिखाने वाला। जी हाँ, जिनके हम ख्वाब देखते थे वो हमारे ख्वाब में ही नहीं रह गए, हमारे रही नहीं गए, तो अब क्या करें। याद आता है कि मैं खुद से यहीं बिछड़ा था, याद आता है कि मैं खुद से यहीं बिछड़ा था, यही रास्ता है तेरे शहर को जाने वाला। ऐ हवा, ऐ हवा, उससे ये कहना कि सलामत है अभी, ऐ हवा उससे ये कहना कि सलामत है अभी, तेरे फूलों को किताबों में छुपाने वाला। जिंदगी अपनी अंधेरों में बसर करता है, जिंदगी अपनी अंधेरों में बसर करता है, तेरे आंचल को सितारों से सजाने वाला। सभी अपने नजर आते हैं बज़ाहिर, लेकिन यानी दिखने में लगता है सब अपने हैं। सभी अपने नजर आते हैं बज़ाहिर, लेकिन रूठने वाला है कोई न मनाने वाला। ले गई दूर बहुत दूर हवाएं जिसको, ले गई दूर बहुत दूर हवाएं जिसको, वही बादल था मेरी प्यास बुझाने वाला। अक्सर अक्सर ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता, लेकिन एक पहलू ये भी है, लोग कहते हैं कि अपने मन का हुआ तो अच्छा, और अपने मन का न हुआ तो और अच्छा। क्योंकि अगर आपके मन का नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ऊपर वाले के मन का हो रहा है, वो सही होता है। अपने अपने परसेप्शन है, अपनी अपनी समझ है। हमारे साथ इक्ष कुमार जी हैं, जी हाँ वेलकम करते हैं आपका। धर्मेंद्र मोहन जी हैं, मनु सर जी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, गज़लों की दुनिया में आपका स्वागत है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको धर्मेंद्र मोहन जी। और इम्तियाज अहमद जी हमारे साथ हैं, नाइस गर्ल सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इक्ष कुमार जी हैं, वेरी नाइस इवनिंग सर, बहुत बहुत गुड इवनिंग आपको भी। और अनिल शास्त्री जी, गुड इवनिंग मनु जी, बहुत अच्छी गज़ल दादा, चौरस पर्श, कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। सविता शास्त्री जी को हमने बहुत, मतलब पिछले 3-4 दिनों से नहीं देखा, और जब आप किसी अपने बहुत करीबी को 3-4 दिनों तक न देखिए तो लगता है कि मतलब काफ़ी समय हो गया मिले हुए, तो प्रणाम करते हैं आपको भी। पिछले 3-4 दिनों की आपकी अनुपस्थिति रही, कोई व्यवस्था रही होगी आपकी, लेकिन जरा शुभ संध्या कर लिया कीजिए तो अच्छा लगता है। जी हाँ प्रवल मिश्रा जी हैं, गुड इवनिंग सर जी, राधे राधे जी हाँ प्रवल मिश्रा जी, राधे राधे, कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे जी। तो आइए, हमने गज़ल सुनाई आपको दोनों, और उत्तर भी मिल गया हमको कि भाई जो बाद में गाया वो ज्यादा अच्छा लगा, उसमें दर्द ज्यादा है। और आइए अब आपको ले चलते हैं, ये हसरतें हैं ना, इच्छाएं हैं साहब, इन इच्छाओं को अपने वश में करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी इंसान के साथ ऐसा भी होता है कि हसरतें बहुत हैं, इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन कोई कहने वाला,
कहने वाला है और

उसे समझने वाला, उसे सुनने वाला कोई नहीं है। तो साहब, जब आपके दर्द को समझने वाला कोई ना हो तो कौन है जो आपके दर्द को समझेगा? जी हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं जो अपने दर्द को समझेंगे। और कैसे समझेंगे? ये हम नहीं, ये लता जी की आवाज़ में प्यारी सी गज़ल बताएगी आपको कि हसरतों के दाग, जो दुख है जीवन का, उसे कैसे जीना है। आइए सीखते हैं इस प्यारी सी गज़ल के साथ।

कितना दर्द है, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा। वास्तव में इस गजल को जिन्होंने लिखा वो कैफी आजमी साहब हैं, आप सभी उनके नाम से वावस्ता हैं, रूबरू हैं। और 1964 में ये फिल्म आई थी और फिल्म का नाम हकीकत। आज भी ये गजल कहीं ना कहीं भावुक करती है हमको। और जहां तक मेरी जानकारी है, चार प्रसिद्ध लोकप्रिय गायकों ने इस गजल को गाया था। चार आवाज है इसमें। पहली कायनाती गले के मालिक मोहम्मद रफ़ी, दूसरी तलत महमूद, तीसरी मन्ना डे और चौथी भूपेंद्र सिंह। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि एक ही गज़ल को शायद ही कोई ऐसी गज़ल हो जिनको चार चार गायकों ने गाया हो। ये अपने आप में एक अनूठी गज़ल है, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। ये वही फिल्म है जिसमें गीत है कि कल चले हम फिदा जा वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जी हाँ, आप तुमने सुना होगा, हमारे साथ कायनात जी भी आ चुकी हैं। मैं आई तेरे लिए, अब भाई ये तो ठीक है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। आशु मिश्रा जी प्रणाम करते हैं आपको, कैसे हैं आप, उम्मीद करते हैं अच्छी होंगी। जी हाँ, शुभ संध्या आपको भी। एच कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी रोटी बांध बारी। अच्छा ठीक, ये तो भाई ठीक है। संघर्ष करना मेरे लिए नया नहीं है, मैं किसी मोड़ से नई शुरुआत कर सकता हूँ। क्या बात है प्रबल जी, ये बात अच्छी कही आपने। और जी भाई मुस्तफ़ा सऊदी जी भी हमारे साथ हैं, गुड इवनिंग सर, शुभ संध्या आपको भी। प्रबल मिश्र ने बहुत सारे स्टार्स दे दिए। और शिल्पी बनर्जी जी हैं, शुभ संध्या सर जी, नाइस सॉन्ग, यूं हसरतों के दागा। हाँ, मैं चाहूँगा कि आप इसको सुनाएं, बहुत अच्छा लगेगा आपके कंठ से। और देर से ना जल्दी जाना है साहब, ये ठीक नहीं। जी हाँ बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल नहीं ठीक है। प्रबल मिश्रा आना कभी हमारी महफिल में, हम आपको मुस्कुरा कर जीना सिखा देंगे। जी हाँ, जब आप बुलाइए तब हम चले आएँ। और सर मेरा प्लीज़ सर ऐप में चैट बॉक्स ओपन हो रहा सर, हो सकता है कोई नेटवर्क का इशू हो। और हमने भी मोहब्बत में हद पार कर दी थी, फिर उस इंसान ने हमको हद में रहने सिखा दिया। क्या बात है भाई, क्या बात है जी। अब बात जब भूलने और भुलाने की आई है तो फिर चलते हैं इकबाल अशरफ साहब की तरफ। कितने भूले हुए नगमात सुनाने आए, कितने भूले हुए नगमात सुनाने आए, फिर तेरे ख्वाब मुझे मुझसे चुराने आए। अब आप सोचते हो कि मुझे मुझसे चुराने आए, गीत भी है हमको हम ही से चुरा लो, तो मुझको ही मुझसे चुराने आए। फिर तेरे ख्वाब मुझे मुझसे चुराने आए, फिर धनक रंग तमाओ, फिर धनक रंग तमन्ना ने घेरा मुझको। धनक रंग मतलब क्या कहते हैं उसको, इंद्रधनुष, रेनबो, वो फिर तमन्नाएं आ गई। और फिर तेरे खत मुझे दीवाना बनाने आए, एक बार पुनः उन खतों को। आहा, खतों का अपना दौर था साहब, सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत पे कलेजा निकाल के। इंसान कलेजा निकाल के रख देता था, वो बात खत की हुई। फिर धनक रंग तमन्नाओं ने घेरा मुझको, मतलब वो जो रेनबो था उसने घेरा। फिर तेरे खत मुझे दीवाना बनाने आए, फिर तेरी याद में आंखें हुई शबनम शबनम। जब आपको, जब इंसान किसी को अकेले में याद करता है तो पंक्ति आती है मेरे जहन में कि
पंक्ति मेरे जहन से थोड़ी सी उतर रही है कि हाँ बैठ जाता हूं जो अक्सर कहीं तन्हाई में, कहां पूछता हूं मेरा दर्द कोई जान न ले, और ये भी डरता हूं कि ऐसे में अचानक कोई मेरी आंखों में तुझे देखकर पहचान न ले। भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में, भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में, कहां पूछता हूं मेरा दर्द कोई जान न ले, और ये भी डरता हूं कि ऐसे में अचानक कोई मेरी आंखों में तुझे देखकर पहचान न ले। तो वही फिर तेरी याद में आंखें हुई शबनम शबनम, आंख में आंसू आ गए, फिर वही नींद ना आने के जमाने आए, फिर तेरा जिक्र वादा है सबा ने मुझसे, शाम को फिर आपकी याद, फिर मेरे दिल को धड़कने के बहाने आए, फिर मेरे कासा एक खाली का मुकद्दर जागा। कासा बोलते हैं साहब भिक्षा पात्र को, जो भिक्षा पात्र होता है इसमें भीख मांगी जाती है, उस पात्र को कासा बोलते हैं उर्दू में। फिर तेरा जिक्र किया बादाएश सबा ने मुझे, फिर मेरे दिल को धड़कने के बहाने आए, फिर मेरे कासा एक खाली का मुकद्दर जागा, फिर मेरे हाथ मोहब्बत के खजाने आए, शर्त सैलाब समोने की लगा रखी थी। तो शर्त ये लगा रखी थी कि अगर समंदर भी होगा तो बाहर नहीं निकलेगा, शर्त सैलाब समोने की लगा रखी थी, और दो अश्क भी हमसे न छुपाने आए। हमने शर्त लगा रखी थी कि रोएंगे नहीं, लेकिन जब वो बिछड़ा तो दो अश्क नहीं दो बूंद आंसू मुझसे छुपाने नहीं आए। मतलब जिंदगी में जो हकीकत है ना साहब, जिंदगी की कहने और करने में वास्तव में थोड़ा सा मुझको लगता है कि बहुत अर्श और फर्श का अंतर होता है, और यही अंतर जिंदगी का जो खालीपन होता है वो हमारी तन्हाई भर देती है। और अच्छा लगता है कि तन्हाइयों की भी अपनी एक अदा है, कभी आप अकेले बैठिए तो आपकी अपने से मुलाकात होती है, हम अक्सर खुद से ही नहीं मिल पाते। आप दुनिया भर से मिलते हैं लेकिन शायद हम अपने आप से नहीं मिल पाते होंगे, इतनी व्यस्तता है साहब। और जी हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बाहों में जो मिलता है सुकून वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं, तुमसे ही शुरू होती है मेरी सुबह और तुम्हारे बिना कोई करार नहीं। क्या बात है भाई, और क्या बात है भाई, हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता हाँ के गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स से आज तो आश्चर्य हो गया भाई, गुरुजी प्रणाम जी हाँ, आपको सहृदय धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं आपका भाई, आप आ गए चैट बॉक्स की शोभा बढ़ गई जी, बहुत अच्छा लगा। बेकरार थे जो कभी उन्हें अब करार आ गया, देखो न सनम हमें भी तुमसे प्यार आ गया। क्या बात है भाई, तो सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी की बातें भी हो रही हैं, और जी इन बातों के बीच मेरे साथ नेहा जी भी जुड़ चुकी हैं, देखिए वाह क्या बात है, मतलब कल नहीं जुड़ी नेहा जी, मतलब शिकायत रहेगी आपसे, और बहुत खूबसूरत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आदाब करते हैं नेहा जी, कैसी हैं आप, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी होंगी और अपनी मसरूफियत से अब हो सकता है आपको छुट्टी मिल गई हो, आज ही व्यस्तता है सर हमारी भी खुद से मिले जमाने हुए जी। वो एक पंक्ति है कि गुजरता है हर शख्स चेहरा छुपाए, गुजरता है हर शख्स चेहरा छुपाए, कोई राह में आईना रख गया है। तो लखनऊ के एक बार चिड़ियाघर में हम गए थे जू में, वहाँ पर बाहर जब निकले तो लिखा था मिलिए दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी से, तुमने कहा लाओ जरा मिल के देखते हैं कौन है, और जब सामने गए तो वास्तव में वहाँ आईना लगा हुआ था, का वाह, जिसने भी सोचा होगा गजब का सोचा होगा, मतलब अगर
हम इस दुनिया के सबसे अच्छे प्राणी होते तो क्या बात होती। मतलब इंसान, एक गीत है नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में, हाथी मेरे साथी का, उसमें एक पंक्ति है, जब जानवर कोई इंसान को मारे कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे, एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार, खुश रहना मेरे यार। जी हाँ, और इट्स कुमार जी हैं, हम भी मिल लेते हैं खुद से कभी, लेकिन क्या जनाब, क्या लेकिन क्या जवाब देंगे कि इतने दिन कहाँ थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आत्ममंथन होना चाहिए, मेरा अपना नज़रिया यही है, खुद से खुद की मुलाकात होनी चाहिए। जी आइए आपकी मुलाकात कराते हैं, और ज़िंदगी की सच्चाई को बयां करती हुई एक प्यारी सी गज़ल सुनाते हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी में बड़ी मेहनत करता है और तब जाकर एक घर बना पाता है, और कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि कभी कभी वो घर आग के हवाले हो जाता है, कभी कभी टूट जाता है। शायर ने कहा कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो साहब आइए आपको सुनाते हैं वही गजल, मखमली आवाज के मालिक। और जब कभी मखमली आवाज हो जाए तो इसका मतलब वो आवाज जगजीत सिंह साहब की होती है। बशीर बद्र साहब की लिखी हुई गजल है, हो सकता है, जहां तक मुझे उम्मीद है, आप लोगों ने शायद ये गजल पहली बार आप सुनने जा रहे होंगे, या आपने से कुछ लोगों ने सुनी होगी, लेकिन अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो जरा ध्यान से सुनिएगा। आम इंसान की जिंदगी का दर्द बयां करती हुई ये गज़ल किस तरह से गुफ्तगू करती है, आपको सुनकर आनंद आएगा। देखिए जिंदगी की हकीकत ये है। जी हाँ, ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

जी हाँ, बात कर रहे हैं इकबाल अशर की, और गजल हमने आपको सुनाई जो लिखी डॉक्टर बशीर बद्र में, जिन जो अभी हाल ही में गोलोकवासी हुए, जिनका निधन हुआ, और आवाज मखमली गले के मालिक जी। और भाई बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, और भाई हमारे साथ मुस्तफ़ा अचलापुर से भी हैं भाई, इस्तकबाल करते हैं आपको। और साइबर सुरक्षा अलर्ट, OTP शेयर न करें, अनजान नंबर पर क्लिक न करें, डिजिटल अलर्ट के रास्ते में ना आए, फ्रॉड धोखा होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें भाई, सेफ क्लिक 2.0। क्या बात है भाई, कि कुमार ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और इस जानकारी को हमने आज तक पहुंचा दिया, और लिखा भाई वेरी नाइस गज़ल। जी हाँ, हम तो थक जाते हैं दिन भर काम करते करते, खाना बनाने में, ओह क्या बात है, मतलब बहुत अच्छी बात है भाई जी। और बिल्कुल इस कुमार जी, बिल्कुल आप कभी आइए तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेंगे, और थोड़ी देर के लिए ही, अगर थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन अगर तुमसे बात हो जाती है तो दिल को बहुत सुकून मिलता है दोस्तों। जी हाँ, प्रवल मिश्रा जी, जो हाल दिल का उधर हो रहा है वही हाल दिल का इधर हो रहा है। और जी, इकबाल अशर ने एक नज्म पढ़ी, मैं आपको सुनाता हूँ, ये पिता की नज्म है बेटे के नाम। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पर खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो, मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, बिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, पोशीदा मतलब छुपी हुई, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। जी हाँ, यह है इकबाल अशर का रंग जो सर चढ़कर बोलता है। यहाँ घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। जी शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का, और आसमान वाले ने चाहा तो आपसे शनिवार को पुनः मुलाकात होगी आपके ही कार्यक्रम बहारे गजल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और चलते चलते आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी लोरी।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी दिल का रिश्ता। डॉक्टर सुमेधा के लिए रविवार का दिन हमेशा एक बोझ की तरह होता था। कॉलेज की भागदौड़ और क्लासरूम के शोर शराबे से दूर उनका ये बड़ा सा फ्लैट रविवार को किसी भूत बंगले जैसा शांत और खामोश हो जाता था। उनके पति को गुजरे 7 साल हो चुके थे और इकलौता बेटा कुणाल अमेरिका की एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता था। कुणाल के पास अपनी माँ के लिए साल भर में एक बार आने का भी वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता था। आज भी सुमेधा अपने डाइनिंग टेबल पर बैठी अगले हफ्ते के सेमिनार के नोट्स तैयार कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सुमेधा ने अचरज से घड़ी की तरफ देखा। दोपहर के 3 बज रहे थे। इस वक्त भला कौन आ सकता है? उन्होंने अपनी ऐनक ठीक की और दरवाजा खोला। सामने जो शख्स खड़ा था उसे देखकर वो एक पल के लिए सन्न रह गईं। वो उनके ही डिपार्टमेंट का एक फर्स्ट ईयर का छात्र आर्यन था। आर्यन थोड़ा चंचल, बेहद आत्मविश्वासी और पढ़ाई में औसत लड़का था। नमस्ते मैम, इस तपती धूप में इस इलाके से गुजर रहा था तो अचानक याद आया कि आप यहीं रहती हैं। बस मन किया कि अपनी फेवरेट प्रोफेसर के साथ एक कप कॉफी पी ली जाए। आर्यन ने अपने चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान लाते हुए कहा। सुमेधा को उसकी इस हरकत पर अजीब सी झुंझलाहट हुई। एक छात्र का यूं बिना बुलाए घर आ जाना उन्हें अनुशासनहीनता लगा। उन्होंने कुछ रूखेपन से कहा, देखो आर्यन, मैं अभी अपने सेमिनार के पेपर्स तैयार कर रही हूँ। मेरे पास फालतू गपशप या कॉफी पीने का बिल्कुल वक्त नहीं है। उन्होंने दरवाजा बंद करने का उपक्रम किया। लेकिन आर्यन कहाँ हार मानने वाला था। उसने दरवाजे के फ्रेम पर हाथ रखते हुए बड़ी ही मासूमियत से कहा, अरे मैम, इतनी गर्मी में आप किचन में जाकर पसीने में तर हो, ये मैं हरगिज नहीं चाहूंगा। आप आराम से अपने सेमिनार की तैयारी कीजिए, कॉफी मैं बनाऊंगा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है दिल का रिश्ता। अब तक आपने सुना प्रोफेसर सुमेधा अपने बड़े से फ्लैट में अकेले रहती थीं। उनके पति का देहांत हो चुका था और बेटा कुणाल अमेरिका में रहता था, जिसके पास अपनी माँ के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। एक दिन संडे की दोपहर उनका एक स्टूडेंट उनके घर आ गया। अब आगे आपको एक राज की बात बताऊं, मेरे हाथ की बनी कोल्ड कॉफी पीकर आप सारे 5-स्टार होटल्स का स्वाद भूल जाएंगी। ये कहते हुए उसने अपनी नजर फ्लैट के अंदर घुमाई, मानो वो ये सुनिश्चित कर रहा हो कि इतना बड़ा घर इतना शांत क्यों है। सुमेधा कुछ कह पाती उससे पहले ही आर्यन अपनी मर्जी से अंदर आ गया और सीधे किचन की तरफ बढ़ गया। सुमेधा ठगी सी खड़ी रह गई। वो आमतौर पर बहुत सख्त मिजाज की महिला थी, लेकिन इस लड़के की बेबाकी ने उन्हें निरुत्तर कर दिया था। वो वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गईं, लेकिन उनका ध्यान अब पेपर्स में नहीं बल्कि किचन से आ रही बर्तनों की आवाजों पर था। कुछ ही मिनटों में आर्यन दो बड़े मग में झागदार कोल्ड कॉफी लेकर बाहर आया। उसने एक मग सुमेधा के सामने रखा और खुद सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। सुमेधा ने झिझकते हुए एक घूंट लिया। सच में कॉफी बहुत ही स्वादिष्ट थी। तो मैम, आप इस इतने बड़े घर में अकेले ही रहती हैं? आर्यन ने अपनी कॉफी का घूंट भरते हुए कहा। अकेलेपन से मेरा कोई खास बैर नहीं है आर्यन, मेरा बेटा अमेरिका में है और मैं यहाँ अपने काम में खुश हूँ, सुमेधा ने अपने स्वर में गंभीरता लाते हुए कहा, ताकि आर्यन को अपनी हदों का एहसास रहे। पर आर्यन की आंखें दीवारों पर टंगी उन पुरानी तस्वीरों को पढ़ रही थीं, जिनमें सुमेधा अपने पति और छोटे कुणाल के साथ मुस्कुरा रही थी। आप झूठ अच्छा बोल लेती हैं मैम, पर आपकी ये तस्वीरें और घर का ये सन्नाटा कुछ और ही कहता है। मेरी माँ भी गांव में अकेले रहती है। जब मैं उन्हें छोड़कर शहर आ रहा था तो वो भी यही कहती थी कि वो अकेली खुश रह लेंगी, पर मुझे पता है कि वो रोती हैं। आर्यन के इस वाक्य में इतनी गहराई थी कि सुमेधा का सख्त आवरण एक झटके में दरक गया। उस दिन के बाद से आर्यन का सुमेधा के घर आना जाना एक आम बात हो गई। कभी वो कोई असाइनमेंट चेक करवाने के बहाने आ जाता, तो कभी बारिश में भीगता हुआ पकौड़े खाने की फरमाइश लेकर पहुंच जाता। सुमेधा शुरू शुरू में उसे डांटती, अनुशासन का पाठ पढ़ाती, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी उसके आने का इंतजार करने लगी थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है दिल का रिश्ता। अब तक आपने सुना, सुमेधा प्रोफेसर थी और इंडिया में अकेले रहती थी क्योंकि उसके पति का निधन हो चुका था और उसका बेटा कुणाल अमेरिका में रहता था। इधर कुछ दिनों से उसका एक स्टूडेंट आर्यन उसके घर आने जाने लगा था और उसका आना सुमेधा को अच्छा लगने लगा था। अब आगे, घर में कोई तो था जो उनसे बहस करता था, जो उनके हाथ का खाना खाकर झूठी सच्ची तारीफें करता था, जो उनके घर के खराब पंखे और फ्यूज बल्ब बिना कहे बदल देता था। घर का वो सन्नाटा अब आर्यन की बेतुकी बातों और ठहाकों से टूट चुका था। दिवाली का त्योहार नजदीक था। सुमेधा इस बार बहुत खुश थी क्योंकि कुणाल ने वादा किया था कि वो इस दिवाली पर घर आएगा। सुमेधा ने पूरे घर की सफाई करवाई, कुणाल के पसंद के ढेरों पकवान बनाए और नए पर्दे लगाए। लेकिन दिवाली से ठीक दो दिन पहले कुणाल का फोन आया। सॉरी मॉम, कंपनी में एक बहुत क्रिटिकल प्रोजेक्ट आ गया है, मेरी छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं। मैंने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। आप अपने लिए कोई अच्छी सी साड़ी खरीद लेना और खुश रहना। फोन कट गया। सुमेधा के हाथ से फोन छूटकर सोफे पर गिर पड़ा। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। पैसे? क्या एक मां की ममता और उसका इंतजार कुछ पैसों से खरीदा जा सकता है? उस रात सुमेधा ने घर की एक भी लाइट नहीं जलाई। वो अंधेरे कमरे में बैठी बस अपनी किस्मत को कोस रही थी। तभी उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। सुमेधा ने बेमन से दरवाजा खोला। सामने आर्यन खड़ा था जिसके एक हाथ में दियों का बड़ा सा डिब्बा था और दूसरे हाथ में मिठाइयों का पैकेट। उसने शेरवानी पहन रखी थी। हैप्पी छोटी दिवाली मैम। ये क्या, आपने घर में अभी तक एक भी दिया नहीं जलाया और इतनी अच्छी सिल्क की साड़ी पहनकर आप अंधेरे में बैठी हैं? चलिए उठिए, मुझे रंगोली बनानी नहीं आती, वो आपको बनानी पड़ेगी, आर्यन ने अंदर आते हुए पूरे उत्साह से कहा। सुमेधा की आंखों में फिर से आंसू आ गए, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे। उन्होंने आर्यन को देखा और भावुक होकर बोली, तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी क्यों नहीं कर रहे आर्यन? मेरे जैसे एक उदास इंसान के पास क्यों आ गए? आर्यन ने दिए जमीन पर रखते हुए बहुत ही प्यार से कहा, क्योंकि मेरी असली पार्टी तो यहाँ है मैम, मेरी माँ गांव में अकेली है और आप यहाँ

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है दिल का रिश्ता। अब तक आपने सुना सुमेधा के बेटे कुणाल के पास अपनी माँ के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। दिवाली पर भी वादा करके नहीं आया। इधर सुमेधा का छात्र आर्यन उसका खूब ख्याल रखता था और त्योहार भी उनके साथ मनाता था। अब आगे मुझे लगा अगर मैं आपके साथ दिवाली मनाऊंगा तो भगवान मेरी माँ के पास भी किसी न किसी को खुशियां देकर जरूर भेज देगा। और वैसे भी आपके हाथ के बने मालपुए खाए बिना मेरी दिवाली पूरी कैसे हो सकती है। उस दिवाली सुमेधा ने जितने दिए जलाए उनसे कहीं ज्यादा रोशनी उनके दिल में हुई थी। उन्हें समझ आ गया था कि रिश्ते सिर्फ कोख से नहीं जन्मते, कुछ रिश्ते रूह से जुड़ते हैं। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। आर्यन अब फाइनल ईयर में था। एक दिन कॉलेज जाते वक्त सुमेधा स्कूटी से फिसल गई। उनके पैर की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अस्पताल वालों ने जब उनके बेटे कुणाल को अमेरिका फोन किया तो उसने चिंता तो बहुत जताई लेकिन फिर से अपनी मजबूरियों का रोना रोते हुए कहा कि वो तुरंत नहीं आ सकता। उसने कहा कि वो एक फुल टाइम नर्स का इंतजाम कर देगा। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि बिस्तर पर पड़े होने पर उसका बेटा सिर्फ पैसे भेजकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले। सुमेधा अस्पताल के उस ठंडे कमरे में लेटी हुई शून्य में ताक रही थी। तभी अस्पताल के कमरे का दरवाजा खुला और आर्यन हाफता हुआ अंदर आया। मैम, ये क्या हाल बना लिया आपने अपना? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि स्कूटी धीरे चलाया कीजिए, पर आप सुनती कहाँ हैं? आर्यन की आंखों में गुस्सा और चिंता साफ छलक रही थी। उसने अपना बैग जमीन पर फेंका और सुमेधा के सिरहाने आकर खड़ा हो गया। अगले 1.5 महीने तक आर्यन ने सुमेधा की वो सेवा की जो शायद कोई सगा बेटा भी नहीं कर पाता। वो सुबह उनके लिए दलिया बनाता, दिन में कॉलेज की क्लासेस अटेंड करता और शाम को आकर सुमेधा को व्हीलचेयर पर बैठाकर पार्क में टहलाता। उसने सुमेधा के दवाइयों का अलार्म अपने फोन में लगा रखा था। सुमेधा उसे देखती और उनकी आंखें भर आती। वो सोचती कि जिस लड़के को उन्होंने अपने घर के दरवाजे से भगाना चाहा था आज वही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गया है।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है दिल का रिश्ता। अब तक आपने सुना सुमेधा का एक स्टूडेंट आर्यन रेगुलर उनके घर पर आने लगा, उन्हें अपने माँ के जैसा प्यार करता, उनके साथ त्योहार मनाता और उनका एक्सीडेंट होने पर एक बेटे से बढ़कर उनकी सेवा की। दूसरी ओर उनका खुद का बेटा कुणाल हर वक्त उनके पास आने में अपनी असमर्थता जता देता। अब आगे, जिस दिन सुमेधा के पैर का प्लास्टर कटा और वो अपने पैरों पर खड़ी हुई, आर्यन उनके पास आया। मैम, मेरी जॉब लग गई है, अगले महीने मुझे दिल्ली शिफ्ट होना है। सुमेधा का दिल एक पल के लिए बैठ गया। वो आर्यन के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उन्होंने आर्यन का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, दिल्ली जाने से पहले एक काम कर दे, इस मकान के कागजात पर अपना नाम लिखवा ले। मेरे सगे बेटे ने तो मुझे पैसों से तौल दिया, पर तूने मुझे वो प्यार दिया है जो एक माँ को चाहिए होता है। तू अजनबी होकर भी मेरा अपना बन गया। आर्यन मुस्कुराया और उसने सुमेधा का हाथ चूम लिया। मैम, माँ की ममता और उनके आशीर्वाद के बदले जो कागजात मांगे, वो बेटा कैसा? आप मेरी वो माँ हैं जिसने मुझे शहर की इस भीड़ में एक घर दिया। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, पर हर वीकेंड यहाँ आपके हाथ की वो कड़क चाय और मालपुए खाने जरूर आऊंगा। आखिर आपको भी तो मेरी कोल्ड कॉफी की आदत हो गई होगी ना? सुमेधा ने आर्यन को गले से लगा लिया। उनके सोने आंगन में अब हमेशा के लिए खुशियों के फूल खिल गए थे। खून का रिश्ता भले ही सात समुंदर पार था, लेकिन दिल का रिश्ता उनके सीने से लगा हुआ था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी दिल का रिश्ता। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। नमस्कार दोस्तों, एक और भीगी रात, बारिश की वो धीमी फुहारें, खिड़की से टपकती बूंदें और दिल में उठती वो मीठी सी कसम। मैं हूँ आपकी सुकून, ठंडक, गर्मी, बरसात और हर मौसम और हर मिजाज की आपकी रेडियो साथी अनोखी। और आज भूले बिसरे गीत के इस खास मानसून स्पेशल में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे संगीत के सफर पर, जहां हर बूंद के साथ एक याद, एक झोंके के साथ एक तराना जुड़ा है, जो रात के सुरीले और भीगे भीगे मूड को समर्पित है। और दोस्तों, आपकी अनोखी ने तो आज के एपिसोड का नामकरण तक कर रखा है। हाँ जी, हमने नाम रखा है आज के एपिसोड का भीगी रातों के तराने, एक यादगार सफर। तो चलिए पहली बूंद के साथ सुनते हैं एक ऐसा गीत जो खुद बारिश की तरह हर दिल को छू जाता है। आज के शो का पहला सॉन्ग भीगी, हाँ जी, भीगी रातों में। और ये सॉन्ग है आवाज से जिसको सजाया है आशा भोसले जी और किशोर कुमार ने। तो चलिए सुनते हैं ये नगमा। और उससे पहले आपको बता दूं कि इस नगमे को सुनते हुए इन ख्यालों में जरूर डूबिएगा। ख्याल कुछ यूं है, रात थी, बारिश थी और खामोशियां थी। रात थी, बारिश थी और खामोशियां थी, उसके साथ बिताई हर शाम की याद इन बूंदों में बह रही थी। वो भीगी हुई रातें सिर्फ मौसम नहीं थी, वो अधूरे ख्वाबों का गीत था। और दिल कह उठा, क्या
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, हल्की बरसातों में, कैसा लगता है।
0: जैसा भी लगता है, आप खुद ही एंजॉय करिए ना इस गाने के माध्यम से।

तो अभी हमने एंजॉय किया ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और इसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि बताएंगे नहीं, चलिए एक प्रश्न की ओर रुख करते हैं और उसके बाद में थोड़ी गहराइयों में उतरते हैं। क्या आपने कभी भीगी किसी का इंतजार किया है, या किसी के साथ बैठकर खामोशी से बारिश को महसूस किया है? बस यही एहसास बनता है ये अगला नगमा, जिसका आनंद अभी आपने लिया। और अब सुनिए एक और तराना जो बारिश में भीगी एक मासूम सी लड़की की कहानी कहता है। सॉन्ग बताएंगे ना, उससे पहले थोड़ी सी और गहराई में उतरते हैं। एक लड़की जो भीगी भी है और शायद भीगी हुई और भागी हुई भी है, कहाँ से आई कहाँ जाएगी कोई पता नहीं, पर एक बात का पूरा पता है कि इस बारिश ने उसे और भी हसीन बना दिया है। एक ऐसी लड़की जो भीगी सी है, भागी सी है, हवा में लहराती एक कहानी सी है। उसकी आंखों में कुछ अनकहे पल हैं जो किसी मुलाकात का जिक्र करना चाहते हैं। जी हाँ, और वो सॉन्ग कोई और नहीं, वो सॉन्ग है एक लड़की भीगी भागी सी, और आवाज से इसको सजाया है किशोर कुमार जी ने। आइए चलिए सुनते हैं और लुत्फ़ में खो जाते हैं इस सॉन्ग के साथ।

सजन दूर था पर सावन पास था, बदन में जैसे हर बूंद के साथ उनके होने का एहसास था, सांसों में उनकी यादें और इस मौसम का जादू। अब अगला गीत कुछ शरारत लिए, कुछ अदाएं लिए आपसे मिलना चाहता है और गुनगुनाता है

ये वो सॉन्ग है जो बदन में सिहरन दौड़ा दे और असली सावन के जादू को याद दिला दे। मीठी सी तड़प और मिलन की दरकार के एहसास के साथ 1975 में आई फिल्म चुपके चुपके से लता मंगेशकर की आवाज का सुहाना सफर। हाँ जी, तो चलिए ना एंजॉय करते हैं मिलकर।

श्रोताओं, अब आपको ले चलते हैं उस गीत की ओर जो गीत ना सिर्फ अपनी ओर खींचता है बल्कि बारिश को रोमानी बना देता है। और जब हवाएं चलती हैं और बारिश के साथ पत्तों की सरसराहट होती है तब दिल गाता है। हाँ जी, दिल गाता है। क्या गाता है? सावन का महीना पवन करे शोर। इस गाने में ना जाने कितनी बार हमारे हीरो ने यानी सुनील दत्त साहब ने हमारी अदाकारा के अल्फाजों को सुधारने की कोशिश की है, लेकिन हम बिना सुधारे ही गा सकते हैं? गा नहीं सकते, तो साथ में एंजॉय तो कर ही सकते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इस गीत की ओर। एक ऐसा गीत जो पनघट की हंसी, झूले की टुनक, सावन का शोर जैसे दिल की धुन को साथ ले चले। पवन बोले पेड़ गाए, ये गीत गांव के हर आंगन में छाए। शोर मूवी से किशोर दा और लता जी की आवाज में ये एवरग्रीन सॉन्ग।

करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

अब मैं आपसे जिस गीत की बात करने वाली हूँ, उस गीत में छुपा है गांव का वो सौंदर्य, वो कच्ची सड़कें, वो पनघट, वो बारिश के संग झूमती प्रकृति, जो मन के भीतर मयूरी बन नाच उठती है। और जब बात झूमने की हो तो ये आया सावन झूम के, गीत कैसे पीछे रह सकता है। झूले पत्तों पे झूमे, बच्चे गलियों में घूमे, दिल ने फिर से सपना बुना, आया सावन झूम के, प्यार हर दिल में चुपके से घूमे, के आया सावन झूम के।

0: तो अभी हमने इस गीत के माध्यम से उस पल को महसूस किया जो सावन का मौसम जैसे ही आता है, अपने साथ बचपन की यादें, पहली बारिश, भीगे पैर और वो नाचते हुए घर लौटना, सब कुछ लौटा आता है। अब एक ऐसे मस्ती भरे गीत की तरफ चलते हैं जिसमें दिल धड़कता है और कहता है, रामा रामा गजब हुई गवारे, हाल हमरा अजब हुई गवारे। हाँ जी, आज तो दिल सच में सावन बना बैठा है, ये ना जाने क्या हुई गवा है, ना जाने सावन में कौन सा जादू है, हर कोई दीवाना, हर चेहरा बावला बन बैठा है। तो चलिए मोहम्मद रफी साहब की और साथ ही साथ में लता जी की आवाज में सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।
1: हाय राम।

0: बूंदों की ताल पे झूमे हैं अरमा, हर एक बूंद में छिपा है एक गुमनाम अंजाम। रिमझिम राग मन का साज, बारिश ने छेड़ा वो मीठा अंदाज। क्या गजब बात है, बारिश और मस्ती एक साथ आ जाए तो बस दिल भीग जाता है। और अब एक गीत जिसमें बारिश मन की हर तार को छूती है। ऐसा लगता है जैसे बूंदों की हर लय से निकले सुर बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, बन जाते हैं हमारे खुश होने का कारण, जिसमें बरखा बहार के साथ आती है और बूंदे अपनी फ्रेंड रिमझिम जी के साथ, जिसको अपनी आवाज के जरिए मिलाने का काम किया है लता मंगेशकर जी ने। तो चलिए हम भी मिल लेते हैं इस प्यारे से गीत से।
1: ओ सजना

घटाएं घिरी थी जैसे यादें मुड़ी हों, सांवली सी वो शाम जिसमें उसके कहे बिना सब कह दिया था मैंने, और दिल ने बस इतना ही कहा। क्या कहा? ओ घटा सांवरी थोड़ी थोड़ी बावरी। तो बिना देरी किए चलिए एंजॉय कर लेते हैं ये वाला सॉन्ग, जिसमें आप याद करेंगे अपने उन दिनों को जब किसी के साथ में आपने एक प्यारी सी शाम बिताई होगी।

इतने सारे सॉन्ग्स तो हमने एंजॉय कर लिए जी हम मॉनसून स्पेशल वाले शो में। और मॉनसून स्पेशल शो मैंने इसलिए रखा था क्योंकि एक जो सॉन्ग है वो मेरे जहन में यूं आया था कि हमने किसी से फरमाया कि जनाब हमको थोड़ा सा वक्त चाहिए आपका, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है तो थोड़ा सा वक्त तो बनता है ना आपके साथ में, बिल्कुल कॉफ़ी बनती है, चाय बनता है और थोड़ा घूमना शूमना भी बनता है। लेकिन जनाब ने इनकार कर दिया, और इनकार करने का कारण वही जो आमतौर पर हर एक आजी हर एक महापुरुषों का होता है, नॉर्मल पुरुष तो ना नहीं करते हैं। आजी तो उन्हीं में से थे वो जिनसे हमने दरकार की। लेकिन जब हमको ये आइडिया हमारे जहन में आया तो हमने कहा कि इस सॉन्ग को भी आप तक पहुंचाना जरूरी हो गया है। और इस सॉन्ग के जो बोल हैं वो कुछ यूं हैं, हाँ हाँ हाँ वही वाला सॉन्ग कि तेरी दो टकिया दी नौकरी पे मेरा लाखों का सामान जाए। वैसे सामान केवल लाखों का नहीं होता जनाब, इतना कीमती होता है ना कि बस उसका कोई भी हम पेमेंट नहीं कर सकते। फिलहाल बढ़ते हैं इस सॉन्ग की ओर। जी हाँ, रोटी कपड़ा और मकान मूवी का ये उम्दा वाला सॉन्ग एवरग्रीन सॉन्ग, चलिए मिलके एंजॉय करते हैं।

तो दोस्तों आप सुन रहे थे रेडियो गैमस्ले 89.6 एफएम पे अपना फेवरेट वाला शो जिसका नाम है भूले बिसरे गीत, जहाँ पे गीत तो होते हैं लेकिन उस दौर के उस जमाने के जो आपको अपने तक बुला ही लेते हैं और हम कहीं जाके गुम से हो जाया करते हैं। और आज का सफर यहीं पे हमको कहता है कि थोड़े से थम जाते हैं ताकि फिर से हम आपसे आके किसी नए सफर पे आपको ले चलें। आज की ये भीगी रात और ये भूले बिसरे तराने उम्मीद है आपके दिल को भी भीगो गए होंगे। मैं आरजे अनोखी अब लेती हूँ आपसे इजाजत, लेकिन जाते जाते आज कहूंगी, हर फुहार में छिपा होता है एक जज्बात, हर फुहार में छिपा होता है एक जज्बात और हर पुराने गाने में हमारी अधूरी बात। तो ये अधूरी बात हम कंप्लीट करेंगे लेकिन बतौर तोहफा ये वाला सॉन्ग स्पेशली आपके लिए, जो कि बहुत बहुत बहुत बहुत आला है। और इसी के साथ भीगी बातों के साथ शुभ रात्रि और प्यार भरी बारिश की शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी वक्त और एक नए चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
3: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
1: और जेंट्स के लिए?
3: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
3: संपर्क करें 9125707093 और 9696746006। कपड़ा फैक्ट्री

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ। कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
7: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: हजारों तो हुई आज ये शाम। ना बहु सुर्खी मेरी नकली है तमाम, रल है दिन जो हजारों तो हुई आज ये शाम। ओ दुनिया तो वही है मगर
1: मगर मगर
0: क्या